0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musti. Radio Musti.

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: गप्पों वाली मेम साहब।
1: कौन? मैं?
0: जी हाँ, आप ही से कह रहा हूँ। यहाँ आएंगे आप? क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम सुनीता।
0: लवली नेम।
1: थैंक यू।
0: गाएंगे आप मेरे साथ?
1: ना, डर लगता है।
0: डरने की क्या बात है, मैं आपके साथ गाता हूँ।
1: अच्छा।

अगर ये दोनों हमारे साथ गा सकते हैं तो आप सब क्यों नहीं गा सकते? रेडी रेडी रेडी रेडी यस 1 2 3 4 ला ला ला ला ला ला ला बस बस बस बस बस बस बहुत हो गया बहुत हो गया बहुत हो गया। म्यूजिशियंस आप लोग मत बजाइए। रेडी 1 2 3 4 ला।

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: Radio Musti.
1: North, South,
2: 103.5.
1: East, West,
2: 96.4.
1: Center,
2: 99.4.
0: RM2 Radio Musti.
2: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music.
1: Radio Musti.
0: Feel the Musti.
3: A very good morning, आप सभी को सुप्रभात। आज रविवार 10 मई 2026 की सुबह है और अभी आप घड़ी मिलाते चलिए ठीक 5 बज रहे हैं।
4: Chillax with Radio Musti,
0: your number one Bollywood radio station.

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुवारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना?

0: वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को, सुप्रभात। 5:07 हो रहे हैं और संडे की सुबह है, लेकर आ गई है एक हल्का सा ठंड भरा एहसास। लग रहा है जैसे मौसम धीरे धीरे बदल रहा है। सुबह की हवा थोड़ी ठंडी, थोड़ी नर्म, और ये सिग्नल है कि विंटर दूर नहीं है। वीकेंड का आखिरी दिन है, संडे का दिन, ऐसा दिन रहा जल्दी नहीं होती, बस सुकून होता है और दिल को आराम देने का समय मिलता है। और इस खूबसूरत सुबह की शुरुआत भी हमने की है एक बहुत ही खूबसूरत गाने के साथ, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा, फ्रॉम द मूवी आंधी, जो हर बार दिल को एक नई गहराई से छू जाता है। आज चिलैक्स पर सिर्फ सदाबहार मेलोडीज एज यूजुअल, वो गाने जो सुबह को और भी महसूस करने लायक बना देते हैं। मैं हूँ आपके साथ आपके रिया, और चाहे आप हमारे साथ कनेक्टेड है या ना भी कनेक्टेड है, हमारा दिल तो आप ही के पास है। जी हाँ, इन गानों के जरिए हम तो कनेक्टेड रहते ही है। तो चलिए इस संडे को और भी म्यूजिकल बनाते हैं और भी दिलचस्प बनाते हैं। आपके डेडिकेशंस, आपके मैसेजेस आप हम तक ज़रूर पहुंचा सकते हैं ऑन 5499-1294। एंड लेट मी टेल यू दैट आज का ये दिन बहुत ही खास होने वाला है, बहुत ही खूबसूरत होने वाला है, क्योंकि इसे हम ही खूबसूरत बनाते हैं। यानी कि हर एक इंसान अपना दिन अपनी तरह से खूबसूरत बनाता है। सो आप दूसरों पर निर्भर कतई ना करें, क्योंकि हमारी खुशी हमारे हाथों में ही होती है, चाहे वो छोटी छोटी खुशी ही क्यों ना हो। सो यस, बी हैप्पी, और गाने आप एंजॉय करते रहिए। वी हैव गॉट ब्यूटीफुल ट्रैक्स ऑन चिलैक्स, जहाँ पर हम आपको चिल भी करवाते हैं और रिलैक्स भी फील करवाते हैं। सो हमारे साथ आप कनेक्टेड रहिए एंड एंजॉय द ट्रैक्स, क्योंकि संडेज हर हफ्ते आते हैं लेकिन छू मंतर हो जाते हैं, पता नहीं कैसे आते हैं चले भी जाते हैं। हमारे से मेमोरेबल बनाना हमारा कर्तव्य है, तो लेट्स गेट द डे स्टार्टेड, और इसे हम अच्छे तरीके से स्टार्ट करेंगे। ब्यूटीफुल ट्रैक्स, सदाबहार गाने, ओनली ऑन रेडियो मस्ती।
1: चिलैक्स विद रेडियो मस्ती,
2: योर नंबर वन बॉलीवुड रेडियो स्टेशन।

0: Chillax with Radio Musty.
1: कभी सोचा है क्यों पुराने गाने सुबह ज्यादा अच्छे लगते हैं? शायद इसलिए क्योंकि सुबह और नॉस्टैल्जिया दोनों एक जैसे ही होते हैं, एक समान होते हैं। जैसे ही हर सुर बजते हैं ना, तो एक पुरानी कहानी याद आ जाती है। कोई दोस्त, कोई सफ़र या कोई ऐसा पल जो उस समय या नॉर्मल था, लेकिन आज याद बन चुका था, याद बन चुका है। संध्या में वही मौका देता है रुक कर पीछे देखने का और रियलाइज़ करने का कि ज़िंदगी कितनी दूर आ चुकी है। अगर आप किसी अपने को याद कर रहे हैं तो उन्हें मैसेज आप भेज दीजिए संडे हैम शो के, आप थोड़ा सा टाइम ज़रूर निकाल पाएंगे, क्योंकि कुछ रिश्ते बस एक हेलो का इंतज़ार करते हैं, ना कि आपको हर हफ्ते मिलना पड़ता है, बात करनी पड़ती है फ़ोन पर। पर जब भी आप मिलते हैं तो लम्हे खास बन ही जाते हैं। सो इसलिए एक हेलो तो आप भेज ही सकते हैं, तो फ़ोन उठाइए अभी नहीं, जब भी आपको टाइम मिले तब करना एक छोटा सा हेलो, कैसे हो ये बस आप पूछ लो, किसी का दिन बन जाएगा। तो चलिए म्यूजिक कंटिन्यूज ऑन रिलैक्स, जहाँ पर हम सदा बाहर गाने चला रहे हैं। आई होप दैट आपको ये गाने पसंद आ रहे हैं। वी गॉट ब्यूटीफुल ट्रैक्स यहाँ पर इट्स योर रिलैक्स रिया के साथ। आपके डेडिकेशन सम मैसेजेस तो हैं यहाँ पर, क्यों ना एक दो हम देख ही लेते हैं। हमारे साथ जयशन जी जुड़े हुए हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग आपको जयशन जी। आई होप सब ठीक ठाक एंड बहुत ही अच्छा जा रहा है आपके यहाँ। वृंदा बंगाहू है हमारे साथ जुड़ी हुई फ्रॉम रोजबेल, एंड आज आपकी ग्रैंड चाइल्ड कीतांश कमादू का जन्मदिन है। सो हैप्पी बर्थडे उनको।

0: बहुत सारा प्यार, वैसे नाम बहुत ही प्यारा है, एंड पूरे बंगावर का मध्य परिवार की ओर से उनको हैप्पी हैप्पी बर्थडे, एंड हैप्पी बर्थडे टू पल्लवी बर्टनी। पल्लवी बर्टनी को हैप्पी बर्थडे हम विश करते हैं, बहुत सारा प्यार एंड गुड विशेस फ्रॉम पापा, भैया, मम्मा, भैया का नाम युवेश है, एंड हमारी ओर से, रेडियो मस्ती की ओर से आपको हैप्पी हैप्पी बर्थडे। आई होप दैट जन्मदिन बहुत ही अच्छे से जाए, वैसे जन्मदिन बहुत ही अच्छा ही जाएगा, अगर आपके पास आपके अपने हैं तो क्यों ना अच्छा नहीं जाएगा। सो यहाँ पर ऑल्सो हमारे साथ जुड़े हुए हैं ट्वाला हिदा हिबा रोज और नन लोजो क्यूपिप से है, एंड चान आनंद, विकी जीतन, दरमैन सचिन चेंगा जो परिवार की ओर से के लिए नेक्स्ट ट्रैक जाता है, और डरमैन स्वेटर रवीश प्रीशा लोवेशन अपाडू परिवार है रोशनवा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आई विश यू अ हैप्पी संडे, बहुत ही अच्छा जाएगा आपका संडे। चलिए ये नेक्स्ट ट्रैक आप सभी एंजॉय कीजिए।
1: Chillax with Radio Masti,
2: your number one Bollywood radio station.

0: Your daily horoscope. RM2 Radio Masti.
1: चलिए घड़ी आप मिलाते चलिए, अभी 5:45 बज रही है, 5:45 बज रही है और हम आपको बताएंगे कि आज का दिन कैसे कटेगा। इट्स योर राशि टाइम।
2: एरीज मेष राशि,
1: आज का दिन नई सोच और नई ऊर्जा लेकर आएगा। रुके हुए काम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। गुस्सा या जल्दबाजी से बचना जरूरी है। परिवार का साथ हौसला बढ़ाएगा, लेकिन बढ़े आज आपका नौ।
2: टॉरस वृषभ राशि,
1: आज सुकून भरा दिन रहने वाला है। घर का माहौल खुशी और शांति देगा। आर्थिक मामले समझदारी से संभालिए। किसी पुराने दोस्त से बात हो सकती है। दिल को आराम देने का दिन है। छोटी खुशियां बड़ा सुकून देगी। लकी नंबर है आज आपका 6।
2: जेमिनी मिथुन राशि,
1: आज बातचीत से काम बनेंगे। लोग आपकी बात समझेंगे और सपोर्ट भी करेंगे। छोटा सफर या आउटिंग का योग बन सकता है। मन क्रिएटिव रहेगा। नए आइडियाज मिल सकते हैं और दिन हल्का और मुस्कुराहट भरा रहेगा। लकी नंबर है आज आपका 5।
2: कैंसर कर्क राशि,
1: भावनाएं आज थोड़ी गहरी रहेंगी। हर बात दिल पर लेने की जरूरत नहीं है। घर पर समय बिताना सुकून देगा। सेहत और आराम पर ध्यान दीजिए। किसी अपने की बात हिम्मत देगी आपको। शाम तक मन शांत हो जाएगा। लकी नंबर है आज आपका 2।
2: लियो सिंह राशि,
1: आज आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा। काम में तारीफ मिल सकती है। नई जिम्मेदारी लेने का मौका मिलेगा। फैसले सोच समझ कर लीजिए। लोग आपकी लीडरशिप को पसंद करेंगे। दिन सफलता का एहसास कराएगा। लेकिन अब है आज आपका 1।
2: वर्गो कन्या राशि,
1: योजना और मेहनत दोनों रंग लाएंगे। काम धीरे मगर सही दिशा में चलेगा। सेहत पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है और किसी पुराने काम का हल आपको मिलेगा। आज प्रैक्टिकल सोच फायदेमंद रहेगी। दिन संतुष्टि देगा। लकी नंबर है आज आपका 7।
2: लिब्रा तुला राशि,
1: रिश्तों में मिठास बढ़ेगी। किसी अपने से दिल की बात करने का मौका आपको मिलेगा। क्रिएटिव काम में मन लगेगा। आज अप्रिसिएशन देने और लेने दोनों का दिन है। मन हल्का रहेगा। दिन प्यार और पॉजिटिविटी से भरा रहेगा। लकी नंबर है आज आपका 3।
2: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि,
1: आज अंदर की आवाज सही रास्ता दिखाएगी। धैर्य से काम करने पर सफलता आपको मिलेगी। पुरानी उलझन सुलझ सकती है। अकेले में थोड़ा समय अच्छा आपको जरूर लगेगा। सोच गहरी और स्पष्ट रहेगी। दिन शांत और लाभदायक भी रहेगा। लकी नंबर है आज आपका 8।
2: सजिटेरियस धनु राशि,
1: आज उत्साह और एनर्जी बनी रहेगी। दोनों दोस्तों या परिवार के साथ मिलना खुशी आपको जरूर देगा और नए प्लान बन सकते हैं। सफर का योग भी बन रहा है। पॉजिटिव रहने से काम आसान लगेंगे। दिन लाइवली और खुशगवार रहेगा। लकी नंबर है आज आपका 4।
2: कैप्रिकॉर्न मकर राशि,
1: जिम्मेदारियां ज्यादा रहेंगी लेकिन परिणाम अच्छे मिलेंगे। मेहनत का फल नजर आएगा। बड़े फैसले शांति से लीजिए और बुजुर्गों की सलाह फायदेमंद होगी। धैर्य और लगन सफलता दिलाएंगे। शाम सुकून भरी रहेगी। लकी नंबर है आज आपका 5।
2: एक्वेरियस कुंभ राशि,
1: नए विचार और क्रिएटिविटी आज उभर कर आएगी। किसी नए काम की शुरुआत हो सकती है। दोस्त या साथी का सपोर्ट आपको मिलेगा। पुराना काम आगे बढ़ेगा। आज अपनी सोच पर भरोसा रखें। लकी नंबर है आज आपका 7।
2: पाइसेस मीन राशि,
1: दिल आज शांत और नर्म रहेगा। संगीत और आराम से मन को सुकून मिलेगा। अपनों के साथ समय बिताना अच्छा आपको लगेगा और जज्बात समझने का सही दिन है। स्पिरिचुअल सोच बढ़ सकती है। दिन बहुत ही अच्छा जाएगा। लकी नंबर है आज आपका 2। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की राशि आपके नाम। आई होप कि आपका दिन बहुत ही अच्छा कटे एंड हमारे साथ अगर आप कनेक्टेड है तो दिन आपका बहुत बहुत बहुत ही अच्छा जाएगा। चलिए तो म्यूजिक कंटिन्यूज ऑन RM2 रेडियो मस्ती। इट्स योर रिलैक्स रिया के साथ। रिया की ओर से आपको शुभ दिन और शुभ रविवार।
0: Your daily horoscope.
3: RM2 Radio Masti.
4: You're listening to a Radio Masti. Mm-hmm.

0: जून ऑफ द ईयर 2026 हिंदी क्विज कंपटीशन देखना ना भूले क्वार्टर फाइनल नंबर 2 इस संडे को इस रविवार एमबीसी 3 6:30 PM कौन सी वो 4 टीम्स होंगी जो पहुंचेंगी फाइनल्स में ये जानने के लिए भूले नहीं संडे को 6:30 PM ऑन एमबीसी 3 आ रहा है क्वार्टर फाइनल नंबर 2 स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2026
1: RM2 रेडियो मस्ती।

0: on to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
3: North, South,
4: 103.5.
3: East, West,
4: 96.4.
3: Center,
4: 99.4.
5: RM2
0: Radio Masti.
5: Radio Masti. The latest news and the greatest mix of music.
3: Radio Masti.
5: Feel the Masti.
6: A very good morning. सुप्रभात सभी को. अभी आप घर में आते चलिए. सुबह के ठीक 6 बज रहे हैं. समय हो चुका है संक्षिप्त समाचारों का, तो आइए इसे हम याचना के साथ सुनते हैं. नमस्कार आपको याचना.
7: नमस्कार या सभी सुनने वालों को नमस्कार. सुनिए संक्षिप्त समाचार. 11 और 12 मई को केन्या के नैरोबी शहर में अफ्रीका फॉरवर्ड 2026 शिखर सम्मेलन लगने जा रहा है. फ्रांस और अफ्रीका के बीच सहयोग मजबूत करने पर केंद्रित इस महत्वपूर्ण आयोजन में लगभग 30 राष्ट्र और सरकारी नेता तथा ठेकेदारों और निवेशकों सहित 4000 से ज़्यादा प्रतिनिधि भाग लेंगे. इसमें मॉरिशस का एक बड़ा डेलीगेशन शामिल होगा. नवाचार और विकास के लिए साझेदारी के विषय के साथ फ्रांस इस महत्वपूर्ण कॉन्टिनेंटल सम्मेलन की सफलता सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास कर रहा है. प्रधानमंत्री डॉ. नवीन रामगुलाम 12 मई को अन्य सरकारी नेताओं के साथ राउंड टेबल बैठक में भाग लेंगे. बुधवार 6 मई को शपथ ग्रहण के बाद आर्याना वामाही ने आधिकारिक रूप से डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के रूप में अपना कार्यभार संभाला. वे इस पद के साथ साथ जेंडर इक्वालिटी एवं परिवार कल्याण मंत्री की जिम्मेदारी भी निभा रही हैं. हालांकि उनकी नियुक्ति हाल में हुई है, लेकिन उनका कहना है कि वे मानसिक रूप से इन दोनों जिम्मेदारियों को निभाने के लिए पहले से तैयार हैं और उन्हें अपने परिवार तथा मंत्रिमंडल के सहयोगियों का पूरा समर्थन प्राप्त है. वर्ल्ड फूड फोरम के नए संस्करण की

0: लॉन्चिंग कल शनिवार को हॉलीडे इन मॉरिशस मुथेजो में किया गया। इसमें मॉरिशस नौजवान शामिल हो रहे हैं। इस लॉन्चिंग समारोह में कृषि उद्योग मंत्री अरविंद बुलेल भी उपस्थित रहे। अपने संबोधन के दौरान मंत्री ने युवाओं से मॉरिशस में कृषि खाद्य प्रणालियों के परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आह्वान किया। विदेश की खबरों में अमेरिका के डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में कल एक हादसा ज्यादा गंभीर रूप लेने से पहले थमा। एयरपोर्ट का सुरक्षा घेरा तोड़कर रनवे पार कर रहे एक व्यक्ति की विमान से टकराकर मौत हो गई। इस हादसे में कोई भी यात्री हताहत नहीं हुआ है। लॉस एंजेलिस जा रही फ्रंटियर एयरलाइन के विमान के उड़ान भरते समय यह हादसा हुआ। टक्कर के तुरंत बाद विमान की इंजन में आग लग गई, कैबिन में धुआं भरने लगा। टेक ऑफ तुरंत रोक दिया गया और सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सका। चलिए जानते हैं मौसम का हाल। स्थानीय स्तर पर मौसम का हाल कैसा रहेगा चलिए जानते हैं। मॉरिशस में ऊंची लहर की चेतावनी हटा दी गई है। इसके अलावा हमारे इलाके पर स्थिर हवाएं बह रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज सुबह ऊंचाइयों पर बादल घिरे रहेंगे, हल्की बारिश भी हो सकती है। दोपहर बाद धूप खिली रहेगी। रात के दौरान ऊंचाइयों पर फिर से बादल घिराएंगे और हल्की बारिश भी हो सकती है। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके कहीं कहीं पर 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। प्रवाह रेखा के परे 3 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समंदर तथा पूर्वी दक्षिणी और पश्चिमी लगूनों में न जाने की सलाह दी जाती है। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लाटो पर 18 से 20, अधिकतम 22 से 25, जबकि तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 22 से 24, अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सुबह सूर्योदय 6:29 पर, शाम को सूर्यास्त 5:43 पर होगा।
1: Your weather forecast on RM2.
2: Radio Musti.
0: इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv. Chillax, chillax, chillax with Radio Musti.
2: Your number one Bollywood radio station.

0: 6:09 वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को सुप्रभात। संडे मॉर्निंग धीरे धीरे पूरी तरह जाग रही है और रिलैक्स का दूसरा आवर शुरू हो चुका है रेडियो मस्ती पर। अब सुबह की रोशनी थोड़ी और नर्म लग रही है, हवा में हल्का सा ठंड का एहसास तो है ही और दिल में एक सिंपल सी खुशी कि आज जब संडे है। इस आवर की शुरुआत हुई तुम क्या मिले जाने जा के साथ है। एक ऐसा गाना जो संडे मॉर्निंग के मूड को परफेक्टली सेट कर देता है, सॉफ्ट रोमांटिक और फील गुड। संडे का जो असली मजा है यही है कि ना कोई जल्दी ना कोई प्रेशर, सिर्फ अच्छा म्यूजिक, अच्छे थॉट्स और गुड वाइब्स। तो अगर आप चाय के साथ बैठकर हमें सुन रहे हैं या ड्राइव पर निकले हुए हैं, जॉगिंग कर रहे हैं या काम के लिए तैयार हो रहे हैं, संडेज भी लोग कहाँ पर जाते हैं उनको बोको हाजा कहते हैं, तो इस आवर में बस सुकून ही सुकून आपको मिलेगा। मैं हूँ आपके साथ आपके रिया और रिलैक्स पर आज भी गुड फील्स और गुड सॉन्ग्स का सिलसिला जारी है। सो लेट्स गेट गोइंग टू द नेक्स्ट ट्रैक। हमें तो बहुत ही पसंद है ये गाना, आई एम श्योर कि आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। योर डेडिकेशन मैसेजेस ऑन 5499194।
1: Chillax with Radio Masti,
2: your number one Bollywood radio station.

0: क्वार्टर फाइनल नंबर टू इस संडे को इस रविवार NBC 3 6:30 PM कौन सी वो फोर टीम्स होंगी जो पहुंचेंगी फाइनल्स में, ये जानने के लिए भूले नहीं संडे को 6:30 PM ऑन NBC 3 आ रहा है क्वार्टर फाइनल नंबर टू स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2026।
1: You're listening to RN2 Radio Masti।
2: अच्छा don't mind, लेकिन इतना अच्छा मौसम है और तुम इन बीमारियों के अलावा और कुछ नहीं सोचता। गुलफाम साहब के फैन हो, कोई शायरी वायरी नहीं आती क्या?
3: बिल्कुल आती है, सुनो।
2: सुना।
3: अर्ज है, दवा भी काम ना आए कोई दुआ ना लगे, दवा भी काम ना आए कोई दुआ ना लगे, मेरे खुदा किसी को प्यार की हवा ना लगे। आदाब।

अर्ज है, कुछ मजनू बने, कुछ रांझा बने, कुछ रोमियो कुछ फरहाद हुए, इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए। वो देखो,

इसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं। मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

0: फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है। ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते हैं, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।
1: Chillax with Radio Masti.
2: Well, संडे मॉर्निंग से एक रिमाइंडर होती है कि जिंदगी सिर्फ भागने का नाम नहीं, कभी कभी स्लो होना भी जरूरी होता है। सुबह की सनलाइट जब धीरे से घर में आती है तो लगता है जैसे नेचर खुद कह रहा हो रिलैक्स, एंड रेडियो मस्ती कह रहा हो चिलैक्स। ऐसे समय पर सॉफ्ट गाने और भी स्पेशल लगते हैं। ये जैसे गाने हम चला रहे हैं, ऐसे गाने जो आपको पसंद है वो बैकग्राउंड में बजते रहते हैं और बिना एफर्ट के मूड को लाइट कर देते हैं। आज का थॉट हम सिंपल रखते हैं, खुशी हमेशा बड़े प्लान्स में नहीं होती, कभी कभी एक कप चाय, एक फेवरेट गाना और बिना टेंशन की सुबह ही बस काफ़ी होती है। इस संडे खुद को थोड़ा सा गिफ्ट आप दीजिए, और हम मटेरियलिस्टिक गिफ्ट्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, पीस का गिफ्ट, सुकून का गिफ्ट। रिलैक्स यहाँ पर हम लेकर आते हैं बहुत ही खूबसूरत गाने आपके नाम है, एंड आई जस्ट सो होप कि आपको गाने ऐसे ही पसंद आए जैसे कि नेक्स्ट गाना।
1: Chillax with Radio Masti,
3: your number one Bollywood radio station.

0: जून ऑफ द ईयर 2026 हिंदी क्विज कंपटीशन देखना ना भूले क्वार्टर फाइनल नंबर 2 इस संडे को इस रविवार MBC 3 6:30 PM कौन सी वो 4 टीम्स होंगी जो पहुंचेंगी फाइनल्स में ये जानने के लिए भूले नहीं संडे को 6:30 PM ऑन MBC 3 आ रहा है क्वार्टर फाइनल नंबर 2 जून ऑफ द ईयर 2026
1: Welcome to RM2 Radio Musti.
2: Radio Musti.
3: Hit music only.
2: Feels a musti.

सभी सुनने वालों को नमस्कार और आदाब। सुबह के इस बुलेटिन में आप सबका स्वागत। सबसे पहले पेश है आज की सुर्खियां। 11 और 12 मई को केन्या के नैरोबी शहर में अफ्रीका फॉरवर्ड 2026 शिखर सम्मेलन का आयोजन। फ्रांस और अफ्रीका के बीच सहयोग मजबूत। मॉरिशस से एक भारी डेलीगेशन इसमें भाग ले रहा है। बुधवार 6 मई को शपथ ग्रहण समारोह के बाद हरियाणा वर्मा ही आधिकारिक रूप से डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के रूप में कार्यभार संभाल रही है। इस पद के साथ साथ जेंडर इक्वालिटी एवं परिवार कल्याण मंत्री की जिम्मेदारी भी। उनका कहना है कि वे मानसिक रूप से इन दोनों जिम्मेदारियों के लिए तैयार। वर्ल्ड फूड फोरम के नए संस्करण की लॉन्चिंग कल शनिवार को की गई। इसमें मॉरिशस नौजवान शामिल हो रहे हैं। कृषि उद्योग मंत्री अरविंद बुलेल ने इन सभी युवाओं से मॉरिशस में कृषि खाद्य प्रणालियों के परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका की निभाने की मांग। विदेश की खबरों में फ्रंटियर एयरलाइंस का एक विमान कल अमेरिका के डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में एक व्यक्ति से टकराया जो रनवे पार कर रहा था। इस हादसे के बाद विमान की इंजन में आग। सभी यात्री सुरक्षित और रनवे पार करने वाला व्यक्ति की मृत्यु। बुलेटिन में एक बार फिर आप सबका स्वागत। पेश समाचार विस्तार से। 11 और 12 मई को केन्या के नैरोबी शहर में अफ्रीका फॉरवर्ड 2026 शिखर सम्मेलन लगने जा रहा है। फ्रांस और

0: अमेरिका के बीच सहयोग मजबूत करने पर केंद्रित इस महत्वपूर्ण आयोजन में लगभग 30 राष्ट्रीय और सरकारी नेता तथा ठेकेदार और निवेशक सहित 4,000 से ज़्यादा प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम 12 मई को अन्य सरकारी नेताओं के साथ राउंड टेबल बैठकों में भाग लेंगे। ज़्यादा विस्तार इस रिपोर्ट में।
1: पहले दिन एलिजे में कई आर्थिक पार्टनर हाल में राष्ट्रपति इमैनुअल माक्रों की मौजूदगी में एकत्र हुए और अगले 11 और 12 मई को नैरोबी में लगने वाली अफ्रीका फॉरवर्ड समिट 2026 के बारे में चर्चा की गई। आईबीएल के सीईओ और बिजनेस मॉरिशस के अध्यक्ष अनु लाशेस भी इस तैयारी बैठक में उपस्थित। फ्रांस और अफ्रीका के बीच व्यावसायिक संबंधों की मजबूती, उन्होंने कहा,
2: il était important pour le président Macron donc de mettre en place cette coalition et de faire appel.
1: राष्ट्रपति माक्रों के लिए ये मुलाकात जरूरी, साथ में कई क्षेत्रों में तैनात पक्षों को बुलाया गया। निसंदेह इससे संकेत मिलता है कि इसकी बदौलत मॉरिशस की विजिबिलिटी बढ़ेगी और इन सभी प्रतिनिधियों को विचारों का आदान प्रदान करने का मौका मिलेगा। अफ्रीका फॉरवर्ड को लेकर चुनौतियों के बारे में भी बेहतर रूप से जानने का अवसर मिलेगा। ठेकेदारों को भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, नौकरी पैदा करने के लिए, समृद्धि उत्पन्न करने के लिए, किस तरह हम एक वास्तविक साझेदारी कायम कर सकते हैं अफ्रीकी देशों से मॉरिशस और आज के यूरोप के बीच। अगले सोमवार और मंगलवार को मॉरिशस से पब्लिक एवं निजी सेक्टर का एक महत्वपूर्ण प्रतिनिधिमंडल केन्या जाएगा, जहाँ पर अफ्रीकी फ्रांसीसी आदान प्रदान पर बातचीत होगी। पोखरिस में फ्रांस के राष्ट्रदूतावास से फ्रेडेरिक बोंटन ने इस शिखर बैठक में सभी संबंधित पक्षों के लिए संभावना और चुनौतियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा, अनुमान है कि पूरे अफ्रीका से 40 राष्ट्र एवं सरकारी नेता भाग लेंगे। निजी सेक्टर के लिए सीईओ समिट होगी, 1,500 कंपनी मालिक होंगे, छोटे बड़े सभी, फ्रांस से एक तिहाई और दो तिहाई अफ्रीका से। फ्रांस और अफ्रीका के बीच नई गतिशीलता का प्रतीक है।
3: Ce sommet illustre parfaitement le renouveau des relations entre la France et l'Afrique.
1: इस तरह अफ्रीका फॉरवर्ड शिखर बैठक फ्रांसीसी अफ्रीकी आर्थिक सहयोग को फिर से निर्धारित करने के लिए एक स्ट्रेटेजिक मंच की तरह है। मॉरिशस इस उभरते महाद्वीप की ओर एक पुल की भूमिका निभाने के लिए तत्पर है।
0: बुधवार 6 मई को शपथ ग्रहण समारोह के बाद हरियाणा व माही ने आधिकारिक रूप से डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर के रूप में अपना कार्यभार संभाला। वे इस पद के साथ साथ जेंडर इक्वालिटी एवं परिवार कल्याण मंत्री की जिम्मेदारी भी संभाल रही हैं। हालांकि उनकी नियुक्ति हाल में हुई, लेकिन उनका कहना है कि वे मानसिक रूप से इन दोनों जिम्मेदारियों को निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। उनको सुनते हैं।
4: Moi, je fais prestation, c'est bon, précisément mercredi. Mais tout ça, c'est une activité qui nous finit après là. C'est une activité qui est organisée par le ministère du Gender et qui finit prévoir avant même.
5: बुधवार को मैंने शपथ ग्रहण की। जेंडर इक्वालिटी मंत्रालय द्वारा जिन गतिविधियों का आयोजन किया गया है वो पहले से मंत्रालय द्वारा निर्धारित की गई थी। मुझे डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर के पद पर मनोनीत करने से पहले ही मैं तैयार हूँ। यहाँ से मुझे अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाना है जहाँ पर गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। फिर मंगलवार को राष्ट्रीय सभा में प्रधानमंत्री को संबोधित संसदीय प्रश्नों के जवाब की तैयारी मुझे करना है, जिनका उत्तर मुझे ही देना है। फिर जेंडर इक्वालिटी मंत्री के रूप में मुझसे पूछे जाने वाले प्रश्नों के जवाब की भी तैयारी करना है।
4: En tant que ministre gender, donc vous préparez moi ça, donc nous guettons du coup, mais vous pensez qu'il faut beaucoup pas faire.
0: Fonds militant progressif ne khud ko rajnitik paridrashya mein ek vikalp ke roop mein prastut kiya. Iske ek sadasya Paul Behange ne yuvaon aur mahilaon se naye andolan ke uddeshyon ka samarthan karne ki appeal ki. ये नया आंदोलन आधिकारिक रूप से कल वाक्वा फिनिक्स नगर पालिका के हॉल में आयोजित संस्थापक सम्मेलन के दौरान शुरू किया गया। पल बेहोशे को सुनते हैं।
6: Nous comptons sur tous nos jeunes. Jeunes, c'est l'avenir. Nous comptons sur tous nos jeunes dans toutes les circonscriptions pour organiser. Mais nos moins jeunes aussi, nos vétérans aussi, nos madame, nous comptons. Nous sommes tous pour nous organiser.

0: Nous peinons pour regrette, non, rien. Nous priorité, c'était le fouet MSMDO. Mais on dit, nous priorité, c'est pas si même, pas seulement MSM, mais parti travailliste de la ville de la
1: और फ्रॉम मिलिटेंट प्रोग्रेसिव के दूसरे सदस्य चेतन बाबूलाल ने भी सभा को संबोधित किया। उन्होंने

0: न होने के बावजूद अधिकारी मानते हैं कि स्थिति लगातार बिगड़ रही है, खासकर जानवरों को छोड़ दिए जाने और नसबंदी की कमी के कारण। जैसा कि मानों डुगवी ने बताया, मोरिस स्टेरिलीज उजानिमो का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का सहयोग इस पशु आपात स्थिति से निपटने के लिए टिकाऊ समाधान लागू करने में मदद कर सकता है। उनको सुनते हैं।
1: पशुओं की स्थिति चिंताजनक है जो दिन ब दिन बिगड़ रही है, इसलिए लोगों को आगाह किया जा रहा है। स्थानीय स्तर पर नसबंदी का अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन आवारा कुत्तों की आबादी को घटाने के लिए ये पर्याप्त नहीं। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से सीख ले सकते हैं, वे हमारी मदद के लिए तत्पर हैं, ताकि व्यापक नसबंदी चलाया जा सके। निर्धारित समय में हम सरकार के साथ सहयोग करने के लिए तत्पर हैं।
2: Nous sommes complètement pour collaborer avec le gouvernement et je pense que c'est que comme ça que ça peut fonctionner d'ailleurs parce qu'on est beaucoup sur le terrain aussi nous les ONG.
0: विदेश की खबरों में, अमेरिका के डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में कल एक हादसा ज़्यादा गंभीर रूप लेने से थम गया। एयरपोर्ट का सुरक्षा घेरा तोड़कर रनवे पार कर रहे एक व्यक्ति की विमान से टकराने से मौत हो गई। ये हादसा लॉस एंजेलस जा रही फ्रंटियर एयरलाइन के विमान की उड़ान भरते समय हुआ। टक्कर के तुरंत बाद विमान की इंजन में आग लग गई और कैबिन में धुआं भरने लगा। टेक ऑफ तुरंत रोक दिया गया और सभी 224 यात्रियों तथा 7 क्रू सदस्यों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। और ग्रीस में मछुआरों की एक रहस्यमय ड्रोन बोट मिला है जिसमें विस्फोटक भरे हुए हैं। पुलिस अब इसकी जांच कर रही है। ये नौका यूक्रेन में बने एक मानव रहित सतही वाहन है जो आयोनियन द्वीप पर मिला। अभी तक ये साफ नहीं कि ग्रीस की एयर गुफा में मिली ये नौका आखिर वहां पहुंची कैसे। जानते हैं मौसम का हाल। मॉरिशस में तेज लहर की चेतावनी हटा दी गई है। इसके अलावा देश में अस्थिर हवाएं बह रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज सुबह ऊंचाइयों पर बादल घिरे रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है। दोपहर बाद धूप खिली रहेगी। रात को फिर से ऊंचाइयों पर बादल घिराएगी और रह रहकर बारिश होगी। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके कहीं कहीं पर 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। प्रवाह रेखा के परे 3 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समंदर तथा पूर्वी दक्षिणी और पश्चिमी लगूनों में न जाने की सलाह दी जाती है। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लाटो पर 18 से 20, अधिकतम 22 से 25, जबकि तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 22 से 24, अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। आज सुबह सूर्योदय 6:29 पर हुआ, शाम को सूर्यास्त 5:43 पर होगा।

0: देश विदेश की इन्हीं खबरों के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला। इसको अब तक पहुंचाने में पूरे समाचार विभाग और तकनीकी पर यूसुफ का साथ रहा। ध्यान पूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहिए, थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
0: शोक समाचार सुनिए। रेलवे रोड गुडलैंड्स में 85 साल के 85 ईयर्स ओल्ड के श्री मुस्तफ़ा गुलक खान जो फिजा कवाश के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे इंतकाल कर गए हैं। उनका जनाजा आज दिन के 11 बजे उनके मकान रेलवे रोड गुडलैंड्स से उठाकर दफनाने के लिए बेलमो का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 11 AM। जयपाल लेन प्लेंडीपापाई में 78 साल के 78 ईयर्स ओल्ड के श्री धनीलाल बोक्यूस जो जीवन के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दोपहर 2 बजे उनके बेटे तश्विन कमल बोक्यूस के मकान जयपाल लेन प्लेंडीपापाई से उठाकर अंतिम संस्कार

के लिए थ्रियोले की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमिशन टुडे एट 2 PM। रुई जुल मालाक थोंग बापो ट्रीमे रुई जुल मालाक थोंग बापो ट्रीमे 57 साल के 57 ईयर्स ओल्ड के श्रीजीत कुमार लक्ष्मी जो संजय के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे और पूर्व पुलिस सर्जन थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दोपहर 2 बजे उनकी पत्नी अमगम दाना लक्ष्मी के मकान रुजुलमा लाख थोंक बापोटली से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमिशन टुडे एट 2 PM। रारो त्याहूज में 73 साल के 73 ईयर्स ओल्ड के श्री रामेश्वर गिरधारी जो हामिश बाजौ के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी आज सुबह 9:30 बजे उनकी पत्नी माला देवी गिरधारी के मकान रारो त्याहूज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बामोशों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमिशन टुडे एट 9:30 AM। अवेन्यू पांचू स्टैनली रोजिल में 57 साल के 57 ईयर्स ओल्ड के श्री धर्मजय भवानी दीन जो किशन के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 1 बजे उनके मकान अवेन्यू पांचू स्टैनली रोजिल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कोदगाद की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमिशन टुडे एट 1 PM। कोपेलेन त्यारोज में 66 साल के 66 ईयर्स ओल्ड के श्री राज माता जो राज के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल सुबह 9 बजे उनकी पत्नी सीता पूर्णिमा माता के मकान कोपेलेन त्यारोज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वामोशों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमिशन टुमोरो एट 9 AM। फ्रांस में 72 साल के 72 ईयर्स ओल्ड के श्रीमती चित्रलेखा गिरधारी जो अनीता के नाम से ज़्यादा जाने जाती थी और पहले ली बेत वाकवा रहा करती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी कल दोपहर 1:45 बजे उनके मकान फ्रांस में उठाई जाएगी क्रिमिशन टुमोरो एट 1:45 PM इन फ्रांस। जोली स्ट्रीट 400 में 49 साल की 49 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती सुविना द्वारका प्रसाद पैदाशी नाम मंगत रॉय, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी बाद में उठाई जाएगी और उनके पति शरद चंद द्वारका प्रसाद के मकान जोली स्ट्रीट का थोसिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए दुफ्रेया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमिशन लेटर। 62 साल के 62 ईयर्स ओल्ड के श्री महेश्वर सिंह लक्ष्मण जो पिपित नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी मंगलवार को सुबह 10 बजे मोहा पृथ्वीविया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए त्यामिनिस त्रियोले की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमिशन ऑन ट्यूसडे एट 10 AM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है। Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

0: Chillax with Radio Musty.
1: छह बजकर 55 मिनट और समय भी हो चला है बाय कहने का, बट जाने से पहले एक दो मैसेजेस हम जरूर देखा कर जाएंगे। हमारे साथ कौन है यहाँ पर, किसौती जुड़ी हुई है और अब है पिछले रिव्यू से, और एक सुंदर सा गाना आप अपने बड़े भाई दर्शन के नाम रिक्वेस्ट कर रहे हैं जो पिछले रिव्यू से है और आज उनका जन्मदिन है। सो भैया को हैप्पी हैप्पी बर्थडे, साथ ही सरोज जी का तो बोन से है और सभी को विश करते हैं ब्लेसिंग संडे। आपको भी हम यही विश करते हैं कि आपका रविवार बहुत ही अच्छे से जाए और आप हमेशा खुश रहे। राजेन, मोनिका, पूनम, श्रेया, उमेश, अर्षी, अम्बल, अर्षिता, विशाल के नाम आप गाना रिक्वेस्ट करते हैं। परवाग विदेशी जी हमारे साथ है जुड़े हुए हैं और अनुषा के नाम जो मोतबर रहती है उनके नाम नेक्स्ट ट्रैक आप डेडिकेट करना चाहते हैं। एंड ऑल्सो हमारे साथ है रीना जुड़ी हुई है पॉम्पलेमोसे से है एंड अपनी ग्रैंड डॉटर्स आरोही आरोशी जो कि ट्विंस है और आज बर्थडे सेलिब्रेट करे है, 2 साल की हो गए हैं। सो हैप्पी बर्थडे टू आरोही एंड आरुषी, बहुत एंड ऑल्सो टू बेस्ट फ्रेंड रेशमा व जुरावन जो आज अपना जन्मदिन मना रही है। सो यस, हैप्पी बर्थडे सभी को जो आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं एंड आर एम टू रेडियो मस्ती टीम की ओर से आपको हैप्पी हैप्पी बर्थडे एंड इसी के साथ लेट मी विश यू ऑल अ हैप्पी संडे। बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग। हमारी मुलाकात जल्दी होगी और जाने से पहले ये बहुत ही खूबसूरत गाना आपके नाम टू मेक योर संडे और भी खास।

0: Welcome to RM2
1: Radio Masti.
2: Radio Masti.
1: North, South,
2: 103.5.
1: East, West,
2: 96.4.
1: Center,
2: 99.4.
0: RM2
2: Radio Masti.
0: Radio Masti. The latest news and the greatest mix of music.
1: Radio Masti.
0: Feel the Masti.
3: सुबह के 7 बजे हैं।
4: टाइमलेस तड़का
0: RM2
1: रेडियो मस्ती
4: टाइमलेस तड़का

0: Plus तड़का
1: RM2 Radio Musti
2: Super Bad 7:06 मिनट हो चल रहा है एंड अभी आप कनेक्टेड है टाइमलेस तड़के के साथ, जहां पर आपके लिए टाइमलेस हिट्स 9 बजे तक हाजिर है निमनी। तो यही पर स्टे ट्यून्ड इन और गानों का मजा लेते हैं साथ में RM2 Radio Musti पर।
0: Timeless Tadka
1: RM2
3: Radio Musti
0: Timeless Tadka

0: दड़ा।
1: पंचम, एक बड़ा मासूम सा बच्चा था तुम्हारे साथ, जो तुम्हारे अंदर तुम्हारे मिजाज में जीता था। शरीर भी पाजी भी हंसता खेलता प्रैक्टिकल जोक्स करता हुआ, उसे हमने उदास नहीं होने दिया।

0: Shameless Tadka.
1: RM2 Radio Musti.
2: कुछ बातें ऐसे होती हैं जो बिना कहे ही बयां हो जाती हैं गानों के जरिए ऑफ कोर्स। तो आज इस संडे को अगर किसी की याद आ रही है 5499124 पर आप उनको एक गाना डेडिकेट ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि टाइमलेस हिट्स आपके नाम है। अभी आप बस जुड़ रहिए और वापस चलते हैं उन्हीं टाइमलेस गलियों में।
1: Radio Musti feels a Musti.

0: Sports Magazine is brought to you by Quality Decor, the floor expert.
1: Sports News, latest updates.
2: Sports News,
3: Radio Musti in the mix.
4: चलिए अभी के लिए सुनते हैं latest sports updates आपसे विकास जी. Good morning.
5: Good morning Nilmani and a very good morning to all sports fans. इंग्लैंड के दो लाल और दोनों ही बेहाल क्योंकि दोनों के अटैक में पड़ा है गोलों का अकाल. जबकि मैनचेस्टर सिटी में द गोल्स आर कमिंग क्योंकि पेप गार्डियोला का गोल यानी उनका मकसद अभी भी टाइटल जीतना है. अब द सिटीजन्स आर्सेनल से केवल दो अंक पीछे हैं और आर्सेनल जो आज रात लोहा लेगा वेस्ट हैम यूनाइटेड से जिसका हथौड़ा भारी पड़ सकता है. नतीजे सुनिए. कल इंग्लैंड का प्रीमियर लीग का 36वां 36 वीक आरंभ हुआ लिवरपूल और चेल्सी के मैच के साथ के मुकाबले के साथ और जो एक ड्रॉ में संपन्न हुआ लिवरपूल 1 चेल्सी 1. हालांकि खेल के छठे मिनट पर ही रॉयन ग्रेवेनबर्ग का एक सुंदर गोल लेकिन उसके बाद चेल्सी लिवरपूल पर हावी हो गया वो भी एनफील्ड में लिवरपूल के घर में. एंजो फर्नांडेज का गोल रहा एंजो फर्नांडेज का गोल खेल के 36वें मिनट पर और उसके बाद मैच में कोई और गोल नहीं बना. लिवरपूल 1 चेल्सी 1 बड़ा ही शर्मनाक मैच कह सकते हैं खासतौर पे लिवरपूल के लिए. न जान न दम चीनी भी कम दूध भी कम इतनी सारी कमियों के बावजूद ऑन ए स्लॉट इज स्टिल देयर. खबर है कि इस स्थिति को अनएक्सेप्टेबल कहते हुए वर्जिल वान

डाइक ने कहा कि वो नए कंट्रैक्ट पर हस्ताक्षर नहीं करेगा। जो भी हो, द गाय मस्ट गो। लिवरपूल 1 चेल्सी 1। मैनचेस्टर यूनाइटेड भी जीत नहीं पाया, उसने भी एक भी गोल नहीं स्कोर किया, उसके पैरों में भी अब दम नहीं रहा। इट्स संडरलैंड 0 मैनचेस्टर यूनाइटेड 0। स्टेडियम ऑफ लाइट में अंत तक संडरलैंड भारी पड़ गया था, हावी हो गया था मैनचेस्टर यूनाइटेड पर। माइकल कारिक को लग रहा था कि उनके कमी खिलाड़ियों के डिप्लीटेड टीम के साथ वो मैच जीत पाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। संडरलैंड 0 मैनचेस्टर यूनाइटेड 0। हालांकि द रेड डेविल्स यूरोपियन चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाइड हो गए हैं, फिर भी केवल 65 अंक उनके पास हैं, 65। लिवरपूल के पास 59, 59। अभी एस्टन विला के पास है 58, जो आज अपना लेट मैच खेलेगा और लिवरपूल को पार कर सकता है। लेकिन बोर्नमुथ एकदम आगे बढ़ रहा है, अब बोर्नमुथ के पास है 55 अंक। बोर्नमुथ और लिवरपूल के बीच केवल 4 अंकों का अंतर है और मैच बचे हैं 2, यानी मैथमेटिकली एवरीथिंग इज पॉसिबल। संडरलैंड 0 मैनचेस्टर यूनाइटेड 0। बोर्नमुथ ने एवे जाकर फुलहम को 1-0 से परास्त किया, गोल कर्टेसी ऑफ रॉयन खेल के 53वें मिनट पर। इस मैच में दो दो खिलाड़ियों को एक एक ओर से रेड कार्ड मिला फर्स्ट हाफ में ही, सो फिर भी फुलहम की हार बोर्नमुथ की जीत। फुलहम 0 बोर्नमुथ 1। और बोल्टन ने वुल्वरहैम्पटन वांडरर्स को 3-0 से परास्त किया। हिंशेलवुड, लेविस डंक और मिंटे ऑन टारगेट फॉर ब्राइटन एंड होव। कल के लेट मुकाबले में मैनचेस्टर सिटी ने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी, ब्रेंटफोर्ड को उसने 3-0 से तोड़ा। जेरेमी डोकू के बाद एर्लिंग हैलैंड और ओमार मारमुश ऑन टारगेट, यह आखिरी गोल इंजुरी टाइम में स्कोर किया गया। सो मैनचेस्टर सिटी और आर्सेनल के बीच अब केवल 2 अंकों का अंतर है। आज आर्सेनल अपना मैच खेलकर फिर से आगे जा सकता है। आज रात 7:30 नॉट टू मिस, सेव द डेट, वेस्ट हैम यूनाइटेड वर्सेस आर्सेनल आज रात 7:30। द हैमर्स भी अभी रिलेगेशन जोन से बचने की भरसक कोशिश करेंगे, उनको निकलना ही है। वे वेस्ट हैम यूनाइटेड से केवल 1 अंक पीछे है, वे टोटेनहम हॉटस्पर से केवल 1 अंक पीछे हैं। टोटेनहम जो सोमवार रात 11 बजे अपना लेट मैच खेलेगी होम मैदान में लीड्स यूनाइटेड के विरुद्ध। सो आज के मुकाबले इस प्रकार हैं, बर्नली वर्सेस एस्टन विला 5:00, उसी समय क्रिस्टल पैलेस टक्कर लेगी एवर्टन से, नॉटिंगहम फॉरेस्ट वर्सेस न्यूकासल यूनाइटेड, और आज रात 7:30 सो रिजर्व वेस्ट हैम यूनाइटेड वर्सेस आर्सेनल। बढ़ते हैं बाकी चैंपियनशिप की ओर। इंग्लैंड के लीग चैंपियनशिप में जो प्लेऑफ सेमीफाइनल था वो भी कल की तरह ड्रॉ पर संपन्न हुआ, मिडलसब्रोस 0 साउथम्पटन 0। फिर स्पेन के लालीगा में कल अतलेटिको मैड्रिड की हार हुई, अतलेटिको 0 सेल्टा वीगो 1, रियल सोसिएदाद 2 बेटिस 2, सेविलिया ने स्पानियोल को 2-1 से हराया, एल्चे 1 अलावेस 1। जर्मनी के बुंडेसलीगा में चैंपियन टीम बायर्न म्यूनिख ने एवे जाकर एन मौके पे वुल्फ्सबर्ग को 1-0 से हराया, स्टुटगार्ट 3 लेवरकुसन 1 लाइप्ज़िग 2 सिनपाउली 1 होफेनहाइम 1 वर्डर ब्रेमेन 0 ऑक्सबर्ग 3 बोरुशिया मोंचेनग्लादबाक 1। इटली के सीरी आ में कल इंटर मिलान जो चैंपियन बन गई है उसने एवे जाकर लाजियो को 3-0 से तोड़ा, कैग्लियारी 0 उदिनेजे 2 लेचे 0 यूवेंटुस 1। और स्पेन की बात अभी हुई थी, आज भूलिएगा नहीं, आज रात 11 बजे द एल क्लासिको खेला जाएगा नुको में, बिटवीन एफसी बार्सिलोना एंड रियल मैड्रिड। अभी बार्सिलोना 11 अंक आगे है और आज केवल 1 अंक चाहिए, और एल क्लासिको में रियल मैड्रिड को हराकर ये टाइटल जीतना ये अलग ही खुशी की बात है। सो आज देखते हैं नुको में क्या होगा, बार्सिलोना चैंपियन घोषित किया जा सकता है आज रात ही, केवल 1 अंक चाहिए। फिर भारत के इंडियन सुपर लीग में कल जो मैच खेले गए उनमें गोवा ने मैच ड्रॉ किया, और ऐसे में इंडियन सुपर लीग जारी रखी जा रही है। इंडियन सुपर लीग में आज भी कई मैच खेले जाएंगे। गोवा 1 मोहन बगान 1, जमशेदपुर की हार हुई, जमशेदपुर 0 बेंगलुरु 1। आज के मैचों में कमाल के मुकाबले आज निर्धारित हैं। हमने बताया कि इंग्लैंड के प्रीमियर लीग में आर्सेनल एवे जाएगी वेस्ट हैम यूनाइटेड के मैदान पे, और स्पेन के लालीगा

में एल क्लासिको एफसी बार्सिलोना वर्सेस रियल मैड्रिड। टेनिस में वर्ल्ड नंबर वन अरीना सेबेलेंका भी इटालियन ओपन के दूसरे राउंड से ही आउट हो गई। ये तीसरे मैच में उसकी दूसरी हार है। कल अरीना सेबेलेंका को हराया सोराना केस्टिया ने 2-6, 6-3 और 7-5 से। तो क्रिकेट की बात करें, इंडियन प्रीमियर लीग के अंतर्गत कल जो मैच खेला गया उसमें कल गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रनों से परास्त किया, 77 रनों से परास्त किया। आज इसी इंडियन प्रीमियर लीग में दो अन्य मैच खेले जाएंगे। सबसे पहले रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का मुकाबला मुंबई इंडियंस से। ये मैच शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। लेकिन इससे पहले ही चेन्नई के एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। और स्थानीय खेल जगत से लोकल स्पोर्ट्स में आज हैंडबॉल के गुण गाए जाएंगे। फिनिक्स के जिम्नेजियम में मॉरिशस हैंडबॉल एसोसिएशन की सरपरस्ती में आज दिन के 11 बजे मॉरिशस की अंडर 20 टीम टक्कर लेगी रेनियन टापू की अंडर 20 टीम बॉडी नेफ्ल से। मॉरिशस की हमारी लड़कियां आज हैंडबॉल में अपना हुनर दिखाएंगी, इसलिए उनका हौसला बढ़ाने अवश्य जाइए। आज दिन के 10 बजे से ही फिनिक्स का जिम्नेज

0: जहां सलीम मूसा, टोनी फ्रांसवा, मुकेश रामरेखा, अमीन दिलू और शिवराम गोबिंद आदि एक्स इंटरनेशनल खिलाड़ी लेक्सप्रेस अखबार का सामना करेंगे दिन के 1 बजे से क्यूपिप के स्टाद वेलोड्रोम में। और अपनी ओर से वेटरन कैडेट्स क्लब आज शाम 3:30 बजे से पालमा में होंगे, जहाँ पुराने खिलाड़ी कानन पानिकन की याद में एक श्रद्धांजलि मैच खेला जाएगा। कैडेट्स क्लब वर्सेस अमी दू लेस्ट आज शाम 3:30 बजे पालमा में, जहां कैडेट्स क्लब के पूर्व खिलाड़ी अपने पैरों के दम पर फुटबॉल का सबक सिखाएंगे। इसलिए खेलते रहिए और सुनते रहिए। नमस्कार और शुभ दिन।
1: धन्यवाद विकास जी।
2: दिस मैगजीन वॉज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी डेको, द फ्लो एक्सपर्ट।
3: RM2 Radio Musti.

0: टून ऑफ द ईयर 2026 हिंदी क्विज कंपटीशन देखना ना भूले क्वार्टर फाइनल नंबर 2 इस संडे को इस रविवार एमबीसी 3 6:30 PM कौन सी वो 4 टीम्स होंगी जो पहुंचेंगी फाइनल्स में ये जानने के लिए भूले नहीं संडे को 6:30 PM ऑन एमबीसी 3 आ रहा है क्वार्टर फाइनल नंबर 2 टून ऑफ द ईयर 2026
1: टाइमलेस तड़का
2: RM2
3: रेडियो मस्ती
1: टाइमलेस तड़का

0: Shameless तड़का
1: RM2 Radio Mastery.
2: एक सिंपल हाय हेलो कब फ्रेंडशिप में और कब फ्रेंडशिप प्यार में बदल जाता है पता नहीं चलता। वैसे आज है ट्रस्ट योर इंट्यूशन डे एंड ये दिन हमें प्रोत्साहित करता है टू एम्ब्रेस आवर इनर वॉइस एंड इंस्टिंक्ट्स को। खास मौका है आज जो कि हाईलाइट करती है वैल्यू ऑफ ट्रस्टिंग हमारे गट फीलिंग्स को। जब हम कोई भी डिसीजन ले रहे हैं तो हमारे इंट्यूशन ही वो चीज़ है जो हमें गाइड करती है टवर्ड्स बेटर चॉइसेस। और बाकी बेहतर गाने हम लाते रहेंगे आपके लिए एंड उसको कुछ ही देर में होने वाला है भोजपुरी में समाचार, तो यही जुड़े रहिए RM2 रेडियो मस्ती के साथ।
1: RM2 रेडियो मस्ती इन द मिक्स। रेडियो मस्ती इन द मिक्स।

सबैके नमस्ते, संक्षिप्त समाचार सुनजा। 11 आरी 12 मई के केन्या के नैरोबी शहर में अफ्रीका फॉरवर्ड 2026 शिखर सम्मेलन न लगत बटे। फ्रांस आरी अफ्रीका के बीच सहयोग मजबूत करे परी। ई महत्वपूर्ण आयोजन में लगभग 30 को राष्ट्र आरी सरकारी नेता आरी ठेकेदार लोग आर निवेशक लोग के 4000 से जस्ती प्रतिनिधि लोग भाग लियन। स इमें मॉरिशस के गो 12 डेलीगेशन शामिल हुई। नवाचार आर विकास खातिर साझेदारी के विशेषय के साथ फ्रांस ई महत्वपूर्ण कंटिनेंटल सम्मेलन के सफलता सुनिश्चित करे खातिर प्रयास करत बाटे। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम 12 मई के दूसर सरकारी नेता लोग संगे राउंड टेबल बैठक में भाग लियन। बुध 6 मई के शपथ ग्रहण के बाद आज्ञा नव माह आधिकारिक रूप से डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर में के रूप में अपन काम करे शुरू कर दे रहन हवन। ई पद के संगे संगे जेंडर इक्वालिटी आरी परिवार कल्याण मंत्री के जिम्मेदारी ओ संगे संभालियन। हालांकि उनकर नियुक्ति हाल में होल बाटे, बखेर ओ ई बोलत हवन जा कि ओ मानसिक रूप से दोनों जिम्मेदारी संभाले खातिर अक्ते से तैयार हवन। आरी उनकरा ई में अपन परिवार आरी मंत्रिमंडल के सहयोगी लोग के समर्थन मिलत बाटे। वर्ल्ड फूड फोरम के एगो नवा संस्करण के लॉन्चिंग काल सामदी के हॉलिडे इन मॉरिशस मोथेजो में करल गल। इमें मॉरिशस के नौजवान लोग भाग लेवत हवन। स ई लॉन्चिंग समारोह में कृषि उद्योग मंत्री अरविंद बुलेल उपस्थित रहलन। अपन संबोधन के दौरान मंत्री युवा लोग से मॉरिशस में कृषि खाद्य प्रणाली में परिवर्तन में अपन योगदान दे के मांग करलन। मंत्री अनुसंधान नवाचार आदि नवा तकनीक में अधिक निवेश परी बतियलन। विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आरी प्रिसीजन एग्रीकल्चर खातिर ड्रोन के प्रयोग परी। औपचारिक आंकड़ा के अनुसार मॉरिशस में कैंसर के मामला जोन बाव खर संख्या बढ़ ले जात बा। आर जेकर से युवा लोग आरी बुजुर्ग लोग दोनों वर्ग के जना प्रभावित होवन। स कई गो मामला इतना कठिन होएला कि हैजा परी ओकर उपचार आने इलाज करे के संभव नहीं होएला। ई कई बार स्थानीय स्तर पर ई उपलब्ध नहीं बाटे। एकर के ध्यान में रख के मॉरिशन मरीज लोग के सर्जरी खातिर सरकार के पहल परी भारत से दुगो रोबोटिक सर्जरी स्वास्थ्य विशेषज्ञ लोग मॉरिशस आल हवन। स विदेश के खबर में अमेरिका के डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में काले गो हादसा भेल। एयरपोर्ट के सुरक्षा

0: सुरक्षा घेरा के तुरकर रनवे पार करे होलाई गर्जना के विमान से टकराए के मौत होकर बाटे। यह हादसा लॉस एंजलस जावे होला फ्रंटियर एयरलाइन के विमान के उड़ान भरे बखत होल। टक्कर के तुरंत बाद विमान के इंजन में आग धर लेलक आरी कैबिन में धुआं भरे लगल। टेक ऑफ के रोक देवल कर आरी सब 224 यात्री लोग आरी 7 को क्रूज सदस्य लोग के बचावल गल। इरहल संक्षिप्त समाचार तुहर ध्यान खातिर धन्यवाद हमने की आज्ञा दिया नमस्ते।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

0: गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका वंस अगेन। तो बने हम रहिए हमारे साथ और जानते हैं साथ में कि आज का मौसम कैसा होगा।
1: इट्स द वेदर ब्रॉडकास्ट विद विनर्स।
2: ऑन इट टू विनर्स।
3: स्थानीय स्तर पर मौसम का हाल कैसा रहेगा चलिए जानते हैं। मॉरिशस में ऊंची लहर की चेतावनी हटा दी गई है। इसके अलावा हमारे इलाके पर अस्थिर हवाएं बह रही है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज सुबह ऊंचाइयों पर बादल घिरे रहेंगे, हल्की बारिश भी हो सकती है। दोपहर बाद धूप खिली रहेगी। रात के दौरान ऊंचाइयों पर फिर से बादल घिराएंगे और हल्की बारिश भी हो सकती है। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके कहीं कहीं पर 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। प्रवाह रेखा के परे 3 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समंदर तथा पूर्वी दक्षिणी और पश्चिमी लगूनों में न जाने की सलाह दी जाती है। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लाटो पर 18 से 20, अधिकतम 22 से 25, जबकि तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 22 से 24, अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सुबह सूर्योदय 6:29 पर, शाम को सूर्यास्त 5:43 पर होगा।
1: Your weather forecast on RM2.
2: Radio Musti.
4: Envie de vous faire plaisir sans vous priver? Du 8 au 21 mai, chez Winners, profitez des prix en beauté sur une large sélection de vos produits du quotidien. Des offres irrésistibles pour remplir votre panier. 1 kg de lait entier en poudre Twin Cows à 222,95 € et le set de 5 pièces de Tefal Supercook Non-Stick à 3299,95 €. Et préparez-vous, la fête du pain arrive très bientôt chez Winners. Des prix en beauté, plus d'économies et toujours plus de plaisir chez Winners.
5: On est tous
1: Winners! RM2
2: Radio Musti.

0: मस्ती।
1: अगर दो लफ्जों से बयान नहीं हो पा रही है आपके इनर फीलिंग्स, गानों से आप ट्राई कर लो। यहाँ सभी से सलाह जा रही है आपके टाइमलेस तड़के का, 9 बजे तक कन्यामणि के साथ में ही गोल्डन टाइमलेस हिट्स आपके संडे को उड़ाने के लिए। मैसेजेस भी पढ़ने वाले हैं थोड़ी ही देर में। अगर आपके पास कुछ है डू शेयर विद अस 5499124 पर। रवि के लिए जारी रखते हैं आपके टाइमलेस हिट्स के सिलसिले को ऑन RM2 रेडियो मस्ती।
2: You're listening to Radio Masti.

0: Le sport, c'est de l'énergie, de la sueur, des sacrifices.
1: Milo, libère ta force.
2: Riche en lait, cacao et orge maltée, Milo, libère ta force.
3: Nestlé, good food, good life.
4: जिंदगी में कभी भी अपने सपनों को छोटा मत समझो, क्योंकि हर बड़ी सक्सेस एक छोटी शुरुआत से शुरू होती है। मुश्किलें और फेलियर्स सिर्फ आपको स्ट्रांग बनाने के लिए आते हैं। बस खुद पर भरोसा रखो, मेहनत करते रहो और कभी भी हार मत मानो, क्योंकि एक दिन आपकी मेहनत ही आपकी पहचान बन जाएगी।
0: Le sport, c'est de l'énergie, de la sueur, des sacrifices.
1: Milo, libère ta force.
2: Riche en lait, cacao et orge maltée, Milo, libère ta force.
3: Nestlé, good food, good life.
5: RM2.
6: Radio Musti.

0: Timeless तड़का
1: RM2 Radio Musti
2: अय्या सभी के लिए इट्स योर टाइमलेस तड़का और सुबह सुबह आपके ब्यूटीफुल मैसेजेस देख के मन को खुशी हो जाती है। एंड आज इतनी सारी बर्थडेज हैं, क्या बताऊँ। आप है प्रिया गुरवी जी डेडिकेट कर रहे हैं एक बर्थडे सॉन्ग अपने बेटे निखिल के लिए, विश कर रहे हैं उन्हें हैप्पी बर्थडे ऑन हिज 13th बर्थडे। बेस्ट विशेज कमिंग फ्रॉम उनकी मम्मा प्रिया, बहन निकिता, निक्षिता, नानी, मौसी एंड होल गुरवी एंड लकी फैमिली कौंजा बनामोवी से। एंड आप है फ्लैग से, आप एक गीत मांग रहे हैं अपने नातिन के लिए। आज उनकी सालगिरह है और उनके भाई शिवम का भी जन्मदिन है, शवि दसवा नाम है, सो प्लीज़ उनके लिए गाना प्लीज़ हो जाए। और आप है गुरुदत्त सिरतन जी, आज आप अपना बर्थडे मना रहे हैं। बेटियां मायरा, अनुषा, सन इन लॉ यवि, पत्नी साधना, सिरतन फैमिली, रामदुआ फैमिली, गनौरी फैमिली, मणिकरण एंड सोहन फैमिली की तरफ से आपको बहुत सारी बधाइयाँ। एंड वी हैव आज गणेश बृंदावन जी का जन्मदिन, जो कि वेरी जोंगी के रहने वाले हैं। पत्नी नंदा, बेटी याशनी, यशना, नेफ्यू यश, आश्ले, आयुष, आरव, वरुण, ब्लेसिंग्स आपकी सासुआ निर्मला की तरफ से, जो कौ ईचे के रहने वाली है। एंड वी हैव अनदर बर्थडे, आप है बृंदा बंगारू जी रोजवेल से, आज आपके ग्रैंड चिल्ड्रन कितांश और कामादू का जन्मदिन है। बंगारू फैमिली और कामादू उनको विश करती है हैप्पी बर्थडे, गॉड ब्लेस यू एंड टू ऑल दोज जो आज अपना बर्थडे मना रहे हैं। आपके लिए ये स्पेशल वाला सॉन्ग।

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।

0: Timeless तड़का
1: RM2
2: Radio Masti।
3: It's 8:55 और जाने से पहले आपके कुछ मैसेजेस पढ़ लेते हैं। एंड द मैसेज है कि डेडिकेटेड सॉन्ग फॉर देवानंद बाबिता जी, दर्शनी क्रिस्टी एंड नाकुल, और विश कर रहे हैं हैप्पी संडे। नाम नहीं लिखा लेकिन। और नेक्स्ट है शेखर जी फिलाडेल्फिया से, और डेडिकेट कर रहे हैं नेक्स्ट सॉन्ग अपनी बीवी संध्या के लिए और बेटी रिया के लिए। और आरम टू वीडियो मस्ती। एंड वी हैव हमारे बड़ी यालेश जो कनेक्टेड है सुरीनाम से, और एंजॉय कर रहे हैं। आप सभी को विश कर रहे हैं हैप्पी संडे। एंड वी हैव गुड मॉर्निंग, आप हैं नीतू सुकन जी लालमाची से, आप मांग रहे हैं लवली गाना अपने लिए और फैमिली फ्रेंड्स के लिए भी। एंड वी हैव आखिरी मैसेज आप है नेक्स्ट मैसेज अपनी मम्मी मानती, पापा सत्यानंद, ब्रदर राजीव, सिस्टर मनसा, माया डिम्पल, आप है सती सिचन जी रिवेज रोपो से। ज़रूर जी नेक्स्ट गाना आपके नाम करते हैं। जाते जाते आपको हैप्पी संडे विश करते हैं। आप यही पर कनेक्टेड रहना क्योंकि नेक्स्ट आने वाली है पूनम अपने बॉलीब्रांड शो के साथ आपका साथ निभाने के लिए। तो यही पर स्टे ट्यून्ड टू आरएम टू वेरी मस्ती।
0: Timeless तड़का
1: RM2
2: Radio Masti
0: Timeless तड़का।

मोहब्बतों में जीने वाले खुश नसीब हैं, मोहब्बतों में मरने वाले भी अजीब हैं। अजीम है हमारी दास्तां जाने मन, फासलों पर रहते हैं लेकिन करीब।

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: Radio Musti.
1: North, South,
2: 103.5.
1: East, West,
2: 96.4.
1: Center,
2: 99.4.
0: RM2 Radio Musti.
2: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music.
1: Radio Musti.
0: Feel the Musti. Feel the Musti.
3: टाइम चेक सुबह के 9 बज रहे हैं। सभी को नमस्कार, अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार याचना से। याचना आपको नमस्कार।
4: नमस्कार पूनम, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। 11 और 12 मई को केन्या के नैरोबी शहर में अफ्रीका फॉरवर्ड 2026 शिखर सम्मेलन लगने जा रहा है। फ्रांस और अफ्रीका के बीच सहयोग मजबूत करने पर केंद्रित इस महत्वपूर्ण आयोजन में लगभग 30 राष्ट्र और सरकारी नेता भाग ले रहे हैं। साथ में ठेकेदारों और निवेशकों सहित 4,000 से ज़्यादा प्रतिनिधि भी इसमें शामिल होने के लिए वहां गए हुए हैं। इसमें मॉरिशस का एक बड़ा डेलीगेशन शामिल होगा। नवाचार और विकास के लिए साझेदारी के विषय के साथ फ्रांस इस महत्वपूर्ण कॉन्टिनेंटल सम्मेलन की सफलता सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास कर रहा है। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम 12 मई को अन्य सरकारी नेताओं के साथ राउंड टेबल बैठक में भाग लेंगे। वर्ल्ड फूड फोरम के नए संस्करण की लॉन्चिंग कल शनिवार को हॉलीडे इन मॉरिशस मोंट्रेजो में की गई। इसमें मॉरिशन नौजवान शामिल हो रहे हैं। इस लॉन्चिंग समारोह में कृषि उद्योग मंत्री अरविंद बुलेल उपस्थित रहे। अपने संबोधन के दौरान मंत्री ने युवाओं से मॉरिशस में कृषि खाद्य प्रणालियों के परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आह्वान किया। मंत्री ने अनुसंधान, नवाचार और नई तकनीकों में अधिक निवेश पर भी बात की, विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रिसीजन एग्रीकल्चर के लिए ड्रोन्स के इस्तेमाल पर आदि। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय तनाव, परिवहन लागत और उर्वरकों की बढ़ती कीमतों का भी उल्लेख किया और कहा कि मॉरिशस को अपनी खाद्य सुरक्षा और लचीलापन मजबूत करने की आवश्यकता है। आर्टिस्ट एक्सलेंस एंड लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड्स के दौरान विभिन्न क्षेत्रों के 13 कलाकारों को सम्मानित किया गया। ये समारोह बुधवार 6 मई को लगा। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में लेखक अमरनाथ हुसैनी भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिस्ट एक्सलेंस अवार्ड प्राप्त कर वे सम्मानित और बेहद खुश महसूस कर रहे हैं। वे अपनी 30वीं कृति प्रकाशित करने की भी तैयारी कर रहे हैं। ये उनकी रचना ले क्लून है, जिसे अक्टूबर 2025 में प्री जॉन फ्रॉशेट से सम्मानित किया गया था। आर्टिस्ट एक्सलेंस अवार्ड गायक एल्पासी को भी प्रदान किया गया, जिनका वास्तविक नाम पास्कल लामॉक है। गीत मोपापा के गायक ने स्थानीय संगीत में अपने योगदान के लिए मिली इस पहचान पर खुशी जताई। उन्होंने अक्टूबर 2025 में आयोजित अफ्रो मादा म्यूजिक अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ हिंद महासागर कलाकार का पुरस्कार भी जीता था। विदेश में ग्रीस में मछुआरों की एक रहस्यमय ड्रोन बोट मिला है, जिसमें विस्फोटक भरे हुए हैं। पुलिस अब इसकी जांच कर रही है। ये नौका यूक्रेन में बने एक मानव रहित सतही वाहन है, जो आयोनियन द्वीप पर मिला है। अभी तक ये साफ नहीं कि ग्रीस की एक गुफा में मिली ये नौका आखिर वहां पहुंची कब और कैसे। ये थी अब तक की खबरें, थोड़ी देर में शोक समाचार। रेजिडेंस मोंप्लेजिया पंपलेमुसेज में 76 साल की 76 years old की मिसिज बीबी रशीदा कुदरत पैदाशी नाम कुदाबक्स और जो रशीदा के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी इंतकाल कर गई हैं। जनाजा दोपहर 2 बजे उनके बेटे दुल कुदरत के मकान रेजिडेंस मोंप्लेजिया पंपलेमुस से उठाकर दफनाने के लिए इलाके का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 2 PM जोली स्ट्रीट 4 में 49 साल की 49 years old की श्रीमती सुवीना द्वारका प्रसाद पैदाशी नाम मंगत रॉय की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 10 बजे उनके पति शरद चंद द्वारका प्रसाद के मकान जोली स्ट्रीट का थोसे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए दुफ्रेयर की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 10 AM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।
2: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv. Body Branch, RM2, Radio Masti.

0: पॉली ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।
1: 9:10 हो चुके हैं और संडे की मॉर्निंग, बाहर हल्की हल्की बारिश और मौसम में ठंडी सी फील। सच कहें आज का मूड तो पहले से ही सेट है, तो बस आज चाय का कप पास रखिए और ब्यूटीफुल वेदर को सॉन्ग्स के साथ एंजॉय कीजिए, क्योंकि शुरू हो चुका है आपका फेवरेट बॉली ब्रंच और मैं साथ हूँ आपके पूनम। मेरे से पहले थी नीलमणि, आपको एंटरटेन करी थी, आपको प्यारे प्यारे गाने सुना रही थी और उसकी जो आवाज़ है ना, हाय क्या प्यारी सी है। तो बस एंजॉय कीजिए अब पूनम के साथ ये प्रोग्राम बॉली ब्रंच आपके नाम।
0: Body Branch RM2 Radio Masti.

0: RM2.
1: Radio Musty feels a musty.
2: It's P on the track. Let's go.

0: पॉली ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।
1: 9:29 हो चुके हैं दोस्तों, और आज संडे है और शादी का सीज़न फुल ऑन चल रहा है। तो कल परसों कई लोग हल्दी पे गए होंगे, डांस और मस्ती की होगी, तो थोड़े थके होंगे लेकिन इन्जॉय भी बहुत किया होगा, मुझे पक्का बताएं। तो MBC की तरफ से हम उन सभी नए जोड़ों को बेस्ट विशेस करते हैं जो भी नए रिश्ते और नए बंधन में बंधे हैं। पर आप जो उनसे प्यार करते हो, घर के काम करने हैं, बहुत सारी चीज़ें, तो डांस करो और ब्यूटीफुल मोमेंट को इन्जॉय करो। मैं आपके लिए चलाने जा रही हूँ एक प्यारा सा डांस बीट, चलो एंजॉय करते हैं ये गाना।
0: बॉडी ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।

0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
1: नमस्ते भाई, RM2 रेडियो मस्ती पर 10 तारीख का राशिफल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले
2: एरीज मेष राशि,
1: आज आपका कॉन्फिडेंस हर काम में नजर आएगा। नई सोच आपको आगे बढ़ाएगी। दिन एनर्जेटिक रहेगा जिससे मोटिवेशन आपको लगातार मिलता रहेगा। लकी कलर बनेगा रेड, लकी नंबर है 9।
2: टॉरस वृषभ राशि,
1: आज सुकून भरे पल मिलेंगे और अपने लोगों का साथ भी मिलेगा आपको। आपको अच्छा अच्छा फील होगा, दिल हल्का लगेगा, जिसमें दिन आराम से गुजरता हुआ आपको खुशी देगा। लकी कलर है ग्रीन, लकी नंबर है 6।
2: जेमिनी मिथुन राशि,
1: आपकी बातें लोगों पर असर डालेंगी और नए मौके सामने आ सकते हैं। दिन लाइवली रहेगा और हर सिचुएशन को स्मार्ट तरीके से आप संभाल लेंगे। लकी कलर है येलो, लकी नंबर है 5।
2: कैंसर कर्क राशि,
1: घर का माहौल सुकून देगा और अपनों का साथ अच्छा लगेगा। दिन में पॉजिटिविटी रहेगी और दिल भी आपका खुश खुश रहेगा, जिससे दिन सॉफ्ट और वार्म फील होगा। लकी कलर है व्हाइट, लकी नंबर है 2।
2: लियो सिंह राशि,
1: आज आपकी प्रेजेंस नोटिस होगी और कॉन्फिडेंस स्ट्रॉन्ग रहेगा। आज खुद को अच्छे से एक्सप्रेस करेंगे, जिससे आपको एप्रिसिएशन मिल सकता है। लकी कलर है गोल्डन, लकी नंबर है 1।
2: वर्गो कन्या राशि,
1: काम ऑर्गेनाइज तरीके से होंगे और छोटी बातें आसानी से हैंडल हो जाएंगी। फोकस स्ट्रांग रहेगा, जिससे दिन आपका स्मूथ तरीके से चलेगा और अच्छे से खुशी आपको मिलेगी। लकी कलर है स्काई ब्लू, लकी नंबर है 7।
2: लीब्रा तुला राशि,
1: रिश्तों में बैलेंस बना रहेगा और लोगों से अच्छा कनेक्शन महसूस होगा। दिल खुश रहेगा, जिससे दिन आपका प्लेजेंट और पीसफुल रहेगा। आपको वीकेंड तक कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस इंजॉय कीजिए। लकी कलर है पिंक, लकी नंबर है 4।
2: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि,
1: आप अंदर से स्ट्रांग महसूस करेंगे और फोकस क्लियर रहेगा। जो चाहेंगे उसमें प्रोग्रेस दिखेगी, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आगे बढ़ेगा। लकी कलर है मैरून, लकी नंबर है 8।
2: सजिटेरियस धनु राशि,
1: मूड चेयरफुल रहेगा और नया कुछ करने का मन करेगा। यही तो बस करता नहीं है, नया जब आपका मन कर रहा है तो बस कर लो। दोस्तों से आउटिंग की बात करो, फोन करो, फन करो, रिफ्रेश करो अपने मूड को। लकी कलर है पर्पल, लकी नंबर है 3।
2: कैप्रिकॉर्न मकर राशि,
1: स्टडी रहकर काम करेंगे और मेहनत का अच्छा फील मिलेगा। डिसिप्लिन आपको आगे बढ़ाएगा, जिससे दिन आपका प्रोडक्टिव रहेगा। लकी कलर है ब्राउन, लकी नंबर है 10।
2: एक्वेरियस कुंभ राशि,
1: नए आइडियाज आएंगे और क्रिएटिविटी आपको अलग पहचान देगी। आपको लोग सोचेंगे कि ये कैसे इतना प्रोग्रेस कर रहा है, और आपसे इम्प्रेस भी होंगे, जिससे आपका दिन तो इंटरेस्टिंग रहेगा पर आपका लगता है पूरा मंथ ही इंटरेस्टिंग जाने वाला है। लकी कलर है

0: ಚಿಕ್ಕಬಳು ಲಕ್ಕಿ ನಂಬರ್ 11.
1: ಪೈಸಿಸ್ ಮೀನ್ ರಾಶಿ.
0: मन शांत रहेगा और छोटी छोटी बातें खुशी देंगी. आपका सॉफ्ट जो नेचर है ना लोगों को अच्छा लगेगा, जिससे आपकी पॉजिटिविटी बनी रहेगी. लकी कलर है सी ग्रीन. लकी नंबर है 12. तो ये था आपका 10 तारीख का राशिफल. मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और दिन को एंजॉय कीजिए. मैं हूँ आपके साथ पूनम.
2: योर डेली हॉरोस्कोप RM2 रेडियो मस्ती.
3: बॉडी ब्रंच RM2 रेडियो मस्ती.

0: RM2 Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2
0: Radio Masti.
4: Radio Masti. The latest news and the greatest mix of music.
3: Radio Masti.
4: Feel the Masti.
5: टाइम चेक, सुबह के 10 बज रहे हैं। सभी को नमस्कार, आप सुनते हैं संक्षिप्त समाचार याचना से। याचना, आपको नमस्कार।
6: नमस्कार पूनम, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। नैरोबी शहर में अफ्रीका फॉरवर्ड 2026 शिखर सम्मेलन कर 11 और परसों 12 मई को लगने जा रहा है। फ्रांस और अफ्रीका के बीच सहयोग मजबूत करने पर केंद्रित इस महत्वपूर्ण आयोजन में लगभग 30 राष्ट्र और सरकारी नेता तथा ठेकेदार और निवेशकों सहित 4000 से ज़्यादा प्रतिभागी भाग लेने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम 12 मई को अन्य सरकारी नेताओं के साथ राउंड टेबल बैठक में भाग लेंगे। बुधवार 6 मई को शपथ ग्रहण करने के बाद आर्याना वर्मा ने आधिकारिक रूप से डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के रूप में अपना कार्यभार संभाला। वे इस पद के साथ साथ जेंडर इक्वालिटी मंत्री की जिम्मेदारी भी संभाल रही हैं। हालांकि उनकी नियुक्ति हाल में हुई, लेकिन उनका कहना है कि वे मानसिक रूप से इन दोनों जिम्मेदारियों को निभाने के लिए पहले से तैयार हैं और उन्हें अपने परिवार तथा मंत्रिमंडल के सहयोगियों का पूरा समर्थन प्राप्त हैं। औपचारिक आंकड़ों के अनुसार मॉरिशस में कैंसर के मामलों की संख्या नियमित रूप से बढ़ रही है, जिससे युवा और बुजुर्ग दोनों वर्गों के लोगों को परेशानी होती है और वे प्रभावित हो रहे हैं। कुछ मामलों की जटिलता के कारण विशेष उपचार की आवश्यकता पड़ती है, जो कई बार स्थानीय स्तर पर उपलब्ध नहीं होते। इस को ध्यान में रखकर मॉरिशन मरीजों के की सर्जरी के लिए सरकार की पहल पर भारत से दो रोबोटिक सर्जरी स्वास्थ्य विशेषज्ञ मॉरिशस आए हुए हैं। विदेश की खबरों में मायामी में एक नौका में हुए धमाके में कम से कम 11 लोग घायल हुए हैं, इनमें एक बच्चा भी शामिल है। ये धमाका एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पर हुआ और ये सभी लोग एक लेजर क्राफ्ट में सवार थे, जब अचानक ये धमाका हुआ और आग का एक गोला उसमें से उठा। अमरीकी अधिकारी इस धमाके के सही कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। सभी 11 घायलों को अस्पताल में दाखिल किया गया है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। हमें आ गया दीजिए नमस्कार।
0: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
7: Body Brunch, RM2, Radio Masti.

0: बॉली ब्रंच RM2 रेडियो मस्ती।
1: 10:07 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हुए हैं आपके ही फेवरेट प्रोग्राम बॉली ब्रंच और मैं हूँ आपके साथ पूनम और ये प्रोग्राम है आपका आपकी पसंद का। तो आपको भी बस कुछ और करना नहीं है, बस जो काम कर रहे हैं वो करते रहिए, उसके साथ साथ अपने मैसेजेस ज़रूर भेजिए, क्योंकि जब तक आप मैसेजेस नहीं भेजते, अपनी बातें नहीं बताते, अपनी कहानियाँ नहीं सुनाते, तब तक यह शो जो है ना अधूरा सा लगता है। तो आपको बस मैसेज करना है 5499124 पर और जो अभी तक मैसेजेस आए हैं उसको हम थोड़ी सी बातें करते हैं। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं मनीष, अमर, राजा, बानी, खुबलाल फैमिली और इन्जॉय कर रहे हैं ये मॉर्निंग प्रोग्राम बहुत ही खुशी से। थैंक यू सो मच आपका जुड़ने के लिए। यलेश जी सुरीनाम से जुड़े हुए हैं और सभी को कह रहे हैं हैप्पी संडे, सो स्वीट, थैंक यू यलेश, आपको भी हैप्पी हैप्पी संडे। शर्मिला भी जुड़ी हुई हैं हमारे साथ और कह रही हैं कि भाई मेरा पूरा ध्यान गानों पे है या सिर्फ मेरी मम्मी जो गातो पीमा बना रही है उस पे है, मैं निकाल निकाल के गरम गरम खा रही हूँ और बस कह रही हूँ कि काश पूनम जी आप भी साथ खाते। अरे कोई बात नहीं, आप चिढ़ा लो चिढ़ा लो, 12 बजे के बाद मैं भी खाऊंगी, 12 बजे तक तो मैं आपके साथ ही हूँ। साथ में अनीता जी फ्लिकॉन फ्लाग से और कह रही हैं कि इंजॉय कीजिए आपका संडे और जो लोग शादियों के सीजन में जा रहे हैं, शादियों पे जा रहे हैं, तो बस स्मार्टी स्मार्टी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बनकर जाना और हमें भी फोटोज़ भेजना। अरे कैसे भेजेंगे, फोटोज़ तो भेजनी है पर मुझे भेज दो, मैं ही बताऊँगी कौन कैसा लग रहा है। तो इंजॉय कीजिए आपके गाने, आपको इंजॉय करते देखते मुझे बड़ी खुशी मिलती है। तो ये गाना आप सबके लिए
0: बॉडी ब्रंच RM2 रेडियो मस्ती।

0: और M2
1: रेडियो मस्ती
2: फैशन टिप्स पावर्ड बाय हरकरी फैशन हाउस ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स।
3: बॉली ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।
4: 10:23 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हुए RM2 रेडियो मस्ती के साथ और आप सबके मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं। ये जो चीज़ें हैं ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं जो वो हम कहने जा रहे हैं। तो कहते हैं कि जो लुक होता है ना इंस्टेंटली नीट एंड क्लीन लगे उसके लिए आपको बहुत ज़रूरी है, चाहे ये मेल के लिए हो चाहे फीमेल के लिए हो। आपने बैग कौन सा लिया है, वॉलेट कौन सा लिया है, फ़ोन कवर कैसा है, नीट एंड क्लीन है, ऑर्गेनाइज है या नहीं है। कई बार कई चीज़ें उसमें टूटी होती हैं, कई बार बिखरा बिखरा सब कुछ लगता है और इंसान लेके चल पड़ता है और फिर कहता है कि अरे मेरे को किसी ने पूछा नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्या कैरी कर रहे हैं अपने साथ, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज जैसे कि मैं ट्रैवल कहीं कर रही थी तो मैंने दूर से देखा कि एक मैम के टॉप में जो उन्होंने कभी बाय किया होगा वो टॉप उसका टैग लगा हुआ था। तो आप अपने साथ में क्या लेकर जा रहे हैं, क्या कैरी कर रहे हैं और साथ में अगर आपने कुछ ड्रेस या कोई कॉस्ट्यूम ली है उसके ऊपर स्टिकर लगा हुआ है या कोई टैग लगा हुआ है उसे ज़रूर चेक करें और उसको निकाल दीजिए, क्योंकि जो आप कैरी करते हैं उसी से आप

0: आपकी पर्सनालिटी बनती है। और यही एक फैशन टिप होता है ज़िंदगी में कि अपने साथ में जो भी चीज़ लेके जा रहे हैं उसको ब्यूटीफुली ऑर्गेनाइज तरीके से यूज़ करें।
1: Fashion Tips was powered by Halkori Fashion, House of Ready-Made Garments. RM2
2: Radio Musti. RM2 Radio Musti.

0: RM2 Radio Musti.
1: Hit music only.
2: Radio Musti feels a Musti.

0: पॉली ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।
1: 10:36 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं RM2 रेडियो मस्ती के साथ। चलिए भाई, आपको कभी सोचा है कि छोटी सी जो मुस्कान होती है ना, कैसे किसी का दिल बदल देती है और दिन भी बना देती है। तो ऐसे ही आपके जब मैसेजेस आते हैं तो मेरा भी दिल बन जाता है और दिन भी बन जाता है। तो चलिए भाई, शुरू करते हैं आपके मैसेजेस के साथ में। हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं राम राय फैमिली, बेदेसी फैमिली, गोकुल फैमिली, मथुरा फैमिली, रामतुल फैमिली, राम सिंह फैमिली, सुखी फैमिली, भिखारी फैमिली, मुंगुर रामलाल फैमिली, सभी जुड़े हुए हैं और एक प्यारे से गाने की फरमाइश कर रहे हैं जो कि फैमिली रिलेटेड हो। बिल्कुल हम चलाने वाले हैं सर आपके लिए। राजन रघुपत जी जो कि लंदन से साथ दे रहे हैं और आपका मैसेज आना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। ललित जी USA से साथ दे रहे हैं और अपने पूरे स्टाफ 15 लोगों के साथ, और सब लोग इंजॉय कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो पंजाबी गाना था ना उस पर तो हमने बहुत ही डांस किया। थैंक यू सो मच, इंजॉय कीजिए। उसके साथ में विश्वानी सीताराम, आज उनकी मामा सोनामती बुदन जी का जन्मदिन है और बेस्ट विशेज दे रहे हैं। देवेश, सुनीता, ऋषि, संध्या, सुभाष, आनंद, देवयानी, संजय एंड राधा जी। उसके साथ में ही अरे वाह वाह क्या बात है, आज इतने सारे बर्थडे। शीला जी का मैसेज है और उनके आज ग्रैंडसन का बर्थडे है श्रियान का, और बेस्ट विशेस दे रहे हैं पापा श्रीकांत एंड मामा याशना, दादा, नाना, नानी एंड मामू, मामी आदित्य एंड अव्या। क्या बात है भाई, हम तो यही कहेंगे जिनका भी आज बर्थडे है, आप सबके लिए स्पेशली पूरी MBC टीम के लिए की तरफ से और रेडियो मस्ती की तरफ से सबसे पहले ये सुनिए।

0: from Radio Musty.
1: अब उन्हीं के लिए जिन्होंने भी पूरी फैमिली के लिए गाने की फरमाइश की है, तो एंजॉय कीजिए आपका ये फैमिली सॉन्ग। और एक फैमिली है जिन्होंने कहा कि प्लीज़ डांस का गाना ज़रूर चलाना, हम पूरे सब फैमिली ज्वाइन करके बैठे हुए हैं सिर्फ आपके गाने की वजह से। तो चलिए भाई एंजॉय करते हैं आपका ये गाना।
2: बॉडी ब्रंच RM2 रेडियो मस्ती।

0: बॉली ब्रंच RM2 रेडियो मस्ती।
1: क्या बात है भाई, मजा आ गया डांस करने। मैं भी यहाँ पे डांस करने लगी थी। मुझे पता है कई जनों ने मैसेज किया था कि हमें एक ऐसा गाना दीजिए जिसमें हम डांस कर सके। तो भाई इससे अच्छा फैमिली में बैठ के डांस किया जा सकता है, तो ये बस इंजॉय कीजिए। ये आपका ही वीकेंड है और इस वीकेंड को इंजॉय करेंगे, उसके साथ में आपका नेक्स्ट वीकेंड तक कोई टेंशन नहीं रहेगी। तो चलिए भाई दो तीन मैसेजेस ले लेते हैं। प्रकाश बंदी जी जुड़ी हुई हैं हमारे साथ बेल्जियम से और कह रही हैं 11 डिग्री हो रहा है यहाँ पर और मैं स्विमिंग के लिए जा रही हूँ। अरे मैम, आपने जो बोल तो दिया पर आपने मुझे मोटिवेट जरूर कर दिया। इतनी हमारे यहाँ पे भी ठंड शुरू हो चुकी है, ऐसे हम भी कर सकते हैं शायद। अगर किसी को भी जाना है तो जाओ भाई स्विमिंग करो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। श्याम टुलू जी भी साथ दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि नेक्स्ट सॉन्ग प्लीज मेरे लिए चलाइएगा। तो सर आपके नाम ये हो जाएगा गाना। रोशन जी कह रहे हैं कि आज उनकी बुबू रानी श्वेता हुकुम का बर्थडे है और हम यही कह रहे हैं कि हमेशा खुश रहो, प्यार से रहो, जिंदगी बहुत प्यारी है और तुम साथ हो तो हमें किसी भी चीज की टेंशन और परेशानी नहीं है। क्या बात है, क्या बात है, हैप्पी बर्थडे बच्चा। तो सुया जी भी साथ दे रही हैं और ब्रेकफास्ट बनाते हुए विश कर रही है अगेन श्वेता हुकुम जी को और उनके पापा मामा सुया पापा लाल देव नानी मौसी अनीता बेमुल डॉटर रिद्धि सिद्धि सोनाक्षी सभी विश कर रही हैं स्वीट हार्ट सुया को, प्यारी सी बिटिया रानी को, श्वेता को, और बस यही कह रही हैं कि तुम साथ हो तो हमें कोई टेंशन नहीं है। मैं यही कहती हूँ कि सबको यही कोई टेंशन नहीं होती जब प्यारे प्यारे बच्चों का बर्थडे होता है और साथ दे रहे होते हैं। तो चलिए भाई इंजॉय करते हैं। आपने बोला कि आपको एक बर्थडे स्पेशल चाहिए जो पुराना भी हो और न्यू भी हो, तो चलो गाना चलाते हैं ऐसे ही कुछ बना के।
0: बॉली ब्रंच RM2 रेडियो मस्ती।

0: RM2 Radio Musty. The latest news and the greatest mix of music.
1: Radio Musty. Feels a musty.
0: Welcome to RM2
1: Radio Musty.
2: Radio Musty.
1: North, South,
2: 103.5.
1: East, West,
2: 96.4.
1: Center,
2: 99.4.
0: RM2
2: Radio Musty.
0: Radio Musty. The latest news and the greatest mix of music.
1: Radio Musty.
0: Feel the Musty.
3: टाइम चेक, सुबह के 11 बज रहे हैं। सभी को नमस्कार, आप सुनते हैं संक्षिप्त समाचार गीता जी से। गीता जी, आपको नमस्कार।
4: नमस्कार पूनम जी, सभी को हमारा नमस्कार। संक्षिप्त समाचार सुनिए। 11 और 12 मई को केन्या के नैरोबी शहर में अफ्रीका फॉरवर्ड 2026 शिखर सम्मेलन लगने जा रहा है। फ्रांस और अफ्रीका के बीच सहयोग मजबूत करने पर केंद्रित इस महत्वपूर्ण आयोजन में लगभग 30 राष्ट्र और सरकारी नेता तथा ठेकेदारों और निवेशकों सहित 4000 से ज्यादा प्रतिनिधि भाग लेंगे। इसमें मॉरिशस का एक बड़ा डेलीगेशन शामिल होगा। नवाचार और विकास के लिए साझेदारी के विषय के साथ फ्रांस इस महत्वपूर्ण कॉन्टिनेंटल सम्मेलन की सफलता सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास कर रहा है। प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम 12 मई को अन्य सरकारी नेताओं के साथ राउंड टेबल बैठकों में भाग लेंगे। बुधवार 6 मई को शपथ ग्रहण के बाद आर्या नवामागी ने आधिकारिक रूप से डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर के रूप में अपना कार्यभार संभाला। वे इस पद के साथ साथ जेंडर इक्वालिटी एवं परिवार कल्याण मंत्री की जिम्मेदारी भी निभा रही हैं। हालांकि उनकी नियुक्ति हाल ही में हुई है, लेकिन उनका कहना है कि वे मानसिक रूप से इन दोनों जिम्मेदारियों को निभाने के लिए पहले से तैयार हैं और उन्हें अपने परिवार तथा मंत्रिमंडल के सहयोगियों का पूरा समर्थन प्राप्त है। उन्होंने इस बारे में कल आयोजित शी क्रिएट्स कार्यक्रम के बाद कही। औपचारिक आंकड़ों के अनुसार मॉरिशस में कैंसर के मामलों की संख्या नियमित रूप से बढ़ रही है, जिससे युवा और बुजुर्ग दोनों वर्ग के लोग प्रभावित हो रहे हैं। कुछ मामलों की जटिलता के कारण विशेष उपचार की आवश्यकता होती है, जो कई बार स्थानीय स्तर पर उपलब्ध नहीं होते। इसको ध्यान में रखकर मॉरिशन मरीजों की सर्जरी के लिए सरकार की पहल पर भारत से दो रोबोटिक्स सर्जरी स्वास्थ्य विशेषज्ञ मॉरिशस आए हुए हैं। और विदेशी खबरों में मायामी में एक नौका में हुए धमाके में कम से कम 11 लोग घायल हुए हैं, इसमें एक बच्चा भी शामिल है। ये धमाका एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पर हुआ। अमेरिकी अधिकारी इस धमाके के सही कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। कुछ ही देर में शोक समाचार। जली स्ट्रीट 400 में 49 साल की 49-year-old की श्रीमती सुविना द्वारका प्रसाद पैदाश नाम मंगुत्रोई और जो सुविना से ज्यादा जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 10:30 उनके घर जली स्ट्रीट 400 से उठाकर डेफ्रोय की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमरो एट 10:30 AM। शोक में डूबे हुए लोगों के प्रति हमारी गहरी हमदर्दी है।
5: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
6: Body Brunch, RM2, Radio Musty.
7: मुझे तसल्ली दे दे जो वो शब्द उधारा ढूंढ रहा है, एक सितारा ढूंढ रहा है, दिल से यारा ढूंढ रहा है।

खुद जल के जो रोशन करते जगे सारा, वो आवारा ढूंढ रहा है, दिल से यारा ढूंढ रहा है।

0: Holly Branch RM2 Radio Masti
1: 11:07 हो चुके हैं दोस्तों। भैया संडे का दिन 10 मई, प्यारा सा दिन, तो चलो आज हम एक छोटा सा चैलेंज लेते हैं। आपको कुछ नहीं सोचना, कोई टेंशन नहीं लेनी, जहाँ पे भी खड़े हो वहीं पर, किचन में खड़े हो किचन में, अगर कहीं पर हो, अगर गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, तो एक छोटा सा चैलेंज है आपका। अगले 10 सेकेंड सिर्फ आपको डांस कर रहा है और कुछ नहीं, कोई कह रहा, कुछ नहीं देख रहा कोई भी आपको, बस मैं हूँ और आप हैं। इन्जॉय कीजिए आपका 10 सेकेंड का ये गाना। अगर आपने ये कर लिया ना, तो बिलीव मी आपका पूरा दिन बहुत मस्त जाने वाला है।
0: Body Branch RM2 Radio Masti

0: Holly Branch, RM2, Radio Masti.
1: आए हाय, 11:22 हो गए हैं और संडे का दिन जो बताए कब असली मज़ा आता है, तभी आता है ना जल्दी उठने की टेंशन, ना जल्दी भागने की कहीं, जल्दी बस आराम से म्यूज़िक सुनो, आराम से चाय पियो, कुछ खाना बनाओ, आलस मतलब फुल चरम पे होता है। पर यही आलस को थोड़ा सा हटाना पड़ेगा क्योंकि पूरे दिन के काम भी करने हैं। तो चलिए भाई, छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से 2-3 मैसेजेस ले लेते हैं। हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं कौन, आज बर्थडे है, 15th बर्थडे है आहानी का, आहानी रामदू जो कि गुडलैन से हैं, डैरन श्वेता रविश प्रिशा लोवेशा एंड आपादू फैमिली उनको विश कर रहे हैं और कह रहे हैं अरे 15वां बर्थडे है तो क्या बर्थडे का गिफ्ट चाहिए ये तो बताओ, क्योंकि जब कोई गिफ्ट मिल रहा होता है ना तो उसको मना नहीं करना चाहिए, बस बोलना चाहिए यस यस बिल्कुल चाहिए। तो चंदा जी साथ में जुड़ी हुई हैं और गणेश बधु बिंदु बन जी को बर्थडे विश कर रहे हैं, उनकी वाइफ नंदा जी, उनकी बेटी याशना, यश, आश्ले, आयुष, आरव, दर्शनी, वरुण, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स फ्रॉम सासू मामा निर्मला सैतुल जी, और कह रही हैं कि भाई हमेशा खुश रहो। मैं क्योंकि ये जो छोटा सा डायलॉग होता है पर इसमें पूरी कहते हैं ना कायनात की जितनी भी ब्लेसिंग्स होती है ना इसी में होता है, हमेशा खुश रहो, इसी जब खुश रहेंगे तो सब कुछ मिल ही जाएगा। उसके साथ में हमारे साथ जुड़ी हुई हैं हमारी एक और दोस्त प्रार्थना जी का बर्थडे है और उनके लिए कह रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं मामा शर्मिला, पापा सुनील, सिस्टर पूजा एंड सिस्टर चिका शिखा, ऑल्सो कह रहे हैं कि वो BTS की बहुत बड़ी फ़ैन है और ये संध्या जी मैसेज कर रही हैं और कह रही हैं कि BTS उसे इतना पसंद है कि उसके दिमाग पे चढ़ा हुआ है और ये तो सभी के है, यंगस्टर्स की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। चलो भैया आप सब के लिए हम ये कहेंगे एक प्यारी सी बात, पूरी MBC टीम की तरफ से और रेडियो मस्ती की तरफ से सबसे पहले ये सुनिए।

0: from Radio Masti.
1: भाई साथ में मस्ती करने के साथ साथ नाचना भी पड़ता है. तो विशिंग यू वेरी हैप्पी बर्थडे. जिनका भी बर्थडे है बस हमेशा खुश रहिए, एंजॉय कीजिए ये आपका प्यारा फेवरेट सॉन्ग.
2: बॉडी ब्रंच RM2 रेडियो मस्ती.

0: RM2.
1: Radio Musty feels a musty.

0: होली ब्रंच RM2 रेडियो मस्ती।
1: 11:46 हो गए हैं दोस्तों, और आप पिछले 3 घंटे से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और मुझे पता है आपको भी मज़ा आ रहा होगा, पर मुझे आपके साथ आपके मैसेजेस पढ़कर आपके कॉल्स लेकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो थैंक यू सो मच आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ में हमारी एक छोटी सी बिटिया है, हुदा हिबा थ्वला रोज़ जागृत नंदलाल, जो कि एक प्यारा सा गाना उनके लिए सुनाना चाहते हैं। कोई फैमिली मेम्बर तो भाई हम चलाएंगे आपके लिए। सबसे पहले हमने बस सोचा कि चलो आपको एक छोटा सा प्यारा सा टिप देते हैं। तो अगर आपके पास कोई पुरानी जीन्स है तो आप बिल्कुल उसको फेंकिए मत, पहले उसके जो दोनों लेग्स हैं ना उसको कट कर दीजिए, फिर उसके बाद जो बम साइड आएगा ना उसको हार्ड हिस्से को थोड़ा सा गीला कीजिए, और साइड में एक सीमेंट का घोल बनाए, सीमेंट ले लीजिए, उसमें पानी डालिए, और उसके अंदर वो जो जीन का पार्ट होगा ना उसको बिल्कुल डिप कर दीजिए, और उसको कहीं पर दो जगह कोई ऐसी देखिए जहाँ पर वो आप जीन को हैंग कर सकते हैं। ये एक्टिविटी ना बच्चों को भी बहुत अच्छी लगती है, आप उनके साथ कर सकते हैं, और जब वो ड्राई हो जाएगा तो आप देखिएगा दोनों साइड जो वो खाली होंगे, तो उसके अंदर आप पेन होल्डर बना सकते हैं, बाहर डेको कर सकते हैं, कुछ कलर्स कर सकते हैं, बच्चों को बोलो कि इसके अंदर आप स्पीकर रख सकते हैं, कोई साइड से आपको वॉइस आएगी बहुत अच्छी सी, और उसके साथ में ये क्रिएटिविटी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है कि आप उसको पेन होल्डर बनाओ, कुछ भी चीज़ कर सकते हो आपको तो कुछ, और साइड में आप प्लांट्स भी डाल सकते हैं, मतलब छोटे छोटे प्लांट्स बच्चों को जो पसंद आते हैं वो कर लीजिए। अरे ये कभी कभी कुछ एक्टिविटी ना संडे को भी कर लेनी चाहिए बच्चों के लिए, तो बस कोई जीन ढूंढो, फाड़ो, काटो, जो भी करना है करो, तब तक इंजॉय करो अपना ये प्यारा सा गाना।
0: Body Brunch RM2 Radio Masti.

0: पॉली ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।
1: तो दोस्तों 9 से 12 कब हो गया पता ही नहीं चला। मौसम कूल, सॉन्ग कूल और उम्मीद है आपका मूड भी फुल ऑन कूल हो गया होगा। अब संडे को पूरी तरीके से एंजॉय कीजिए, चाय के साथ, फूड के साथ, फैमिली के साथ। मैं भी आपके साथ पूनम फिर मिलेंगे इसी मस्ती के साथ। एंजॉय कीजिए। मेरी बात आ रही है अंजनी हंसनी लव लाउंज लेकर, और ये जो मोहब्बत भरे प्यार वाले गाने होते ना, ये बहुत खूबसूरत होते हैं। चलो भाई एंजॉय कीजिएगा उनके साथ भी। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, टेक केयर, बाय बाय। लास्ट सॉन्ग आपके लिए झूमे जो
2: RM2 Radio Musti.
3: Hit music only.
4: Radio Musti feels a Musti.

0: RM2 Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2
0: Radio Masti.
4: Radio Masti. The latest news and the greatest mix of music.
3: Radio Musty.
4: Feel the Musty.
5: आप सभी को नमस्कार. चेक योर टाइम, दिन के ठीक 12 बजे हैं. आइए सुनते हैं समाचार गीता जी के साथ. आपको नमस्कार गीता जी.
6: नमस्कार हंसिनी, सभी को हमारा नमस्कार. वर्ल्ड फूड फोरम के नए संस्करण की लॉन्चिंग कल शनिवार को हॉलिडे इन मॉरिशस मोत्रेजो में की गई. इसमें मॉरिशियन नौजवान शामिल हो रहे हैं. इस लॉन्चिंग समारोह में कृषि उद्योग मंत्री अरविंद बुलेल भी उपस्थित रहे. अपने संबोधन के दौरान उन्होंने युवाओं से मॉरिशस में कृषि खाद्य प्रणालियों के परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आह्वान किया. मंत्री ने अनुसंधान, नवाचार और नई तकनीकों में ज्यादा निवेश पर भी बात की, विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रेसिजन एग्रीकल्चर के लिए ड्रोन्स के इस्तेमाल पर. उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय तनाव, परिवहन लागत और उर्वरकों की बढ़ती कीमतों का भी उल्लेख किया और कहा कि मॉरिशस को अपनी खाद्य सुरक्षा और लचीलापन मजबूत करने की आवश्यकता है. मॉरिशस में आवारा कुत्तों की समस्या अब भी गंभीर बनी हुई है. उनके सटीक आंकड़ों पर हालिया जानकारी उपलब्ध न होने के बावजूद अधिकारी मानते हैं कि स्थिति लगातार बिगड़ रही है. खासकर जानवरों को छोड़ दिए जाने और नसबंदी की कमी के कारण पशु संरक्षण से जुड़ी गैर सरकारी संस्थाएं लगातार चेतावनी दे रही हैं. उनका मानना है कि वर्तमान स्टेरिलाइजेशन अभियान आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है, जबकि ये समस्या अब सार्वजनिक स्वास्थ्य का मुद्दा भी बन चुकी है. मैदान में सक्रिय संगठन बड़े पैमाने पर नसबंदी अभियान चलाने की मांग कर रहे हैं और सरकार के साथ मिलकर काम करने की इच्छा भी जता रहे हैं. और विदेश स्तर पर तमिलगा बेट्री कसगम टीवीके के अध्यक्ष सी जोसेफ विजय ने आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है. राज्य की दो प्रमुख द्रविड़ पार्टियों डीएमके और एआईएडीएमके के लगभग 6 दशकों से चले आ रहे बारी बारी के शासन का अंत हो गया है. विजय ने आज सुबह 10 बजे चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में शपथ ली. उनके साथ 9 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली, जिनमें टीवीके के कुछ वरिष्ठ नेता भी शामिल हैं. विजय एक गठबंधन सरकार का नेतृत्व करेंगे, जिसमें कांग्रेस एक सहयोगी के रूप में शामिल होगी. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विजय को बधाई दी. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर काम करती रहेगी. इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए. कुछ ही देर में शोक समाचार.
0: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
6: अबिलक्स तो रॉयल रोड फ्लोरियाल में 85 साल की 85-year-old की श्रीमती फुलेस्री अबिलक, पैदाइश नाम बिसेसर, और जो मैडम अबिलक से ज्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है. अर्थी आज शाम 4 बजे उनके घर अबिलक्स तो रॉयल रोड फ्लोरियाल से उठाकर बिगारा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमेशन टुडे एट 4 PM. शोक में डूबे हुए लोगों के प्रति हमारी गहरी हमदर्दी है.
0: You're listening to a Radio Masti.
7: Student of the Year 2026 Hindi Quiz Competition. Dekhna na bhule. Quarterfinal number 2 is Sunday Quiz. Ravivar, NBC 3, 6:30 PM. Kaun si wo 4 teams hongi jo pahunchengi finals mein? Ye janne ke liye bhule nahi. Sunday ko 6:30 PM on NBC 3 aa raha hai Quarterfinal number 2 Student of the Year 2026.
0: Love Lounge.
4: RM2.
3: Radio Musty.
0: Love Lounge.

0: Love Lounge, प्यार इश्क मोहब्बत Love Lounge.
1: जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर शुरुआत हो गई है फॉर आज का लव लाउंज ब्यूटिफुली. दैट विल बी योर म्यूजिकल जर्नी अप टिल 2 PM. और प्यार इश्क मोहब्बत की राह पर चली आई है आज पूनम हमारे साथ. हेलो पूनम, वेलकम ऑन रेडियो मस्ती अगेन.
2: हेलो जी, कैसे हो?
1: मैं तो बिल्कुल ठीक.

0: हूँ एंड लिसनिंग टू बॉली ब्रंच, तो जो एनर्जी है वो कुछ ज्यादा बढ़ गया है.
1: क्या बात है, बस ऐसे ही होना चाहिए सबके साथ में, क्योंकि जो बॉली ब्रंच है ना वो मूड बनाता है. मुझसे पहले नीलमणि थी, उसने भी मूड बनाया.
0: बिल्कुल. और अभी जो है हमारी प्यारी से पूनम, वो रोमांटिक मूड में आना चाहती है, इसीलिए शी वांट्स टू कनेक्ट विद लव लाउंज.
1: थैंक यू.
0: ओके, सो विल कैच यू वेरी सून पूनम अगेन ऑन रेडियो बस्ती. दैट वाज फन लिसनिंग टू बॉली ब्रंच. और यहां पर आ गई है हंसनी टू बी विद यू अप टिल 2 पीएम. आई विश यू ऑल अ ग्रेट आफ्टरनून, अ हैप्पी वीकेंड, अ हैप्पी संडे. कैसे हैं आप लोग? रेडी, होप कि सब ठीक है. यू आर हैविंग अ नाइस स्टार्ट. शुरुआत बिल्कुल अच्छी हुई है. और अगर ठीक नहीं है तो कोई बात नहीं, अभी ठीक बनाएंगे. मूड जो है आपका हसमुख बनाएंगे. विल मेक श्योर कि जहां पर भी साथ जारी हो गया है, विल ब्रिंग अ स्माइल, मुस्कुराहट बस आपकी बनी रहे, यही हमारी कोशिश हो जाएगी. अब चलते हुए वेलकमिंग योर मैसेजेस एज वेल. आप अपने प्यार को याद करना चाहेंगे, मे बी आज दिल कुछ कहना चाहेगा, वाई नॉट. ये एक ऐसा शो है जहाँ पर प्यार भरी बातें लबों पे आ जाती है, या द मैजिक इज हियर, जादू चल जाता है विद लव लाउंज. सो विल बी वेटिंग, आपका इंतजार रहेगा ऑन 5499-1294 फॉर योर लव मैसेजेस, योर डेडिकेशंस. राइट, ऑन 5499-1294. बिल्कुल सही आपने सुना है. दिन के 12:12 हो चला है. वाओ, दैट्स एन एंजल टाइम. सो मेक योर विश एंड मेक इट स्पेशल.
2: लव लाउंज,
3: RM2,
4: रेडियो मस्ती.
2: लव लाउंज.

0: RM2. Radio Musty. In the mix. Radio Musty. In the mix.
1: So यहाँ पर लाइन बिल्कुल सही आया है बिकॉज आई लव यू और ये जो थ्री मैजिकल वर्ड्स है आप किसी से कहना चाहते हैं सो देर किस बात की जल्दी से उठाइए फ़ोन एंड सेंड अ मैसेज लेट्स मेक इट स्पेशल वीकेंड है ना सो जो दिल का हाल है बता लीजिए ऑन 549-12-94 वी आर वेटिंग फॉर यू बाय चांस अगर कुछ तारीफ भी करना चाहेंगे सो मोस्ट वेलकम आप कह सकते हैं उनकी आँखें प्यारी है बातें कैसी है जब उनका साथ होता है कैसा होता है ये सब कुछ ऑन 549-12-94 वी आर वेटिंग आप ही का इंतजार हो रहा है लेट अस एंजॉय दिस ब्यूटीफुल संडे हमारे साथ ऑन रेडियो मस्ती हंसनी है जो साथ देने वाली है अप टिल 2 PM दिस इज आवर लव लाउंज अ बिग हेलो एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू अभिजीत सोना ऑल द वे फ्रॉम मिनियल बस से साथ जारी है अच्छा कुछ साफ सफाई हो रही है बढ़िया है जी लगे रहो मस्त वीकेंड को सजाना है ना आपके लिए

0: Love Lounge, प्यार इश्क मोहब्बत Love Lounge।
1: ये तो हो गया है शादी वाला फील, राइट? और इस समय हमारे परिवार जो रेडी हो रही है शादियों में जाने के लिए, इट्स द वेडिंग सीजन, राइट? तो खुशियाँ बस जारी है और उन्हीं खुशियों में शामिल है आप ही, करवे जो मस्ती। और अभी सिचुएशन कुछ ऐसा है कि दुल्हनियाँ बस सज रही है अपने दुल्हे राजा के लिए, जो लेने आएंगे आज

बैंड बाजा बारात को लेके वो आएंगे, अपनी दुल्हनिया को साथ लेके जाएंगे वापस अपने घर। मकान था और जीवन साथी के आने से घर हो जाएगा, होम स्वीट होम। सो प्यार के साथ वी आर हियर टू वेलकम योर हैप्पीनेस, और यही बस हम रब से प्रार्थनाएं करेंगे कि आपके जीवन में, आपके घरों में हमेशा खिल जाए खुशियाँ। Always be happy, always be in a peaceful life. शान सुकून के साथ आप रहें, यही गुड विशेस है फॉर ईच एंड एवरी वन। तो यहाँ पर हम सुनी है जो कुछ अच्छी अच्छी बातें कर रही है ना आपके साथ, बस कनेक्शन हमारा बन गया है जब से आप आए हो। Always a must to be with us in आज का लव लाउंज। एंड आप भी अपने प्यार को याद करें, ये एक ऐसा शो है जहाँ पर आप अपने प्यार को याद कर सकते हैं। इवन कि आपका प्यार आपको छोड़कर चला गया है या फिर चली गई है, लेकिन स्टिल दिल तड़पता है उनके लिए, दिल रोज़ाना उन्हीं को याद कर लेता है। तो बस उन्हीं के लिए अगर है कोई ऐसा प्याम, कहने से दिल हल्का हो जाएगा, सो व्हाई नॉट, कह लीजिए एंड मेक इट इजी ऑन 549-1294, जहाँ पर हम पढ़ेंगे आपके दिल की बातें। एंड यहाँ पर आप गट ऋषभ जी जो यहाँ पर स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड है इन आज का लव लाउंज, जिसे सोचकर हम मुस्कुराते हैं वो हो तुम, जिसे याद करके हम रात भर जागते हैं वो हो तुम, जिसे ख्वाबों में नहीं एहसासों में समाया है हमने वो हो तुम। I just love you very very much. ये आपकी ये जाने मन के लिए and to wish a very nice weekend. हमने सोचा है ये गाना हम dedicate करना चाहेंगे आप दोनों के लिए. Really hope you will enjoy and for you to have a perfect weekend at home. Maybe आज आपको time मिला है to relax. So ये आपके लिए and thanking you so much Rishabh ji for sharing such a beautiful shayari हमारे साथ with all the lovers जो यहाँ पर connected है on the rhythm masti.

0: लव लाउंज प्यार इश्क मोहब्बत लव लाउंज
1: यहाँ पे गुड म्यूजिक इट्स अ लवली वीकेंड फैमिली का साथ अपने प्यार के साथ यू आर हैविंग अ क्वालिटी वाला टाइम तो और क्या चाहिए टू मेक इट मोर मस्त यहाँ पर कच द बेस्ट ऑफ सॉन्ग्स इन आज का लव लाउंज वी आर हियर टू बी विद यू साथ निभाएंगे हम अप टिल 2 पीएम यहाँ पर है हंसनी का साथ आज आप लोगों के लिए रेडी होप कि जो आज का लिस्ट ऑफ सॉन्ग्स है जो गाने हम लेकर आ रहे हैं आप पसंद कर रहे हो फिजाओं में हवाओं में जो प्यार है वो आप तक ज़रूर पहुँच रहा है एकदम सेफ एंड A cute family समय जुड़े हुए हैं having lunch. We have got Reena. Hello जी कैसी हो Reena Dukaran का warm welcome. और जुड़ गई है आपकी लवली डॉटर्स पूर्वी एंड दिशा enjoying the day, enjoying lunch. So bon appetit आप सभी को Thank you for listening. एंड चलेंगे त्रियोले जहाँ पर सूरज भाई का साथ बिल्कुल जारी है सिंस द बिगिनिंग शुरुआत से हर हर महादेव आपको भी थैंक यू फॉर द ब्लेसिंग्स एंड हमेशा आप भी खुश रहें लिसनिंग टू द ब्यूटीफुल कलेक्शन इन लव लाउंज तो गाना तो बनेगा ना आपके लिए एंड फॉर एवरीवन लिसनिंग हेलो टू विराज लक्सिमो आज का भी साथ जारी है थैंक यू फॉर योर एनकरेजमेंट तो आपके लिए ज़रूर एक गाना चल जाएगा आपके लिए और पूरे परिवार के लिए भी जो यहाँ पर कनेक्टेड है हेलो टू ऑल द वे टू मस्ती फैमिली हेलो जी मिलानो इटली से आई है राजश्री जी सेलिब्रेटिंग मदर्स डे इन इटली सो प्लेजर टू वेलकम यू और गाना है फ्रॉम बेटा कृषि फ्रॉम कृष्णा अयान एंड पापा सतीश और जितने भी परिवार इस समय है कनेक्टेड ऑल द वे फ्रॉम अब्रॉड दूर होते हुए भी कितना आप पास रहते हो टू रेडियो मस्ती ये बहुत ही खास है हम सब के लिए सो कहेंगे आप सबको थैंक यू हाय नीले कैसी हो यहाँ पर गाना फॉर योर लव राजीव के लिए आपकी बहन है सिद्धि फॉर डोटनिया जो कुछ साफ सफाई कर रही हैं सो लगे रहो लॉट्स ऑफ खुगार्ज आपको ये जो दिन आता है आपके लिए बिल्कुल आपको टाइम मिलता है जो हफ्ते भर के लिए काम कर लेते हैं सो आज एक ऐसा मौका मिलता है घर के साथ फिर से वो नाता जुड़ जाता है कुछ साफ सफाई यू नो सम क्लीनिंग और बस वी डू गेट सम मोर लव टवर्ड्स आवर स्वीट होम तो जहाँ पर प्यार है उन्हीं पर हम फोकस करेंगे घर में सुकून आए प्यार आए हैविंग फ्रेश एयर यही तो है द पॉजिटिव साइंस जहाँ पे आप बढ़ रहे हो इन अ गुड वे और यही हमारी ख्वाहिश है कि बस यू कीप ऑन मूविंग जहाँ पर यू विल गेट लॉट्स ऑफ पॉजिटिव फीलिंग्स पॉजिटिव एनर्जीज तो यहाँ पर अगला जो गाना है हम डेडिकेट करना चाहेंगे उन लोगों के लिए जिनका प्यार बस बिछड़ गया है आखिर कैसे छोड़ दूँ तुझसे मोहब्बत करना आखिर कैसे छोड़ दूँ तुझसे मोहब्बत करना तो किस्मत में ना सही दिल में तो है प्यार हम रखेंगे जारी ऑलवेज एंड फॉरएवर कहानी अधूरी रह गई तो क्या हुआ प्यार तो अधूरा नहीं था ना नहीं है और नहीं रहेगा अ स्ट्रॉन्ग रीजन टू स्टे इन लव

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: Radio Musti.
1: North, South,
2: 103.5.
1: East, West,
2: 96.4.
1: Center,
2: 99.4.
0: RM2
2: Radio Musti.
0: Radio Musti. The latest news and the greatest mix of music.
1: Radio Musti.
0: Feel the Musti.
3: Wishing you all a very good afternoon. I check your time. It's 1 p.m. सुनते हैं समाचार करुणा जी के साथ. आपको नमस्कार करुणा जी.
4: नमस्कार हंसनी, सभी को नमस्कार. कल नैरोबी में अफ्रीका फ्रांस शिखर सम्मेलन शुरू होगा. अफ्रीका फॉरवर्ड के तहत लगाए जाने वाले इस सम्मेलन में अफ्रीकी महाद्वीप के लगभग 30 राष्ट्र अध्यक्ष भाग लेंगे. इनमें मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम भी शामिल होंगे. सम्मेलन मुख्य रूप से नवाचार, सतत विकास, ऊर्जा परिवर्तन और AI जैसे क्षेत्रों में साझेदारी को मजबूत करने पर केंद्रित होगा. इसका उद्देश्य अफ्रीकी देशों और फ्रांस के बीच आर्थिक और तकनीकी सहयोग को नई दिशा देना है. स्वास्थ्य क्षेत्रों में मॉरिशस के नेशनल कैंसर सेंटर और डॉक्टर जीटू अस्पताल में कैंसर की लगभग 10 जटिल सर्जरी सफलतापूर्वक की गई है. ये ऑपरेशन भारतीय विशेषज्ञ डॉक्टर सारावाना राजा मानिकम और डॉक्टर दीप्ति मिश्रा के एक सप्ताह के मिशन के तहत किए गए. दोनों विशेषज्ञ 11 मई तक मॉरिशस में होंगे. शुक्रवार को नेशनल कैंसर सेंटर में आयोजित एक बैठक के दौरान स्वास्थ्य मंत्री अनिल बेचू ने मॉरिशस की स्वास्थ्य प्रणाली को भारत द्वारा दिए जा रहे सहयोग की सराहना की. उनके अनुसार ये जटिल सर्जरी जो बिना रुके 8 से 10 घंटे तक चल सकती हैं, पहले मरीजों को विदेश भेजकर ही करानी पड़ती थी. तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख थिरु विजय ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली. शपथ ग्रहण समारोह चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में लगाया गया. विजय के साथ 9 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली. शपथ ग्रहण के बाद विजय ने उसी मंच से एक भाषण देते हुए 3 बड़े ऐलान किए, जिसमें 200 यूनिट की फ्री बिजली, महिलाओं की सुरक्षा के लिए स्पेशल फोर्स और ड्रग्स कंट्रोल के लिए स्पेशल यूनिट गठन शामिल हैं. और वायरस से प्रभावित क्रूज जहाज MV होंडियस पहले यात्री की मृत्यु के लगभग 1 महीने बाद आखिरकार टेनरिफे पहुंच गया है, जहां चिकित्सा दल और यात्रियों के स्वागत और स्वास्थ्य जांच के लिए तैयार हैं. ब्रिटेन में कैथरीन वेस्ट ने कैबिनेट मंत्रियों से कर स्टॉमर के नेतृत्व को चुनौती देने की अपील की है. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो वो स्वयं ऐसा करेंगी. इस बीच इसके लिए उन्हें कम से कम 81 लेबर सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होगी. इसी के साथ समाचार समाप्त हुए. कुछ ही समय बाद शोक समाचार.
5: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
4: अबिलक्सटो रॉयल रोड फ्लोरियाल में 85 साल की 85-year-old श्रीमती फुलेश्री अबिलक, श्रीमती फुलेश्री अबिलक पैदाइश नाम विशेषर जो मैडम अबिलक से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है. अर्थी आज शाम 4 बजे इनके मकान अबिलक्सटो रॉयल रोड फ्लोरियाल से उठाकर दाह संस्कार के लिए बिगागा की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमेशन टुडे एट 4 PM. शोकग्रस्त इस परिवार के प्रति हमारी दिली हमदर्दी है.
2: RM2 रेडियो मस्ती.
6: लव लाउंज.
0: RM2
1: रेडियो मस्ती.
6: लव लाउंज.
7: MBC Astea da Oulame. Nous présentons une nouvelle application MBC Play. Une nouvelle façon pour vivre vos programmes préférés directement au mobile, tablette, ordinateur ou même télévision. Get to ban chaîne en direct, écoute ban radio préférée, découvrez films, séries et si tu parles au journal télévisé, n'importe quoi tu étais. Download MBC Play au App Store, Google Play, Huawei App Gallery et Android TV. MBC Play, avec ou partout.
8: Student of the Year 2026 Hindi Quiz Competition. Dekhna na bhule, quarterfinal number 2 is Sunday Quiz Ravivar, NBC 3, 6:30 PM. कौन सी वो फोर टीम्स होंगी जो पहुंचेंगी फाइनल्स में, ये जानने के लिए भूले नहीं संडे को 6:30 PM ऑन MBC 3 आ रहा है क्वार्टर फाइनल नंबर 2 स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2026।
9: Débat climat peut continuer. Ben participants peut débattre sur une question climatique qui concerne nos pays et nos planètes. Débat climat, c'est une initiative MCB et Rajiv Gandhi Science Center avec collaboration Dr François Gemène, spécialiste en environnement. Rendez-vous samedi 16 mai pour la suite compétition Débat climat entre les élèves collèges à partir de 8h30 à soir au MBCN et MBCSAT.
0: RM2
1: Radio Musty feels a must.
6: Love Lounge
0: RM2
1: Radio Musty
6: Love Lounge.

0: Love Lounge, yeah, ishq, mohabbat, Love Lounge.
1: That was a great start, right, for the second hour. That was Ye Vaada Raha. Pleasantly yours, ye hai Aaj Ka Love Lounge, celebrating this beautiful day. Sunday ka din hai. And as we say, Sunday is fun day, family day, it's weekend. Aur yahan par to make the most of this quality wala time, hum lekar aaye hai the best of romantic songs. Kuch aise gaane jo bilkul sunte hi aap khush ho jayenge. And yakeen maniye unhi khushiyon ke liye hum bas apne show ko saja lete hain. Really hope you will enjoy the rest of the show. जो चलेगा अप टिल 2 पीएम यहाँ पर आज हंसनी है जो साथ निभाती जाएगी. विशिंग एवरीवन वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ आशिकी इन द वर्ल्ड ऑफ लव लाउंज. सो इस संडे के लिए काम जारी है. सो आई विश यू बॉन कुराज. एनर्जी लेवल को ऐसे ही मेंटेन रखे हाई लेवल पे और जारी हो टू एंजॉय सम फैमिली टाइम. तो हम हैं आपके साथ टू मेक इट ब्यूटिफुल. A big hello to all your family, जहाँ पर भी साथ जारी हो गया है. आँखों की नज़र से नहीं, हम दिल की नज़र से प्यार करते हैं जी. अच्छा, आँखों की नज़र से नहीं, हम दिल की नज़र से प्यार करते हैं. आप दिखे या ना दिखे, फिर भी हम आपका दीदार करते हैं. तो यहाँ पर दीदार जारी है, प्यार जारी है. और ये है मैसेज कमिंग फ्रॉम विशाल जो यहाँ पर कनेक्टेड है इन द वर्ल्ड ऑफ लव. दीदार है, प्यार है. और ये नज़र कब मिलेंगे उनके साथ, ये हम बस गाने सुन के पता चलेंगे, पता चल जाएगा. सो वी हैव इट फॉर यू, स्पेशली आपके लिए एंड आपकी हम सफर के लिए. कभी

0: Love Lounge, प्यार इश्क मोहब्बत Love Lounge.
1: Let's have some messages now on 549-91294. यहाँ पर दिल की बातें होती है आपकी messages के बारे में on 549-1294. Yes, शैला जी का साथ है from Roselle, listening to Love Lounge on Radio Musti. It's just wow feeling to her romantic songs. And you're missing your love, Abhishek, very much. तो उनके लिए एक romantic गाना please चला दीजिए. Of course. इतने प्यार के साथ आप आए हो ना तो लवली गाना तो बनता है आपके लिए. एंड फॉर एवरीवन लिसनिंग टू रेडियो मस्ती एंड हैविंग अ ग्रेट म्यूजिकल शो ऑन रेडियो मस्ती फॉर लव लाउंज. एंड वी हैव इट फॉर दिव्या एंड पंकज के लिए सेलिब्रेटिंग द वेडिंग एनिवर्सरी आज. लॉट्स ऑफ गुड विशेस जी. हैव अ ब्लेस्ड टाइम और इस खास पल में आपको मिले ढेर सारी खुशियाँ. और दिल से हम यही प्रार्थनाएं करेंगे कि आपका जो बंधन है वो और भी मजबूत बने, जो प्यार है वो और भी डबल होता जाए दिन ब दिन. गॉड ब्लेस यू एंड ब्लेस योर टुगेदरनेस. और जो अगला रोमांटिक सा गाना हमने सेलेक्ट किया है वो चलेगा आप दोनों के लिए स्पेशली. एंड वी हैव इट फॉर युवराज लिसनिंग टू अस राइट नाउ. आई एम एट वर्क और काम जारी है. आई बी डूइंग माई 24-hour शिफ्ट एंड लिसनिंग टू यू. और गाना बिल्कुल चल जाएगा आपके लिए एंड फॉर ऑल योर टीम जो आपके साथ है इस समय. फॉर ऑल द पुलिस ऑफिसर्स लिसनिंग टू अस एंड काम कर रही हैं इन द पुलिस स्टेशन. और कुछ तो जा रही हैं फॉर सम पेट्रोलिंग अराउंड द आइलैंड. सो कुराज उन सभी को. और कहेंगे आपको थैंक यू फॉर अप्रिशिएटिंग द सॉन्ग कलेक्शन. एंड वी हैव इट फॉर अयान के लिए सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे. लॉट्स ऑफ गुड विशेस कमिंग फ्रॉम फियांसे कृषा. आई वांट टू टेल हिम ही इज वेरी स्पेशल. और जब भी मैं रूठ जाती हूँ तो वो मनाने आता है. इतना अच्छा है, दिल का सच्चा है. एंड आई वॉन्ट हिम टू बी माइन फॉर एवर. तो चलिए जो आपका विश है वो बस पूरी हो जाए. वो तो आपके साथ है ना, तो बस साथ बस बनकर वो रहे ऑलवेज. यही हमारी गुड विशेस है आपके लिए भी. तो यहाँ पर ये म्यूजिकल शो बहुत ही अच्छा है. फीलिंग सो नाइस, फीलिंग सो पॉजिटिव अराउंड. सेंडिंग लॉट्स ऑफ पीस एंड लाइट फॉर एवरीवन लिसनिंग टू लव लाउंज. इस समय स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड है इन द वर्ल्ड ऑफ लव.
0: Love Lounge.
2: RM2.
3: Radio Musti.
0: Love Lounge.

0: RM2 Radio Musti
1: Hit Music Only
2: Radio Musti Feels a Musti.
3: कुछ लोग खोने को प्यार कहते हैं, कुछ तो पाने को प्यार कहते हैं, पर हकीकत तो ये है, हम तो बस निभाने को प्यार कहते हैं. एंड वी हैव दिस वन फॉर महेंद्र संपत के लिए, जो बस जुड़े हुए हैं टू रेडियो मस्ती एंड एंजॉय कर रहे हैं द म्यूजिकल शो. बस से द काउंटडाउन बिगिंस एंड अवेटिंग, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द स्पेशल डेट 17th ऑफ मे, राइट, जब हम सेलिब्रेट करने वाले हैं द बर्थडे फॉर यू. और यहाँ पे बिल्कुल वी हैव गॉट ऑल द बेस्ट विशेस फ्रॉम युवराज एंड युवंश एंड फ्रॉम ऑल द families as well. We do wish you all the best and a joyful birthday awaiting you with lots of good wishes. And yeah, thank you for being the best. Thank you for being the best papa ever. Aur ye jo khas gana hai wo specially aapke liye hum dedicate kar rahe hain.

0: Love Lounge. Dear Ishq Mohabbat. Love Lounge.
1: Keep enjoying the best of romantic songs in Love Lounge. And abhi I've got some more dedications coming up. Bhavna Rampersad ka welcome all the way from Love Lounge. Aapka saath hai. Dedication for pati Eklavya ke liye, aapke baby Darsha ke liye. Happy Sunday to all listeners. And thank you so much for bringing so much of love and hearts. How to as well. Yahan par gana aapke liye dedicate hum karenge. Anita ji, hi. Aap Bun mein se ho. Anita, कैसुन दियाल कैसी हो वाली हो कि सब ठीक है यहाँ पर गाना फॉर लवली डॉटर आशा के लिए फॉर दामाद दीपक भोला और पिचगाफे कल 11 मई को शादी की सालगिरह रहेगी दे विल बी सेलिब्रेटिंग द वेडिंग एनिवर्सरी और आज हल्दी विधि थी सो हैविंग सम फ्लैशबैक सुवेनियर्स राइट सेलिब्रेशन ऑफ संगीत एनिवर्सरी एज वेल तो बस खुशियाँ हैं सुवेनियर्स हैं हैविंग सम ग्रेट सुवेनियर्स बैक बेस्ट विशेस कमिंग फ्रॉम अनीता फ्रॉम डॉटर दीपाशा बेटा दीपेश और पूरे भोला और कैसुंदियाल फैमिलीज जो यहाँ पर आए हैं टू कन्वे द गुड विशेस टू आशा एंड दीपक आपके जीवन में हमेशा आपका जीवन

साथी दीपक बनकर रहे, उजाला वो लेकर आए आपके जिंदगी में आशा जी। यही गुड विशेस है फ्रॉम हंसनी एंड ऑल द टीम। लेट्स गो टू बोना के अमिता जी का वार्म वेलकम। रियली होप कि आप अभी ठीक हो। रियली नाइस टू एंजॉय द शो। और गाना आपके लिए चल जाएगा फॉर यू एंड फॉर एवरीवन। स्वीट गाना फॉर पति कुणाल।

0: यहाँ पर हंसनी ने नंजनी को याद किया है, वही कनेक्शन। तो जहाँ पर प्यार जारी है, ये दोस्ती जारी है, ये म्यूजिकल शो बस हम सजाते रहेंगे अब टिल 2 PM फॉर लव लाउंज। एंड हाँ, हंसनी का साथ निभाते रहिए, आई विल बी हियर, हम साथ साथ रहेंगे, इस म्यूजिकल जर्नी को एंजॉय करेंगे, राइट। सो रोमांटिक सॉन्ग्स अगर आपको पसंद है, ये शो आप लोगों के लिए हम सजाते रहेंगे। स्टे वेल कनेक्टेड,
1: लव लाउंज,
2: RM2
1: रेडियो मस्ती, लव लाउंज।

RM2. Radio Musty. In the mix. Radio.

0: Love Lounge.
1: RM2.
2: Radio Musty.
0: Love Lounge.
3: Let's continue with the magic of love happening on Radio Musti for आज का Love Lounge and we have it for Babu Shona and Pari के लिए जो जुड़े हुए हैं strongly from Canada to Mauritius and it's a warm welcome as always. हम लड़ते बहुत हैं लेकिन प्यार भी बहुत करते हैं ना. हमारे गुस्से से नाराज ना हो जाना क्योंकि गुस्सा ऊपर से है और प्यार दिल से करते हैं. तो दिल से हम चलाएंगे और दोनों के लिए हम लेकर आए हैं best wishes for you to enjoy. Happy weekend, right? चलिए इसके साथ I'll wave goodbye. Thank you very much. इतना सारा प्यार आप लेकर आए हो to enjoy the best of romantic songs. Thank you very much. ठीक 2 बजे सुनेंगे समाचार और इसके बाद आएगी परी लेकर आज का नेक्स्ट शो जो है प्लग एंड प्ले. मिलेंगे जल्द. तब तक के लिए स्टे सेफ एंड विश यू अ ग्रेट वीकेंड.

0: Débat climat peut continuer. Ben participant peut débattre sur une question climatique qui concerne nos pays et nos planètes. Débat climat, c'est une initiative MCB et Rajiv Gandhi Science Center avec collaboration Dr François Gemmen, spécialiste dans l'environnement. Rendez-vous samedi 16 mai pour la suite compétition Débat climat entre les élèves collèges à partir de 8h30 à soir au MBCN et MBCSAT.
1: RM2 Radio Mosty.
2: The Time is brought to you by
3: McDonald's. Pa-da-pa-pa-pa. I'm loving it.
2: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
4: North, South,
5: 103.5.
4: East, West,
5: 96.4.
4: Center,
5: 99.4.
6: RM2
5: Radio Musti.
6: Radio Musti. The latest news and the greatest mix of music.
4: Radio Musti.
6: Feel the Musti.
7: Time check 2 p.m. देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गए हैं करुणा जी. आपको नमस्कार.
8: नमस्कार परी, सभी को नमस्कार. जनवरी में पेनल्टी पॉइंट सिस्टम दोबारा लागू होने के बाद से सड़क दुर्घटनाओं में अप्रैल महीने के दौरान कम से कम 25% की कमी दर्ज की गई है. सरकार अब सड़क सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए कानूनी प्रावधानों को सख्त करने की तैयारी कर रही है. प्रस्तावित उपायों में इलेक्ट्रिक साइकिलों के लिए नए नियम शामिल हैं, जैसे आयु सीमा, हेलमेट पहनना अनिवार्य करना और बीमा इंश्योरेंस की आवश्यकता. कल नैरोबी में अफ्रीका फ्रांस शिखर सम्मेलन शुरू होगा. अफ्रीका फॉरवर्ड के तहत लगाए जाने वाले इस सम्मेलन में अफ्रीकी महाद्वीप के लगभग 30 राष्ट्र अध्यक्ष भाग लेंगे. इनमें मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम भी शामिल होंगे. सम्मेलन में मुख्य रूप से नवाचार, सतत विकास, ऊर्जा परिवर्तन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI जैसे क्षेत्रों में साझेदारी को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा. इसका उद्देश्य अफ्रीकी देशों और फ्रांस के बीच आर्थिक और तकनीकी सहयोग को नई दिशा देना है. स्वास्थ्य क्षेत्र में मॉरिशस के नेशनल कैंसर सेंटर

0: और डॉक्टर जीतू अस्पताल में कैंसर की लगभग 10 जटिल सर्जरी सफलतापूर्वक की गई। यह ऑपरेशन भारतीय विशेषज्ञ डॉक्टर सरावना राजा मानिकम और डॉक्टर दीप्ति मिश्रा के एक सप्ताह के मिशन के तहत किए गए। दोनों विशेषज्ञ 11 मई तक देश में मौजूद रहेंगे। विदेश में ब्रिटेन में कैथरीन वेस्ट ने कैबिनेट मंत्रियों से केयर स्टार्मर के नेतृत्व को चुनौती देने की अपील की है। उनका दावा है कि अब तक 10 सांसद उनका समर्थन करने को तैयार हैं। उनका ये बयान यूनाइटेड किंगडम में गुरुवार को हुए स्थानीय चुनावों के बाद आया, जहां लेबर पार्टी को इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड में भारी नुकसान उठाना पड़ा। 14 और 15 मई को डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा से ठीक पहले अमेरिकी विदेश विभाग ने 3 चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। इन कंपनियों पर ईरान को सैन्य सहायता देने का आरोप लगाया गया है। ये तीनों चीनी कंपनियां उपग्रह तकनीक में विशेषज्ञ हैं। अमेरिकी विदेश विभाग के अनुसार इन कंपनियों ने अंतरिक्ष से ली गई तस्वीरें ईरान को उपलब्ध कराई और इन सैटेलाइट तस्वीरों का इस्तेमाल कर तेहरान ने अमेरिकी बलों को निशाना बनाने के लिए किया। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। कुछ ही समय बाद शोक समाचार। इलुट कांजाबल में 52 साल की 92-year-old श्रीमती कासिया, जिन्हें लोग लीलो से जानते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी जो हैं, कल दिन के 11 बजे इनके बेटे आनंद शिवदिन के मकान इलुट कांजाबल से उठाकर दाह संस्कार के लिए कांजाबल की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। शोकग्रस्त इस परिवार के प्रति हमारी दिली हमदर्दी है।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.TV. Plug and play.
2: RM2
3: Radio Musty.
1: Plug and play.

0: Plug and play.
1: RM2
2: Radio Musty.
3: So well friends, a Sunday afternoon, it's time for your plug and play, जहां पर आप plug in कर सकते हैं हमारे इस प्यारे से रेडियो स्टेशन के साथ, जिसका नाम है RM2 Radio Masti. So अभी के लिए तो मैं हूं परी आपके साथ, and it's time for good music आपके लिए. अभी से लेकर 4 बजे तक कुछ प्यारे गानों के साथ आपके इस संडे को हम बनाने वाले हैं वेरी वेरी म्यूजिकल मैजिकल. वैसे संडे का प्लान तो सिंपल है, बस रिलैक्स करना, गानों को एंजॉय करना और स्ट्रेस को 4 कदम पीछे रखना. So अभी के लिए दोस्तों कुछ प्यारे गानों के साथ आपके मूड को हम सेट रखने वाले हैं, एंड वी हैव दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग. सभी लिसनर्स जो हमारा साथ दे रहे हैं, सोहम एंड आकृति कक्कर की आवाज, ये ब्यूटीफुल ट्रैक हमारे सभी ब्यूटीफुल लिसनर्स के नाम. मैसेजेस डेडिकेशंस 5499 1294 पर.
0: RM2 रेडियो मस्ती.

0: RM2.
1: Radio Musti feels a musti.
2: एंड अभी के लिए दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग. वैसे फिल्म तो थी एकदम एक्शन पैक्ड, लेकिन इस एक्शन के बीच हल्का सा रोमांस की एक ब्रीज. और ये गाना इतना प्यारा लगा लोगों को दैट रातों रात ये गाना हो गया वेरी पॉपुलर. जब भी इस गाने को सुनते हैं लगता है कि बस इस गाने को सुनते जाए. और आवाज़ तो है अरिजीत सिंह की, सो हाउ कैन इट नॉट टच द हार्ट. अभी के लिए हमारे सभी लिसनर्स एंड फॉर ऑल द फैंस ऑफ अरिजीत सिंह, वी हैव दिस ब्यूटिफुल रोमांटिक सॉन्ग. फिल्म है धुरंधर, अरिजीत सिंह का साथ देते हुए अरमान खान. Enjoy this one.

0: RM2. Radio Musty. In the mix. Radio Musty. In the mix.
1: एंड वेल फ्रेंड्स, म्यूजिक जो है वो हर इमोशन को बाहर ले ही आता है. नवी के लिए वी हैव दिस हार्ट टचिंग सॉन्ग. इसे स्पेशली डेडिकेट कर रहे हैं फॉर स्वीट नानीमा रेशमी राम तोहल. 2 weeks हुए हैं और परिवार उन्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं. सो दैट्स कमिंग फ्रॉम हर डॉटर्स, उनके दामाद, उनकी बहुएं, उनके जो सन इन लॉज हैं, सभी की ओर से बहुत सारा प्यार. ग्रैंडसन्स एंड ऑल किड्स जो उन्हें बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं. सो दैट्स इन द वॉइस ऑफ अरिजीत सिंह. अ ब्यूटिफुल सॉन्ग, हार्ट टचिंग सॉन्ग. कहते हैं ना दैट वी ऑलवेज मिस अनिया एंड डियर वंस. कभी कभार आंखों से दूर होते हैं लेकिन दिल में हमेशा रहते हैं. So far from eyes, but always close to heart. This one goes out for everyone जिन्हें आप आज on this Sunday miss कर रहे हैं. A beautiful track हमारे सभी listeners के नाम, especially goes out for नानीमा रेशमी राम तोहल, उनके पूरे परिवार की ओर से.

RM2. Radio Musty. In the mix. Radio

0: Radio Masti.
1: Hit music only.
0: Feels a Masti. Radio Masti.

0: Welcome to RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
2: Hit music only.
1: Feels a musti.
3: सो वेल फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुछ गाने ऐसे जो बहुत सी यादें साथ लेकर आते हैं. और ये जो चुनर गाना है, ये गाना ऐसा ही है जो बहुत से लोगों के दिल को छू जाता है. वैसे इंडिया में सेलिब्रेटिंग मदर्स डे आज, और बहुत सारे हमारे लिसनर्स इंडिया से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं. सो द चुनर गाना वो था आपके नाम भी. एंड अमिता जी, आई डू अंडरस्टैंड द फीलिंग्स, लेकिन यहाँ पर क्या करें, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आप भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं. तो कोशिश यही है कि आपके चेहरे की मुस्कुराहट हम बनाए रखें. तो आपके लिए भी बहुत सारा प्यार. और कहते हैं ना कि माँ का प्यार तो अनकंडीशनल होता है, यानी कि उन जैसा प्यार, उन जैसा अफेक्शन लाइफ में कभी कहीं नहीं मिलता है. सो इफ योर मदर इज़ अराउंड, ऑलवेज लव हर, ऑलवेज चेरिश हर. और ऐसी ही गुड विशेज तो हम पहुँचाते रहते हैं हमारे लिसनर्स के नाम. सो अभी के लिए यानी अमिता जी, आपके लिए हम भेज रहे हैं बहुत सारा प्यार एंड बहुत सारी गुड विशेज. साथ देने के लिए शुक्रिया. और कुछ प्यारे गीतों के साथ आपकी इस आफ्टरनून को हम स्पेशल म्यूजिकल बनाएंगे. साथ ही साथ यहाँ पर वी हैव सम मोर फ्रेंड्स. कहते हैं दैट हम भी तो आपके साथ जुड़े हुए हैं और सेलिब्रेटिंग मदर्स डे इन इटली एज वेल. विशिंग ऑल मामाज इन द वर्ल्ड वेरी हैप्पी मदर्स. And that's coming.

0: RM2. Radio Musty. In the mix. Radio Musty. In the mix.
1: And well, we have this beautiful song goes out for Roshni and Bobby Bisesa. We also have Anani Shobha, Senish, Ronish and Sabi Bisesa and Kai Chen Parivar, jo humare saath jude hue hain. Wishing you all a wonderful afternoon. Ja rahe hain shaadi mein, so enjoy the shaadi. Good wishes and bahut sara pyar aap sabhi ke naam. Pari ka saath on the waves of Radio Masti. It's time for your plug and play. Everyone connected हमारे इस प्यारे से रेडियो स्टेशन के साथ Sunday afternoon को बना रहे हैं magical musical, a beautiful track, blast from the past, लेकिन नए अंदाज के साथ. चलिए दोस्तों, साथ देते रहिए. एंड है अगर किसी अपने के नाम मैसेज डेडिकेशन, रहेगा इंतजार 5499-1294 पर.

RM2. Radio Musty. In the mix. Radio.

RM2. Radio Musty. In the mix. Radio

सो वेल फ्रेंड्स, गुनगुनाते हुए एक आवर तो कंप्लीट हो चुका है. मुलाकात होगी नेक्स्ट आवर में, थोड़ी ही देर में समाचार और उसके बाद लेकर आएंगे कुछ और प्यारे गाने. इट्स प्लग एंड प्ले राइट हियर ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती. मैं हूं परी आपके साथ टिल 4 PM.

0: RM2 Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Pa-da-pa-pa-pa. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
3: North, South,
4: 103.5.
3: East, West,
4: 96.4.
3: Center,
4: 99.4.
5: RM2
0: Radio Masti.
5: Radio Masti. The latest news and the greatest mix of music.
3: Radio Musti.
5: Feel the Musti.
6: Time check, exactly 3 p.m. सुनते हैं देश विदेश की खबरें. करुणा जी से आपको नमस्कार.
7: नमस्कार परी, सभी को नमस्कार. एंजन लिमिटेड की एक पाइपलाइन जिसकी मरम्मत से पहले सफाई की जा रही थी से भारी तेल एक नाले के रास्ते बंदरगाह क्षेत्र तक पहुंच गया है. पॉलीग्रीन जिसकी सेवाएं एंजन लिमिटेड ने ली हैं ने आज सुबह से सफाई अभियान शुरू कर दिया है. यह अभियान आने वाले कई दिनों तक जारी रहने की संभावना है. कल नैरोबी में अफ्रीका फ्रांस शिखर सम्मेलन शुरू हो रहा है. अफ्रीका फॉरवर्ड के तहत लगाए जाने वाले इस सम्मेलन में अफ्रीकी महाद्वीप के लगभग 30 राष्ट्र अध्यक्ष भाग लेंगे. इनमें मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम भी शामिल हैं. सम्मेलन में मुख्य रूप से नवाचार, सतत विकास, ऊर्जा परिवर्तन, AI जैसे क्षेत्रों में साझेदारी को मजबूत करने पर बल दिया जाएगा. जनवरी में पेनल्टी पॉइंट सिस्टम दोबारा लागू होने के बाद से सड़क दुर्घटनाओं में अप्रैल महीने के दौरान कम से कम 25% की कमी दर्ज की गई है. सरकार अब सड़क सुरक्षा को और भी मजबूत करने के लिए कानूनी प्रावधानों को सख्त करने की तैयारी कर रही है. प्रस्तावित उपायों में इलेक्ट्रिक साइकिलों के लिए नए नियम शामिल हैं. आज सुबह काठमांडू नगर पालिका में वॉइस ऑफ हिंदू के प्रतिनिधियों के एक जुटाव के दौरान संगठन के कार्यकारी सदस्यों को फिर से नियुक्त किया गया. संगठन के संचालकों ने भावी बजट तैयारियों को लेकर अपने विचार रखे. वॉइस ऑफ हिंदू ने विशेष रूप से सफाई कर्मचारियों और मेसन के लिए वृद्धावस्था पेंशन पर फिर से गौर करने की मांग की. विदेशी स्तर पर तमिलनाडु में TVK प्रमुख थिरु विजय ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. शपथ ग्रहण समारोह में चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में लगाया गया. विजय के साथ 9 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली. विजय ने एक्स पर कहा, मुख्यमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को उनकी शुभकामनाओं के लिए हार्दिक धन्यवाद. हमारा एकमात्र उद्देश्य जनता का कल्याण और प्रगति है. तमिलनाडु के निरंतर विकास के लिए हम केंद्र सरकार के सक्रिय सहयोग की आशा रखते हैं. 14 और 15 मई को डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा से ठीक पहले अमेरिकी विदेश विभाग ने 3 चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है. इन कंपनियों पर ईरान को सैन्य सहायता देने का आरोप लगाया गया है. इसके साथ समाचार समाप्त हुए. कुछ ही समय बाद शोक समाचार. अबिलक्सटो रॉयल रोड फ्लोरियाल में 85 साल की 85-year-old श्रीमती फुलेश्री अबिलक पैदाइश नाम विशेषर जिन्हें मैडम अबिलक से जाना जाता था की मृत्यु हो गई है. अर्थी आज शाम 4 बजे इनके मकान अबिलक्सटो रॉयल रोड फ्लोरियाल से उठाकर दाह संस्कार के लिए बिगाहा की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रीमेशन टू डेथ 4 PM. एपास दे शाजाल वाकवा में 23 साल के 23-year-old श्री वैभव रणवीर टेंगर जो रणवीर से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं. अर्थी आज शाम 5 बजे इनके पिता श्री विकास टेंगर के मकान एपास दिश शाजाल वाकवा से उठाकर दाह संस्कार के लिए फिनिक्स की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रीमेशन टुडे एट 5 PM. शोकग्रस्त इन परिवारों के प्रति हमारी दिली हमदर्दी है.
8: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.TV, NBC Radio.TV.
9: Plug and play.
5: RM2.
3: Radio Musti.
9: Plug and play.

0: रेडियो मस्ती, फील द मस्ती।
1: रेडियो मस्ती।
2: सो वेल फ्रेंड्स, बेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक लेकर आए हैं आपके लिए 3:09 संडे आफ्टरनून। कनेक्टेड हैं आप पर रेडियो मस्ती के साथ, मैं हूं परी एंड इट्स टाइम फॉर योर प्लग एंड प्ले। उम्मीद करते हैं आपके संडे को हम स्पेशल म्यूजिकल बना रहे हैं। बीट किशोर कुमार, बीट उदित नारायण, बीट अरिजीत सिंह, सब कुछ मिलने वाला है आपको राइट हियर ऑन रेडियो मस्ती।

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musty. Radio Musti.

RM2. Radio Musty. In the mix. Radio

0: RM2.
1: Radio Musty feels a Musty.

0: RM2. Radio Musty. In the mix. Radio Musty. In the mix.
1: Plug and play.
0: RM2.
2: Radio Musty.
3: तो चलिए दोस्तों, इट्स 3:28 और संडे आफ्टरनून में आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं. इट्स 10th ऑफ मे. बहुत सारे लोग आज मदर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, सो बहुत सारी गुड विशेस टू ऑल दोस सेलिब्रेटिंग. एंड यहाँ पर आपके गुड विशेस तो पहुँच ही रही है ऑन 5499 1294. सो यहाँ पर कुछ प्यारे गाने आपके नाम, कहते हैं लवली सॉन्ग्स, वंडरफुल सॉन्ग्स, और इसीलिए पसंद है हमें रेडियो मस्ती. ये हुई ना बात. वेल दैट्स कमिंग फ्रॉम आकाश एंड इट रियली मीन्स अ लॉट आकाश. थैंक यू फॉर द लव, और साथ देने के लिए शुक्रिया. सुनते रहिए आप रेडियो मस्ती. एंड रोशनी यहाँ पर कहते हैं थैंक यू फॉर द सॉन्ग मत आजमा रे, और आशा नहीं आया. हाँ, लगता है कि आपका दिल भी छू लिया इन गानों ने. एक्चुअली गाने तो है खास, और बस कोशिश यही है कि आपकी और हमारी जो चॉइसेस हैं वो मैच हो, और प्यारे गाने आप तक पहुँचाती रहेंगे ऐसे ही प्यार के साथ. सो थैंक यू सो मच रोशनी. विशिंग यू अ ग्रेट ग्रेट संडे एंड हैव अ वंडरफुल टाइम, अ म्यूजिकल टाइम रेडियो मस्ती के साथ. साथ ही गाना होगा फॉर धीरज, आयुष, विदिशा, अश्विन, ज्योति एंड हरक परिवार मोल्दाबाद से हमारा साथ दे हैं. मोदाल वैसे हमारे साथ जुड़े हुए हैं आप, सो आपके लिए गुड विशेस एंड बहुत सारा प्यार. साथ यहाँ पर कहते हैं प्लीज किशोर दा का एक और गाना हमारे नाम जरूर चलाइए. बस चलाते रहेंगे ऐसे ही कुछ प्यारे गाने आपके नाम. अभी के लिए तो टाइम हो चला है कि एक और ब्यूटीफुल सॉन्ग हो आपके लिए. सो एवरीवन जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एंजॉय दिस वन. दैट्स इन द वॉइस ऑफ आतिफ असलम.

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musti. Radio Musti.
2: So that's in the voice of Palak Muchel, a beautiful song. The film hai Police Giri. गाना रहा क्वाइट पॉपुलर और यहाँ मॉरिशस में भी वेरी पॉपुलर. इसी गाने को डेडिकेट कर रहे हैं सभी लिसनर्स के नाम संडे के लिए. ये स्पेशल गाना आप सभी के लिए जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, घर पर हैं, ड्राइव कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं या जहाँ कहीं से भी आपने ट्यून इन किया है. बेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक आपके लिए लेकर आए हैं. इट्स योर पग एंड प्ले. मैं हूँ परी आपके साथ. साथ रहेगा टिल 4 PM ऑन रेडियो मस्ती.

RM2. Radio Musty. In the mix. Radio Musty. In the mix.

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
3: North, South,
4: 103.5.
3: East, West,
4: 96.4.
3: Center,
4: 99.4.
5: RM2
0: Radio Masti.
5: Radio Masti. The latest news and the greatest mix of music.
3: Radio Masti.
5: Feel the Masti.
6: शाम के चार बज रहे हैं। सुनते समाचार अभी के साथ नमस्कार।
7: नमस्कार संजय, श्रोताओं को भी नमस्कार और आदाब। संक्षिप्त समाचारों में स्वागत है। जब से पेनाल्टी पूंज सिस्टम वाली प्रणाली शुरू हुई है तब से आंकड़ों के अनुसार दर्ज किए गए कुल 6400 अपराधों में से 17% मामले गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने से जुड़े हुए हैं। इसी वजह से मंत्रिपरिषद ने पेनाल्टी पूंज सिस्टम के तहत सजा को और सख्त करने की मंजूरी दे दी है। मंत्री उस्मान मोहम्मद ने बताया कि इस साल जनवरी में सिस्टम लागू होने के बाद से सुरक्षा के हालात सामान्य रूप से स्थिर रहे हैं। इसके बावजूद इस विशेष उल्लंघन के लिए पेनाल्टी पूंज को 5 से बढ़ाकर 10 कर दिया जाएगा। नैरोबी में अफ्रीका फॉरवर्ड 2026 शिखर सम्मेलन शुरू होने में अब कुछ ही घंटे बचे हुए हैं और केन्या की राजधानी में अंतिम चरण की तैयारियां तेज हो गई हैं। इस बड़े अफ्रीका फ्रांस सम्मेलन के लिए राजनीतिक नेताओं, निवेशकों, आर्थिक नीति निर्माताओं और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रतिनिधियों का इंतजार किया जा रहा है। 2 दिनों तक चलने वाली इस चर्चा के मुख्य विषय अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, तकनीक, युवाओं का रोजगार और अफ्रीकी महाद्वीप की संप्रभुता से जुड़े मुद्दे होंगे। मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों के बीच ये सम्मेलन अफ्रीका महाद्वीप के भीतर आपसी संबंधों को और मजबूत करने का एक बहुत ही बड़ा अवसर है। शुक्रवार दोपहर को एंजन लिमिटेड कंपनी की एक पाइपलाइन से भारी तेल का रिसाव हो गया जो मरम्मत के लिए सप्लाई के दौरान एक नाले में जा गिरा और बंदरगाह के क्षेत्र तक पहुंच गया। इसके बाद इंजन द्वारा नियुक्त की गई कंपनी पॉलीग्रीन ने रविवार सुबह से सफाई का काम शुरू कर दिया है। ये काम अगले कुछ दिनों तक जारी रहने की उम्मीद है। विदेश स्तर पर हम देखते हैं कि इसराइल ने ईरान के खिलाफ सैन्य अभियानों को समर्थन देने के लिए इराक के रेगिस्तानी इलाके में एक गुप्त सैन्य अड्डा स्थापित कर दिया है। इस बात का दावा वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में किया गया है। इसके अनुसार जब इराकी सुरक्षा बल इस ठिकाने के करीब पहुंचने थे तब इसराइल ने उन पर हवाई हमले भी शुरू किए थे। ये गुप्त अड्डा ईरान के साथ संघर्ष शुरू होने से ठीक पहले बनाया गया था और इनकी जानकारी अमेरिका के को पहले दे दी गई थी। 28 फरवरी को अमेरिका और इसराइल ने ईरान में कई ठिकानों पर संयुक्त हमले किए थे जिसके बाद मध्य पूर्व में तनाव और बढ़ गया। तो ये थे अब तक की खबरें, आप लोगों ने ध्यान दिया इसके लिए धन्यवाद। थोड़ी देर में शोक समाचार। एम पास दे शाजाल वाकुआ में 23 साल के 23 साल के श्री वैभव रणवीर तेंगाओ जिन्हें सब लोग रणवीर के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज शाम के पाँच बजे उनके पिताजी श्री विकास तेंगाओ के घर एम पास दे शाजाल वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन दिस आफ्टरनून एट 5 जोली स्ट्रीट 4 में 49 साल के 49 साल की श्रीमती सुवीना द्वारका प्रसाद श्रीमती सुवीना द्वारा का प्रसाद पैदाशी नाम मंगर मंगुत्रोय और जिन्हें सब लोग सुविना के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के साढ़े दस बजे उन्हीं के घर जुली कैथोसिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए देफ्रोया किश्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमरो एट 10:30 AM। इन सभी शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
8: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
9: Débat climat peut continuer. Ben participants peut débattre sur une question climatique qui concerne nos pays et nos planètes. Débat climat, c'est une initiative MCB et Creative Gandhi Science Center avec collaboration Dr. François Gemène, spécialiste dans l'environnement. Rendez-vous samedi 16 mai pour la suite compétition Débat climat entre les élèves collèges à partir de 8h30 à soir au MBCN et MBC SAS.
10: Music, Dr. Gatter.
11: RM2, Radio Musti.

0: हमारे सभी लिसनर्स को संजय की ओर से प्यार भरा नमस्कार आदाब एंड वेरी वेलकम ऑन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ रेडियो मस्ती। आशा करते हैं कि ये वीकेंड अच्छी तरह से गुजरी, संडे भी अच्छी गुजर रही है एंड यू हैविंग वेरी नाइस टाइम गीतों के साए में ऑन योर फेवरेट रेडियो स्टेशन।
1: म्यूजिक टक टक आता
2: है। RM2 रेडियो मस्ती।

0: टक टक टक
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: इसमें मुझे उसमें शाम के 4:23 हैं। It's such a pleasure to be having you on the frequencies of your favorite radio station, संजय आपके साथ। इस समय हमारे स्टूडियो में चार बहुत ही प्यारी लिसनर्स आई हुई हैं फ्रॉम पोर्ट रिस। दीवानी, हेलो दीवानी, इट्स अ प्लेजर टू बी हैविंग यू। प्रेमिला आल्सो, माला जी हमारे साथ हैं, एंड वी गॉट वीना जी हु इज कम ऑल द वे फ्रॉम लंदन। यस, फ्रॉम लंदन, एंड शी इज सो हैप्पी टू बी हियर। लेडीज, वी आर रियली डिलाइट टू बी हैविंग यू इन द स्टूडियो। और ऐसे ही आई सपोज जितने भी लोग यहाँ पर रेडियो मस्ती के स्टूडियो में आते हैं, दे आर रियली सो हैप्पी, सो mesmerized by the atmosphere here. So we do hope ki you're having a very nice stay in Mauritius, Veena ji, and wishing you all a very nice visit in the quarters of the embassy. Aur aise aapka pyar hame milta rahe, aur aise hi aap embassy ke sabhi programon ko, TV programon ko, radio programon ko pasand karte rahe. Once again, very very thank you to you all, and the next song goes specially for all of you.

0: एक टकटका टक
1: RM2 रेडियो मस्ती
2: आपकी संध्या शाम संजय के साथ ऑन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ रेडियो मस्ती। नंदिनी जी हमारा साथ निभा रही हैं। थैंक यू नंदिनी जी फॉर लविंग द सिलेक्शन एंड आई एम श्योर आपके साथ अन्य जो हमारे लिसनर्स हैं आर ऑल गोइंग टू एंजॉय दिस नेक्स्ट वन। सोनू के साथ सोनू निगम जी के साथ तुलसी कुमार इन द फिल्म दबंग 2।

0: स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2026 हिंदी क्विज कंपटीशन देखना ना भूले क्वार्टर फाइनल नंबर 2 इस संडे को इस रविवार एमबीसी 3 6:30 PM कौन सी वो 4 टीम्स होंगी जो पहुंचेंगी फाइनल्स में ये जानने के लिए भूले नहीं संडे को 6:30 PM ऑन एमबीसी 3 आ रहा है क्वार्टर फाइनल नंबर 2 स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2026
1: म्यूजिक टक टक टक
2: आरएम2 रेडियो मस्ती

ब्यूटीफुल सॉन्ग्स फॉर ब्यूटीफुल संडे इवनिंग संजय के साथ ऑन रेडियो मस्ती। चंदन जी ने हमें याद किया है और चंदा जी की ओर से वेरी हैप्पी बर्थडे तो भाई गणेश बिंदावन और रिव्या डेजोंगी और शुभकामनाएं पत्नी नंदा की ओर से बेटी यश ना निफ्यू यश आशले आयुष आरव दर्शिनी वरुण एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स सासुमा निर्मला सीतल जी की ओर से फ्रॉम कोंची।

0: RM2 Radio Musti.
1: Enhancing the taste of your Sunday afternoons. बेस्वादी जीवन में, बेस्वादी जिंदगी में हम मिठास खोलते हैं इन गीतों के जरिए. थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन एवरी सनडे इवनिंग 4 से लेकर 7 बजे तक तक संजय के साथ. और यहाँ पर वरुण राज जी ने हमें एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज भेजा है. हाय माय फेवरेट ऑजी, वी आर ऑल वन फैमिली हियर. और हमारा बस यही मकसद होता है कि हम आप सबों को का बेहतरीन से बेहतरीन मनोरंजन कर सकें. सो वरुण राज जी की ओर से नेक्स्ट गाना बेटी मिंकी के लिए, पापा महेश मामा के लिए, फोटू ब्रदर शिवाय एंड युवीश की तरफ से.

0: जब ये गाना चलता है यू लिटरली सी मिथुन दा और अनीता राज ऑन द टॉप ऑफ द ट्रेन. इज इट ट्रेन और इज इट अ बस, लेकिन सफर कर रहे होते हैं. आप सबों का स्वागत है इस म्यूजिकल सफर में, म्यूजिक तक लगातार संजय के साथ, एवरी संडे फ्रॉम 4 अप टिल 7. वेलकम इन द सेकंड आवर ऑफ द प्रोग्राम.
1: Music Taktakata
2: RM2 Radio Musti.
3: आओ एक भीगी हुई सी कहानी सुनाता हूं. जब आसमान से बूंदे नहीं मोहब्बत बरसी थी, बरसात ने ऐसी धुन छेड़ी जिसके लिए जिंदगी सदियों तरसी थी.
4: अरे सुन सुन.
5: यस मां.
4: एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है, ये फोटो देख ले, मुझे तो लड़की बहुत पसंद है.
5: माँ मैं बाद में देख लूंगा, बहुत लेट हो रहा हूँ.
4: अरे सुन सुन, एक बार देख तो ले.

0: डॉक्टर RM2 रेडियो मस्ती।
1: इस गाने को सुनकर हमें हमें एहसास हुआ, हमें याद हुआ कि काफी दिनों से हमने बरसात की धुन नहीं सुनी है। और अब जब कि हम जानते हैं कि इसमें बहुत सारे हमारे लिसनर्स बिजी इन द किचन, वो बिजी इन द गार्डन, सो लेट्स बी ए वेरी वेरी केयरफुल व्हाइल यूजिंग वाटर, यूज इट वेरी स्पेयरिंगली, जिससे कि हम ये विंटर पीरियड को गुजार पाए, क्योंकि विंटर में बारिश बहुत कम होती है। लेकिन यहाँ पर आपके मैसेजेस की वर्षा तो जारी है ऑन 5499-1294। अनीता जी ने हमें याद किया फ्रॉम फिक ऑफ लक, उनकी ओर से नेक्स्ट सॉन्ग गोइंग वो हस्बी राज, बेटे अंतिश, अंकुश, बहु मनीषा, अशिमा, पोती हिमेशा, आदित्य, पोते अंश एंड फॉर द होल फैमिली। साथ ही साथ ये अगला गाना चाहते हैं नंदिनी जी के लिए, जिसमें हमारे साथ जुड़ी हुई हैं कांतोगल से कल्याणी जी, कह रही हैं सभी के सभी गाने एकदम लाजवाब, प्रोग्राम एकदम बढ़िया।

सो सो नाइस टू बी हैविंग यू कंपनी ऑन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ रेडियो मस्ती। और ये लेते हैं ये स्पेशल मैसेज। जय श्री राम। थैंक यू रेडियो मस्ती फॉर कंपनी अस ऑलवेज। टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग द एंगेजमेंट सेरेमनी ऑफ विकिलेश एंड नंदिनी। बहुत सारा लाड डुलार प्यार एंड ब्लेसिंग्स फ्रॉम द होल बाबिया फैमिली। लॉन्ग लिव द कपल एंड ऑल गुड विशेस फ्रॉम रेडियो मस्ती।

0: You're listening to a Radio Masti.
1: Student of the Year 2026 Hindi Quiz Competition. Dekhna na bhule quarter final number 2 is Sunday Quiz Ravivar NBC3 6:30 PM. कौन सी वो 4 टीम्स होंगी जो पहुंचेंगी फाइनल्स में ये जानने के लिए भूले नहीं संडे को 6:30 PM ऑन NBC3 आ रहा है क्वार्टर फाइनल नंबर 2 स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2026
0: म्यूजिक टक टक टक
2: RM2 रेडियो मस्ती

0: fashion tips powered by Halkuri Fashion, house of ready-made garments. Music tak tak tak.
1: RM2 Radio Musti.
2: लेडीज एंड जेंटलमैन, आज फैशन की दुनिया से हम लाए हैं आपके लिए व्हाट वी कॉल द फ्री रूल. अब जिन्हें पता नहीं है, लेट मी टेल यू, द फ्री रूल इज अ सिंपल फॉर्मूला डिजाइंड टू मैक्सिमाइज योर स्टाइल विद मिनिमल एफर्ट. इट इन्वॉल्व्स चूजिंग फ्री टॉप्स, फ्री बॉटम्स एंड फ्री पेयर्स ऑफ शूज that can be easily mixed and matched. These 9 essential pieces create a mini wardrobe or capsule collection that offers surprisingly diverse outfit choices without the clutter. Think of it as your morning shortcut. सुबह को आप जब अपनी क्लोजेट खोलते हैं या तो अपनी अलमारी खोलती हैं, and you see it full, absolutely full, stuffed. लेकिन आपको लगता है कि कुछ नहीं है पहनने लायक. So when you have this sort of free, you operate within a pre-matched system. You simply pick one item from each category and you're ready to go. With just these 9 items, you can create more than 20 unique outfit combinations. इसको कहते हैं द मैजिक ऑफ द रूल. इट एनकरेजेस मोर क्रिएटिविटी विद फ्यूअर क्लोथर्स. इट्स एन आइडियल स्ट्रेटजी फॉर ट्रैवलर्स, खासकर जो लोग फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं या जिनके पास समय ही नहीं होता है, एंड होम वी कॉल मिनिमलिस्ट, और एनी वन लुकिंग टू सेव टाइम स्पेस एंड डेली डिसीजन.
0: Fashion Tips was powered by Halkuri Fashion, house of ready-made garments.
3: Music, Tak Tak Tak.
1: RM2, Radio Musti.

0: चक्कर काटे।
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: रेखा आईटी प्रेमिला जी जो प्लेंटी पापाई से हमारा साथ निभा रही हैं, उनकी ओर से नेक्स्ट सॉन्ग गोइंग फॉर हबी रंजीत एंड द होल फैमिली। ज्योति जी जो शादी बेनगाज से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, फॉर एंड फॉर द होल फैमिली। आपाटू फैमिली फ्रॉम रोशनो एंजॉयिंग विद द किड्स राइट नाउ। ऑल्सो गोइंग फॉर मिस्टर राजकुमार कतवागु ट्रेवलिंग टू इंग्लैंड एंड वेरी हैप्पी बर्थडे फ्रॉम द होल फैमिली। और ये अगला गाना खास तौर पर आशिता एंड मनीष के लिए जिनकी शादी नेक्स्ट वीक होने वाली है, फ्रॉम कवीश ऑफ बिलेयर।
3: बोल बोल के थक गए तुम दुनिया के सारे बोल, बोल बोल के थक गए तुम।
2: ब्लेसिंग्स फ्रॉम द होल फैमिली।

0: एक तू है, बस तू है मुझ में, अब मैं हूँ कहाँ।
1: म्यूजिक टकटकाता
2: RM2 रेडियो मस्ती।
3: छः बजने में सिर्फ 12 मिनट बाकी हैं। आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट दोज जो इस समय अपने संडे का लाभ उठाते हुए दे हैव गोन फॉर अ वॉक विद अ फैमिली विद अ किड्स ऑन द प्लेग्राउंड या इन जस्ट लाइक वी हैव एट सुडनाक दैट नेचर ट्रक। हमारी किस्मत में ये सब नहीं होता। हमारे किस्मत में बस आपका प्यार होता है थ्रू योर मैसेजेस, थ्रू द सॉन्ग्स जो आप सुनते हैं और जो आप हमारे बारे में कहते हैं और प्रोग्राम के बारे में कहते हैं, इससे हमें संतुष्टि मिलती है।

हाय नमस्ते संजी, मैं हूँ रमीला फ्रॉम वालेता। वांट टू डेडिकेट द नेक्स्ट सॉन्ग फॉर माय बेटे फॉर जेनिशा, फॉर केविना, फॉर जेडन एंड फॉर जुजियांग फ्रॉम रेनियो आइलैंड। सो नाइस टू बी लिसनिंग आउट देयर। Dedicating yet a nice track for Habi Vikas, Sibu, and for Vihan Rao. Sandhya Ji ki ur se from Boson Rouge, Cascavel.

0: एक उम्र गुजर गई आपके साथ प्यार बांटने में। अब तो बस यही दुआ है कि ये बाकी जिंदगी हम ऐसे ही आपके साथ गुजारें, बस आप तक प्यार पहुंचाते हुए और आपका प्यार पाते हुए। चलते चलते चलते चलते नहीं, इस प्रोग्राम के अंत में नेक्स्ट सॉन्ग गोइंग फॉर कृष्णी जी, जो कॉफ़ुको से हमारा साथ निभा रही हैं बहुत ही प्यार से। जय सिया राम कृष्णी जी। एंड ऑल्सो नेक्स्ट सॉन्ग गोइंग स्पेशली जानवी की ओर से फॉर हर लव साहिल। एंड ऑल्सो गोइंग फॉर ऑल द लव बर्ड्स जो इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फॉर यू एज वेल। 6 बजे आप सुनेंगे समाचार और समाचारों के बाद हमारी आपकी मुलाकात पुनः होगी। Stay tuned on your favorite radio station.
1: RM2 Radio Musti.
2: Ok Maurice, ce mois-ci, on voit les choses en grand chez McDonald's. C'est Grand May. Tout le mois de mai, profitez d'offres incroyables en restaurant, sur notre application et même en livraison. Du 8 au 31 mai, 5 généreux morceaux de crispy chicken à 460 roupies au lieu de 570 roupies. Plus de valeur, plus de goût et ça change tout. Grand May chez McDonald's, un mois à partager et à savourer.
1: McDonald's, ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
3: RM2
4: Radio Musty.
3: Music, Tuck Tuck Tuck.
4: RM2, Radio Musty.

रविवार 10 मई 2026 के सायंकालीन समाचार बुलेटिन में स्वागत है। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। देश में पेनाल्टी पॉइंट्स सिस्टम लागू होने के बाद से आंकड़े दर्शाते हैं कि दर्ज किए गए 6400 अपराधों में से 17% मामले गाड़ी चलाते हुए मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने से संबंधित है। इसीलिए मंत्रिमंडल ने इसे अपराध के लिए सजा सख्त करते हुए पॉइंट्स 5 से 10 बढ़ाकर 10 किए जाने की मंजूरी दी है। मेवाड़ के महान योद्धा महाराणा प्रताप सिंह की जयंती के संदर्भ में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने की दिशा में देश के पूर्वी इलाके खासकर कागोलिन गांव में आज एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। गहलोत राजपूत महासभा के अध्यक्ष के अनुसार मॉरिशन सरकार इस महान योद्धा के सिद्धांतों से प्रेरणा लेकर देश में राजपूत संस्कृति का संरक्षण एवं संवर्धन कर रही है। कल 11 मई से केन्या की राजधानी नैरोबी में अफ्रीका फॉरवर्ड 2026 शिखर सम्मेलन शुरू होगा। 2 दिनों के दौरान चलने वाली चर्चाओं में अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, टेक्नोलॉजी, युवा, रोजगार और अफ्रीकी महाद्वीप के सामने संप्रभुता को लेकर मौजूद चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। 1 मई से बिजली के टैरिफ में 15% की बढ़ोतरी लागू की गई है। घर के सामान्य उपकरणों के इस्तेमाल को लेकर कुछ बदलाव करने से बिजली बिल कम कैसे किया जा सके, इस पर ज्यादा जानकारी इस बुलेटिन में। और विदेश में भारत खासकर दक्षिण प्रांत में साउथ के स्टार विजय ने आज भारत के तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री की हैसियत से शपथ ग्रहण की।

0: नमस्कार और आदाब। सायंकालीन समाचार बुलेटिन में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। शुरुआत करते हैं स्थानीय खबरों के साथ, समाचारों को देते हैं विस्तार। जिस तरह से हमने सुर्खियों में इस बात का उल्लेख किया है कि देश में पेनाल्टी पॉइंट सिस्टम लागू होने के बाद से आंकड़े दर्शाते हैं कि दर्ज किए गए 6400 अपराधों में से 17% मामले गाड़ी चलाते हुए मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने से संबंधित हैं। इसीलिए मंत्रिमंडल ने पेनाल्टी पॉइंट सिस्टम के तहत ऐसे अपराधों के लिए सजा और सख्त करने की मंजूरी दी है। परिवहन मंत्री उस्मान माउमेद के अनुसार ऐसे अपराध के लिए पॉइंट्स 5 से बढ़ाकर 10 किए जा रहे हैं। समाचारों को बढ़ाते हैं। शुक्रवार को इंजन लिमिटेड की एक पाइपलाइन मरम्मत के लिए साफ की जा रही थी, जब उससे हैवी ऑयल का रिसाव हुआ। तेल नाले में बहकर बंदरगाह के क्षेत्र तक पहुंच गया। इंजन कंपनी ने समुंदर से तेल हटाने के लिए पॉलीग्रीन कंपनी की सेवाएं ली। आज सुबह शुरू हुआ यह सफाई अभियान आने वाले कई दिनों तक जारी रहेगा। अनिशा मादाया की रिपोर्ट पर करुणा लालू ज्यादा विस्तार दे रही है।
1: पॉलीग्रीन की टीमें रविवार सुबह से ही घटना स्थल पर तैनात रही। कंपनी ने पानी से तेल और मलबे को हटाने के लिए आवश्यक उपकरण भी उपयोग किए। युधिष राम भरत ने कहा, करीब 250 से 300 मलबे इकट्ठा किए गए हैं, अब तक सब नियंत्रण में है। ये आश्वासित करेंगे कि तेल घेरे से बाहर न जाए।
2: De l'huile qui est non, tout under control. L'équipe là pour qui nous make sure qui peine aucun de l'huile qui sorti en dehors bah hier y a des hauts.
1: वहीं दूसरी ओर इंजन लिमिटेड ने कहा कि वो सुनिश्चित कर रही हैं कि सफाई कार्य पूरा हो और भविष्य में ऐसे हादसे न हो, इसके लिए आवश्यक कदम उठाए जाए। इंजन पेट्रोलियम के अध्यक्ष क्रिस लक्ष्मी नारायण ने कहा, जैसे ही पूर्ण सफाई हो जाएगी 10 दिनों तक एक फॉलोअप होगा और संबद्ध लोगों को एक रिपोर्ट सुपुर्द की जाएगी, पर्यावरण मंत्रालय को भी, ताकि स्थल की स्थिति के बारे में सूचित की जा सके। कार्य करने वाले कॉन्ट्रैक्टर के साथ कल सुबह एक मुलाकात की जाएगी और इस हादसे के मूल्यांकन पर विचार किया जाएगा।
3: On va analyser la cause.
1: सफाई अभियान आने वाले दिनों तक जारी रहेंगे और घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए एक जांच भी शुरू कर दी गई है।
0: और जिस तरह से हमने इस बात की चर्चा की है कि देश में पेनल्टी पॉइंट सिस्टम लागू होने के बाद से आंकड़े दर्शाते हैं कि दर्ज किए गए 6400 अपराधों में से 17% मामले गाड़ी चलाते हुए मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने से संबंधित हैं। इसलिए मंत्रिमंडल ने पेनल्टी पॉइंट सिस्टम के तहत ऐसे अपराधों के लिए सजा और सख्त करने की मंजूरी दी है। परिवहन मंत्री उस्मान माहमूद के अनुसार ऐसे अपराध के लिए पॉइंट्स 5 से बढ़ाकर 10 किए जा रहे हैं। माधवी जागवनाथ की रिपोर्ट पर करुणा लालू का विवरण।
1: पेनल्टी पॉइंट सिस्टम लागू होने के बाद से अधिकारियों ने एक बढ़ती हुई समस्या पर ध्यान दिया है। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग, दर्ज की गई 6400 यातायात उल्लंघनों में से लगभग 17% मामले इसी से जुड़े हैं, जिससे सड़क दुर्घटनाओं और मौतों में वृद्धि का एक प्रमुख कारण माना जा रहा है। कैबिनेट ने पेनल्टी पॉइंट सिस्टम के तहत दंड को और सख्त करने को मंजूरी दे दी है। 50 से 60% लोग गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल का उपयोग करते हैं। मोटरसाइकिल, बस, लॉरी सब में देखा गया है। खुद की, अपने परिवार की और दूसरों की जान जोखिम में डालती है। रास्ते पर बहुत दुर्घटनाएं हो रही हैं, खासकर फोन के कारण। सरकार ने अच्छा फैसला लिया है, सोचता हूं अच्छा फैसला है। चालकों से अपील करूंगा, खासकर बस ड्राइवरों से बहुत सावधान रहना चाहिए। कई लोगों की जानें हमारे हाथों में होता है, हमारी भारी जिम्मेदारी होती है। नई व्यवस्था के अनुसार वाहन चलाते समय मोबाइल फोन इस्तेमाल करने पर मिलने वाले पेनल्टी पॉइंट्स 5 से बढ़ाकर 10 कर दिए जाएंगे, जबकि पहले ये 3 से 6 अंकों के बीच था। परिवहन मंत्री उस्मान महमूद ने कहा, सभी जानते हैं कि जब ड्राइवर मोबाइल का उपयोग करता है तो खुद की और दूसरों की भी जान जोखिम में डालते हैं, इसलिए कैबिनेट ने अंक बढ़ाने का फैसला किया। अब ये 5 से शुरू होता है, 28 दिनों में अदायगी नहीं की गई तो 10 अंक हो जाएंगे और जुर्माना भी दुगना हो जाएगा। ये स्पष्ट करूंगा कि 33 उल्लंघनों के लिए जुर्माना नहीं बढ़ा है, केवल अंक बढ़े हैं। अतः गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल फोन का उपयोग न करें। इस कदम का उद्देश्य जिम्मेदार ड्राइविंग को बढ़ावा देना है। ये उल्लेख्य है कि इस साल के जनवरी महीने से पेनल्टी पॉइंट्स प्रणाली लागू होने के बाद से सड़क सुरक्षा के आंकड़ों में सामान्य स्थिरता देखी गई है। सरकार अगले सप्ताह से रोड ट्रैफिक एक्ट में सुधार की प्रक्रिया शुरू करेगी ताकि ये नया प्रावधान जल्द से जल्द लागू किया जा सके।
0: समाचारों को आगे बढ़ाते हैं। कल 11 मई से केन्या की राजधानी नैरोबी में अफ्रीका फॉरवर्ड 2026 शिखर सम्मेलन शुरू होगा। वहां अंतिम तैयारियां पूरी की जा रही है। इस महत्वपूर्ण अफ्रीका फ्रांस सम्मेलन में कई देशों के राजनीतिक नेता, निवेशक, आर्थिक ऑपरेटर और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। 2 दिनों के दौरान चलने वाली चर्चाओं में अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, टेक्नोलॉजी, युवा रोजगार और अफ्रीकी महाद्वीप के सामने संप्रभुता को लेकर मौजूद चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के बीच ये अफ्रीकी महाद्वीप के लिए संबंधों और सहयोग को ज्यादा मजबूत करने का एक मौका रहेगा। अब्दुल बुलाकी की रिपोर्ट पर गीता सुनारायण का विवरण।
4: सम्मेलन कक्ष में अफ्रीकी और फ्रांसीसी प्रतिनिधि मंडलों के आगमन से पहले इस बड़े आर्थिक और राजनीतिक आयोजन की अंतिम तैयारियां जारी हैं। ये शिखर सम्मेलन 7 प्रमुख विषयों पर केंद्रित रहेगा: ऊर्जा परिवर्तन, वित्तीय संसाधनों का जुटाव, ब्लू इकोनॉमी, टिकाऊ कृषि, डिजिटल टेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य प्रणालियों की मजबूती और साथ ही अफ्रीका में शांति और सुरक्षा। 11 मई का दिन इंस्पायर एंड कनेक्ट विषय के अंतर्गत एक व्यापारिक मंच के साथ शुरू होगा, जिसमें फ्रांस और अफ्रीका के आर्थिक साझेदारी संबंधों की गहराई को उजागर किया जाएगा। 12 मई को अफ्रीकी राजनीतिक नेताओं की बैठक आयोजित होगी, जिसमें फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल माक्रों भी उपस्थित रहेंगे। ये बैठक मुख्य रूप से विकास की फाइनेंसिंग और वैश्विक चुनौतियों पर केंद्रित रहेगी। युवाओं की शिक्षा और रोजगार, संप्रभुता तथा प्रतिस्पर्धात्मकता से जुड़े मुद्दे भी चर्चा के केंद्र में होंगे। साथ ही अफ्रीकी संघ द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर भी विचार किया जाएगा। इस कार्यक्रम के कवरेज के लिए विदेशी मीडिया भी सक्रिय हो चुकी है। नैरोबी की सड़कों पर केन्या में अपेक्षित कई खास हस्तियों के स्वागत की तैयारियां की जा रही हैं। अफ्रीका फॉरवर्ड शिखर सम्मेलन के कुछ निष्कर्ष आगामी G7 शिखर सम्मेलन की तैयारियों में भी शामिल किए जाएंगे, जिसकी मेजबानी फ्रांस 15 से 17 जून तक करेगा।
0: नई दिल्ली में 7 से 8 मई को बदलती दुनिया में हिंद महासागरीय क्षेत्र विषय पर 10वां इंडियन ओशन डायलॉग का आयोजन किया गया। इसमें मॉरिशस का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री रितेश रामफल ने किया। इस उच्च स्तरीय बैठक का उद्देश्य हिंद महासागर इलाके में महत्वपूर्ण विकास और बदलाव तथा उभरती चुनौतियों पर चर्चा करना रहा। पॉल बेरांजे ने कल आधिकारिक तौर पर अपने नई पार्टी फ्रंट मिलिटेंट प्रोग्रेसिस की लॉन्चिंग की। वाक्वा नगरपालिका में लगे इस एक जुटाव के दौरान एमएमएम के पूर्व लीडर ने इस पार्टी के प्रमुख सिद्धांतों का उल्लेख किया और आने वाले कुछ महीनों के लिए एक रोड मैप भी प्रस्तुत किया। नौजवानों को कृषि और ब्लू इकोनॉमिक क्षेत्रों की ओर कैसे आकर्षित किया जाए, मोंट्रेजो में लॉन्च किए गए नेशनल यूथ चैप्टर ऑफ द वर्ल्ड फूड फोरम का उद्देश्य इसी नई गतिशीलता को प्रोत्साहित करना है। ग्रैंड रिवर साउथ ईस्ट यूथ सर्कल FAO द्वारा समर्थित और सतत परियोजनाओं पर केंद्रित इस परियोजना से लाभ उठा रहा है। उद्घाटन समारोह के मौके पर उपस्थित डॉ. अरविंद बुलेल ने सतत कृषि खाद्य क्षेत्र सुनिश्चित करने की दिशा में एक संरचित दृष्टिकोण की उम्मीद जताई। 1 मई से बिजली के टैरिफ में 15% की वृद्धि लागू होने के बाद से कई मॉरिशन निश्चित रूप से अपना बिजली इस्तेमाल कम करने के लिए विभिन्न तरीकों को अपना रहे हैं, चाहे वो रेफ्रिजरेटर हो, एसी हो, इलेक्ट्रिक वाटर हीटर हो या फिर स्टैंडबाय मोड पर रखे जाने वाले उपकरण को लेकर हो। रोजमर्रा के जीवन में कुछ विशेष आदतें अपनाने से बिजली बिल कम जरूर की जा सकती हैं। ज्यादा विस्तार गीता सुनारायण के साथ।
4: 1 मई से बिजली 15% महंगी हो गई है। ऐसे में यदि आप हर महीने लगभग 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल करते हैं तो अब तक आप करीब 1200 रुपये का भुगतान करते थे, लेकिन अब आपकी खपत के अनुसार बिल लगभग 1400 रुपये तक पहुंच सकता है। ऐसे में बिजली का बिल देखकर झटका न लगे, इसके लिए एक ही उपाय है, बिजली की बचत।
5: Depuis dernier bill, nos billings bien augmenté parce que nous savions qu'on et tout. Mais heureusement que côté climat, l'IVAP est rentré.
6: Je fais attention, on ne va pas perdre sa vie, faire beaucoup gaspillage parce que sinon c'est pas facile pour gagner.
4: आर्थिक बोझ को कम करने के लिए कुछ छोटी-छोटी आदतें बड़ा फर्क ला सकती हैं। उदाहरण के लिए, फ्रिज को ज्यादा देर तक खुला छोड़ने से गर्म हवा अंदर चली जाती है। इसके बाद फ्रिज को फिर से ठंडा होने के लिए अधिक बिजली खर्च करनी पड़ती है। यदि फ्रिज को 1 मिनट तक खुला छोड़ दिया जाए तो ऊर्जा की हानि 10 गुना तक बढ़ सकती है। सुझाव है, फ्रिज खोलने से पहले तय करें कि आपको क्या निकालना है। फ्रिज के दरवाजे की रबर सील की जांच करें। इलेक्ट्रिक शावर आपकी कुल बिजली खपत का 30-50% तक हो सकता है। हर रोज 10 मिनट तक इसका उपयोग करने से लगभग 30 किलोवाट घंटा बिजली हर महीने खर्च होती है। सुझाव है, नहाने का समय 10 मिनट से घटाकर 5 मिनट करें। तापमान कम करें, साबुन लगाते समय पानी बंद कर दें। एयर कंडीशनर यानी एसी सबसे ज्यादा बिजली इस्तेमाल करता है। ये प्रति घंटे 800 से 2000 वाट तक बिजली खर्च कर सकता है। तुलना के लिए कहें तो ये लगभग 40 लेड बल्ब एक साथ जलने जितनी खपत है। सुझाव है, एसी को 24 से 25 डिग्री सेल्सियस पर सेट करें, दरवाजे और खिड़कियां बंद रखें, फिल्टर की नियमित सफाई करें। इससे लगभग 15% तक बिजली बचाई जा सकती है। इसके मुकाबले पंखा कहीं ज्यादा किफायती विकल्प है, क्योंकि वो एसी की तुलना में 10 से 20 गुना कम बिजली खर्च करता है। सुझाव है, रात में पंखे का ज्यादा उपयोग करें। ताजी हवा आने के लिए खिड़की थोड़ी खुली रखें ताकि कमरा गर्म हवा का चक्र न बन जाए। पंखे की नियमित सफाई करें, और जो उपकरण स्टैंडबाय मोड पर रहते हैं उन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, जबकि वे कुल बिजली बिल का 5-10% तक बढ़ा सकते हैं। एनर्जी एफिशिएंसी मैनेजमेंट ऑफिस के निदेशक प्रोफेसर खलील इलाही कहते हैं, कुछ उपकरणों को स्टैंडबाय में रख सकते हैं, जैसे डिकोडर, क्योंकि रात के वक्त ऑटोमेटिक तरीके से रिप्रोग्रामेशन होता है। नए जेनरेशन के डिकोडर ऐसे नहीं हैं। सुझाव है, स्विच वाली मल्टीप्लग का उपयोग करें ताकि सभी उपकरण पूरी तरह बंद किए जा सके। वॉशिंग मशीन चलाते समय कोशिश करें कि मशीन पूरी भरी हो ताकि कम बार उपयोग करना पड़े। इस्त्री करते समय सारे कपड़े एक साथ प्रेस करें और काम खत्म होते ही प्लग निकाल दें। आजकल काफी लोकप्रिय एयर फ्रायर लगभग 20 से 30 मिनट के उपयोग में 0.4 से 1 किलोवाट घंटा बिजली खर्च करता है, यानी छोटे इलेक्ट्रिक ओवन के बराबर। बिजली की खपत कम करने के लिए खाना पकाते समय इसे बार बार खोलने से बचें। एक और सवाल जो अक्सर पूछा जाता है, ज्यादा किफायती क्या है, बल्ब या ट्यूब? जवाब है दोनों, बशर्ते कि वे लेड हों। प्रोफेसर खलील इलाही कहते हैं, लेड यानी लाइट इमिटिंग डायोड जो बहुत ही अच्छा है। अब टाइमर्स भी हैं, ये ऐसे गैजेट्स हैं जिनका उपयोग करना ज्यादा आसान है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार पहली मई के बाद से बिजली की खपत में कमी आई है, जिसमें मौसम के ठंडा होने का भी योगदान है। बिजली की बचत की शुरुआत छोटे छोटे कदमों से होती है।
0: जिस तरह से हमने सुर्खियों में इस बात का उल्लेख किया है कि मेवाड़ के महान योद्धा महाराणा प्रताप सिंह की जयंती के संदर्भ में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने की दिशा में देश के पूर्वी इलाके खासकर काहोलिन गांव में आज एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। गहलोत राजपूत महासभा के अध्यक्ष के अनुसार मॉरिशन सरकार इस महान योद्धा के सिद्धांतों से प्रेरणा लेकर देश में राजपूत संस्कृति का संरक्षण

0: एवं संवर्धना कर रही है। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम आज रात केन्या, खासकर नैरोबी के लिए रवाना हो रहे हैं। वे वहां अफ्रीका फ्रांस शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इस दो दिवसीय सम्मेलन का विषय अफ्रीका फॉरवर्ड रखा गया है। इसका मुख्य उद्देश्य फ्रांस और अफ्रीकी देशों के बीच साझेदारी को मजबूत करना है। सम्मेलन में नवाचार यानी कि इनोवेशन, आर्थिक विकास, युवाओं के भविष्य और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों पर बात होगी। प्रधानमंत्री ब्लू इकोनॉमी पर एक गोलमेज की सह अध्यक्षता संभालने वाले हैं। साथ ही मॉरिशस के निजी सेक्टर का एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल भी बिजनेस फोरम में शामिल होगा। इस दौरे का लक्ष्य अफ्रीका के साथ मॉरिशस के आर्थिक और राजनयिक संबंधों को और बेहतर बनाना है। ये शिखर सम्मेलन फ्रांस और मॉरिशस सहित अन्य अफ्रीकी देशों के बीच नए और महत्वाकांक्षी संबंधों को विकसित करने का एक उपयुक्त मंच है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर आरियान नवामारी कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में सरकार की जिम्मेदारी संभालेंगी। समाचारों को आगे बढ़ाते हैं। कैट्रोबो नगर पालिका में आज वॉइस ऑफ हिंदू के सदस्यों की बैठक लगी, जिसके अंतर्गत एग्जीक्यूटिव समिति का चुनाव किया गया। इस मौके पर संगठन ने विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत अपनी शाखाओं के सदस्यों को सम्मानित भी किया, साथ ही भावी राष्ट्रीय बजट को लेकर विचार प्रस्तुत किए गए। वॉइस ऑफ हिंदू पेंशन प्रणाली पर फिर से गौर किए जाने की मांग कर रहा है, खासकर स्कैवेंजिंग और निर्माण कार्यों से जुड़े कर्मचारियों के लिए। कुणाल गोजी की रिपोर्ट पर करुणा लालू का विवरण।
1: वॉइस ऑफ हिंदू के प्रतिनिधियों की सभा के दौरान बजट 2026-2027 के संदर्भ में कई प्रस्ताव रखे गए। अध्यक्ष कृत मनोहर ने कहा, सरकार एक नई स्ट्रेटेजी के साथ आ रही है। नौजवानों को एक आवास प्राप्त करने के लिए खुद को पंजीकृत करना चाहिए, कृषि की ओर मोड़ना चाहिए, क्योंकि आज खाद्य संबंधी कई कठिनाइयां हो रही हैं। सरकार से मांग है कि वे ज़रूरतमंद परिवारों के लिए फिर से पेंशन पर गौर करें। इस अवसर पर संगठन के कार्यकारी सदस्यों की नियुक्ति दोहराई गई। देश भर के विभिन्न शाखाओं से जुड़े सदस्यों को उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। बच्चों के साथ मानव मूल्यों पर काम करता था, खासकर वे बच्चे जो कम सीन उम्र में स्कूल छोड़ चुके थे। इस पुरस्कार समारोह में अलग अलग क्षेत्रों में सदस्यों के प्रति आभार जताया गया, खासकर संस्कृति, शिक्षा और खेल के क्षेत्र में।
0: और जिस तरह से हमने सुर्खियों में इस बात का उल्लेख किया है कि विदेशी स्तर पर भारत में खासकर साउथ के स्टॉप विजय ने आज तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री की हैसियत से शपथ ग्रहण की। अपने प्रथम भाषण में उन्होंने राज्य में भारतीय संविधान की रक्षा और ईमानदारी जिम्मेदारी के साथ काम करने का वादा किया। भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज बेंगलुरु में आउट ऑफ लिविंग के नवनिर्मित ध्यान मंदिर का औपचारिक उद्घाटन किया। यह विशेष समारोह संगठन की स्थापना की वर्षगांठ और संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिवस के अवसर पर आयोजित किया गया।
2: बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग का नया ध्यान मंदिर मेडिटेशन और होलिस्टिक स्वास्थ्य के लिए समर्पित एक विशेष केंद्र है। आर्ट ऑफ लिविंग की स्थापना की 45वीं वर्षगांठ और गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्म दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस ध्यान मंदिर का औपचारिक उद्घाटन किया। इस समारोह में भाग लेते हुए मोदी जी ने आर्ट ऑफ लिविंग संगठन द्वारा आयोजित की जा रही कई राष्ट्रव्यापी गतिविधियों की लॉन्चिंग की। इनमें मानसिक स्वास्थ्य अभियान, गांवों में विकास परियोजनाएं, प्राकृतिक संरक्षण कैंपेन्स तथा सामाजिक परिवर्तन से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। अपने संदेश में मोदी जी ने कहा कि अगर विजन

0: स्पष्ट हैं और कार्य सेवा भाव से किए जाएं तो परिणाम सकारात्मक ही होता है।
1: जब संकल्प स्पष्ट हो और सेवा भाव से कार्य किया जाए तो हर प्रयास का सुखद परिणाम मिलता है।
0: साथ ही उन्होंने भविष्य निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख किया।
1: विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा जो युवा मानसिक रूप से शांत हो, जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो।
2: और अंत में मौसम का हाल। आम हालत पूर्व की ओर से बादलों का एक झुंड हमारे इलाके को प्रभावित करने लगेगा अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान। आज रात हवाई ढलानों पर बादलों के घेराव के साथ हल्की सी बारिश होगी। कल सुबह पूर्व, दक्षिण पूर्व और सेंट्रल प्लेटो पर हल्की सी बारिश होने का अनुमान है। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाह रेखा के उस पार लगभग 2 मीटर 50 सेंटीमीटर वाली लहरें उठेंगी, अतः दूर समंदर में न जाने की मांग की जाती है। तापमान सेंट्रल प्लेटो पर न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और अधिकतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच। तटवर्ती इलाके पर न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा जबकि अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच। आज सूर्यास्त 5:43 पर जबकि कल सूर्योदय लगभग 6:30 बजे।

0: तो देश विदेश की इन्हीं खबरों व मौसम संबंधी जानकारियों के साथ ही यह सायंकालीन समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला। आप लोगों ने ध्यान दिया, इसके लिए धन्यवाद। तकनीकी मदद के लिए हम लुडोविक को धन्यवाद देना चाहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: आइए शोक समाचार सुनते हैं। जोली स्ट्रीट कैट्सियर में, जोली स्ट्रीट कैट्सियर में 49 साल की 49 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती सुवीना दोवारा का प्रसाद, श्रीमती सुवीना दोवारा का प्रसाद, पैदाशी नाम मंगत रॉय और जिन्हें सब लोग सुवीना के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के साढ़े दस बजे उन्हीं के घर जोली स्ट्रीट कैट्रोसिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए देफ्रे की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10:30 AM। इले कांडियाब में 92 साल की 92 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती केसिया जिन्हें सब लोग लीलो के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके बेटे श्री आनंद शुरुदीन के घर इलो कौंजाब से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कौंजाबला की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। दुखी रोड ग्रैंड रिट्रेट में 28 साल की 28 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती विदुषा रितु, पैदाइशी नाम सिगुलाम और जिन्हें सब लोग विदु के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दोपहर के दो बजे उनके पति श्री अशय रितु के घर दुखी रोड ग्रैंड रिट्रेट से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुनाकई की श्मशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 2 PM। इन सभी शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.

0: MBC Radio.TV. MBC Radio.TV. Débat climat peut continuer. Ben participants peut débattre sur une question climatique qui concerne nos pays et nos planètes. Débat climat, c'est une initiative MCB et Rajiv Gandhi Science Center avec collaboration Dr François Gemen, spécialiste en environnement. Rendez-vous samedi 16 mai pour la suite compétition Débat climat en bains élèves collèges à partir de 8h30 à soir au MBCN et MBCSAT.
1: Student of the Year 2026 Hindi Quiz Competition. Dekhna na bhule quarterfinal number 2 is Sunday Quiz Ravivar MBC 3 6:30 PM. कौन सी वो 4 टीम्स होंगी जो पहुंचेंगी फाइनल्स में ये जानने के लिए भूले नहीं संडे को 6:30 PM ऑन एमबीसी 3 आ रहा है क्वार्टर फाइनल नंबर 2 स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2026
2: म्यूजिक टक टक आता
3: आरएम2 रेडियो मस्ती

टक टक संजय के साथ थर्ड एंड फाइनल आवर ऑफ द प्रोग्राम। आगे बढ़ने से पहले लेट मी गिव यू द रिजल्ट्स ऑफ द मैचेस जो इस समय खेले जा रहे हैं इन द इंग्लिश प्रीमियर लीग। चार मैचेस निर्धारित जिनमें से तीन शुरू हो चुके हैं एंड वी आर प्लेइंग द एंड ऑफ द सेकंड हाफ ऑफ रेगुलर टाइम। 75 मिनट्स प्लेड, बर्नले 2 आस्टन विला 2। 80 मिनट्स प्लेड, क्रिस्टल पैलेस 2 एवर्टन 2। 79 मिनट्स प्लेड, नॉटिंघम फॉरेस्ट 0 न्यूकासल 1। और आज का लेट मैच होगा बिटवीन वेस्ट हैम एंड आर्सेनल। आर्सेनल अगर वो इस सीजन चैंपियन बनना चाहते हैं देन इट इम्पेरेटिवली नीड्स टू विन ऑल इट्स मैचेस। अभी से लेकर टिल द एंड ऑफ द सीजन। और अब थोड़ी देर में आपके लिए एक हैप्पी बर्थडे विश। वेरी हैप्पी बर्थडे टू यंशिनी जो आज 17 साल के हो रहे हैं। हैप्पी बर्थडे टू यंशिनी फ्रॉम मदर आशा, पापा विकास, बूबा की ओर से, भाई तनवीश की ओर से एंड ऑल चिना फैमिली ऑफ मोका विशिंग यू यंशिनी अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे।

0: टकाटक
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: A big hi to all those जिस समय काम पर हमारे साथ निभा रहे, wishing you all bon courage. And all those preparing for dinner with a family, that's very nice. Nima ji ne me yaad kiya from Model Bear, requesting an ex gana unke pati Vishal ke liye, jinka jaramdin hai. Very happy birthday to you, Vishal bhai. Wishing you good health and success, blessings from everyone. Teen bete Yadav, Nilesh and Viresh, and all your family members and friends, wishing you, Vishal bhai, a very happy birthday. साथ ही साथ ही अगला गाना जाता है टू विश अमायरा रगजी ऑफ न्यू गोव अ वेरी हैप्पी सेवेंथ बर्थडे फ्रॉम मासी रितु, भाई हर्ष एंड सिस्टर येशना.

0: RM2.
1: Radio Musty feels a musty.
2: हैप्पी बर्थडे विश का सिलसिला जारी रखते हैं शीतल जानकी जी के लिए, जिनका जन्मदिन है। शीतल जी, बहुत सारी शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस सासू माँ शीला जानकी जी की ओर से फ्रॉम लावांचू। एंड टाइम डियर्स टू लीव यू हियर, हमारे दोस्त निखिल आ चुके हैं आपका साथ निभाने आज फ्रॉम 7। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, हमें आज्ञा दीजिए, बाय बाय, लव यू ऑल।

0: Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: Good evening, Mauritius. और दुनिया भर में जो भी हमको सुन रहे हैं अभी उनको कहेंगे गुड इवनिंग फ्रॉम मॉरिशस। मौसम थोड़ा ठंडा है आज, गला भी हल्का सा साथ नहीं दे रहा है, तो टुनाइट वी स्लो थिंग्स डाउन अ लिटिल बिट। मैं हूं निखिल और अगले दो घंटे हम साथ में शाम से रात का सफर तय करते हैं। सॉफ्ट बॉलीवुड मेलोडीज, एम्बियंट ट्यून्स और वो गाने जो रात की खामोशी में और भी खूबसूरत लगने लगते हैं। सो वेयरएवर यू आर टुनाइट, सेटल इन, रिलैक्स और म्यूजिक को हवा में घुलने दीजिए। यह है बॉलीवुड सिज़ला ओनली ऑन RM2।

0: Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: अगर आप अभी ड्राइव कर रहे हैं या बालकनी में हवा खा रहे हैं या बस बेड पर ऐसे ही लेटे हुए हैं हमें सुन रहे हैं, हम कहेंगे आपको थैंक यू फॉर लेटिंग अस बी पार्ट ऑफ योर संडे नाइट। अभी आप हमारे महफिल में आ ही चुके हैं, शामिल हो ही चुके हैं, तो अपने कुछ पैगाम हमको बयां कर सकते हैं 5499-1294 for all your messages। तब तक के लिए हम सुनते हैं गजेंद्र सिंह की आवाज में मन मेरा।

0: Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: जी हाँ, होप यू आर अप्रिशिएटिंग द प्लेलिस्ट आई हैव फॉर यू टुनाइट। एटलीस्ट भावना जी को ये बहुत पसंद आ रहा है। हाई निखिल, भावना हियर। मैं प्लीज डेडिकेट द नेक्स्ट सॉन्ग टू ऑल लिसनर्स एंड हबी भविष्य एंड सन्स मोक्ष एंड सनय। जी हाँ, क्यों नहीं करेंगे मोक्ष, सनय और मेरे भाई भविष्य के लिए और खासकर आपके लिए भाभी जी। Another message that we have, welcome back rockstar Nikhil, thank you very much. The airwaves just weren't the same without your voice, so happy to have you back on air buddy. Dagen, Shweta, Ravish, Prisha and Apadu family, thank you very much. और अगर आज के शो में आप भी किसी स्पेशल पर्सन को डेडिकेट करना चाहते हैं कोई भी गाना, तो WhatsApp और SMS खुले हुए हैं 5499-1294। बस शर्त तीन है कि आप अपना नाम बताइए, कहां से मैसेज कर रहे हैं वो बताइए और हमें भी थोड़ा प्यार भेजिए। जी हाँ, यू आर लिसनिंग टू बॉलीवुड सिज़ला ऑन RM2।

0: Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: आजकल दुनिया बहुत फास्ट हो गई है ना, रील्स 15 सेकंड की और अटेंशन स्पैन उससे भी छोटा होता जा रहा है, लेकिन एक अच्छा गाना अभी भी हमें रोक लेता है। 4 मिनट के लिए लगता है कि दुनिया वहीं पर थम गई है, और सच बताओ तो म्यूजिक की असली ताकत यही

0: Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: म्यूजिक का ये भी बहुत इंटरेस्टिंग पहलू है कि हम सब अपनी जिंदगी को कभी ना कभी फिल्म समझ ही लेते हैं, अपने आप को हीरो या हीरोइन इमेजिन करते हैं और उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत जरूरी होता है।

बारिश आए तो सॉफ्ट सा बैकग्राउंड स्कोर चाहिए, सक्सेस आए तो वो धमादार एंट्री म्यूजिक, और हार्ट ब्रेक तो सैड सॉन्ग। हर किसी का अपना युग होता है, अपना म्यूजिकल टेस्ट होता है, और हम यहीं पर हैं आपके लिए, आपके म्यूजिकल टेस्ट को इस शाम में शामिल करने के लिए। लीजिए ये अगला गाना।

0: Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: जी हाँ, पुराने बॉलीवुड गानों की राइटिंग पर कभी आपने ध्यान दिया है? वर्ड्स बहुत सिंपल होते हैं, बहुत सिंपल से शब्द, लेकिन कितनी गहरी बातें हैं। शायद इसीलिए वो गाने जेनरेशंस क्रॉस कर जाते हैं, जैसे आपके मैसेजेस इतनी दूरी तय करके हम तक आते हैं, या पढ़ लेते हैं आपके थोड़े से एक आध जो मैसेजेस हैं। हेलो निखिल, हाउ आर यू? सब ठीक, थैंक्स फॉर, कैसी है ये रुत एंड मन मेरा? Glad to know that you're liking the playlist. May I request this song, Piya Tu Kahe Rootha Re? Oh, serious mood mein hai aap. From the movie Kahani, please. Thanks, Shubh Ratri. Aur ye thi Roshni ji from Catherine Bowen. Thank you for being with us, Roshni ji. Hum dusre ghante mein, in the second hour, we'll surely try to play this one. Hi, Nikhil. Very good show. Thank you very much. Please play a song for my grandson, Kiyansh Toiloku. Naam to sahi bola hai na? मेरे को बहुत डर लगता है इस बात से कि किसी का नाम मैं गलत ना बोल दूं। सो अगर गलत बोला है, देन आई एम रियली सॉरी, बट डू नो दैट ऑल आवर बेस्ट विशेस टू योर ग्रैंडसन कियांश, हु इज ओनली ऑफ 15 डेज फ्रॉम हिज दादा श्याम एंड दादी प्रेमिला फ्रॉम बनान विलेज। हेलो निखिल, हाउ आर यू? दिस इज लक्ष फ्रॉम मोटाइन ब्लांश। जी हाँ, मेरे घर के सामने, हम तो पड़ोसी हुए भाई। Can you play a song for my sister's birthday? My sister's name is Vidusha. I want to dedicate a song for her and all of my family, my nephew Akshat, my niece Pushika, my mom Sharmila and my dad Narad, my brothers Nakul and Vashish, my brother-in-law Baba and sister-in-law Neha. Yeah, ye message main bata sakta hu kitni baar edit hua hai, kitno ko chhod chhod kar inhone message bheja hai aur phir se edit karke phir bheja hai. Thank you very much Laksh for your message. Aur aapki behna ko kahenge a very very very happy birthday. जी हाँ, टोनी ने हमें फ्रेश फ्रेश मैसेज भेजा है, टेलिंग अस दैट वी आर वर्किंग नाउ। थैंक यू वेरी मच टोनी फॉर द प्रिसिजन। और ये मैसेज कुछ ज़्यादा ही स्पेशल है भाई। नमस्ते जी, एवरी डे आई चूज माई रेडियो मस्ती। जी हाँ, माई रेडियो मस्ती क्या बोल दिया, हम तो आप पर मर मिटेंगे। Today is my daughter Shweta Hukum's birthday. Wishes her a good health and long life from Mama Suya, Papa Lal Dev, Brother Vicky, Bill Suya, Kirti, niece Avni and lovely bunch of Bihari family of Kongoma. Thank you very much. Aapke liye aur aapki daughter ke liye, Shweta ji ke liye, hum karenge ye agla gana from the movie Agnipath. Ye aakhri message hum pad lete hain abhi ye liye. Hi Nikhil ji, welcome. Raat की रानी सी खुशबू आपने सुनहरे गीतों से फिजाओं में बिखेरने के लिए शुक्रिया। आहा, आपके शायराना इस अंदाज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम तो नहीं दिख रहा है आपके मैसेज पर, लेकिन ऐसे शायराना गाने हम लाते रहेंगे। अभी के लिए अ बर्थडे सॉन्ग स्पेशली फॉर दीज टू लवली बर्थडे लेडीज। मूवी है अग्निपथ। गुन गुन।

0: Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: आपको पता है कल क्या है? कल मंडे है. हाँ, मेरे को पता है, किसी को याद दिलाना नहीं चाहिए था, लेकिन टेंशन मत लीजिए, अभी भी हमारे पास एक घंटा है मूड को रिचार्ज करने के लिए. जी हाँ, वेलकम बैक एवरीबॉडी, यू ट्यून टू बॉलीवुड सिज़लर विद मी निखिल, और शुरू हो रहा है शो का सेकेंड आवर. अगर पहला आवर थोड़ा सा एनर्जेटिक था, तो अब हम थोड़ा और डीप जाएंगे मेलेडीज में, इमोशंस में, और उन गानों में जो रात को और भी खूबसूरत बना देंगे. कीप योर मैसेजेस कमिंग ऑन 5499-1294, और आप बताइए टुनाइट का फेवरेट ट्रैक आपको कौन सा लगा अभी तक. अभी के लिए I'll just tell you that we are family. आंखों में नींद, the voices of राहत फतेह अली खान, श्रेया घोषाल एंड शंकर महादेवन.

0: Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: टूटा हुआ दिल भी अजीब होता है ना, वो दिल का टूटना ही उस वक्त लगता है कि सब खत्म हो गया है, जैसे कुछ बाकी जिंदगी में रहा ही नहीं। लेकिन जैसे हर संडे के बाद मंडे आता है ना, वैसे ही हर एक हार्ट ब्रेक के लिए उसका कोई ना कोई कहीं ना कहीं हीलर होता है। शायद वो एक इंसान हो, शायद खुद वक्त का बीतना हो, या कभी कभी बस एक अच्छा सा गाना। बस हमको क्या करना है कि जो बुरा हुआ उसको भूलते जाना है।

0: Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: जी हाँ, अगर आप अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं तो आपसे बताएं, आपको बताएंगे कि यू आर लिसनिंग टू बॉलीवुड सिज़लर, आपका अपना ओनली ऑन RM2. अगर आप अभी रोड पर हैं, डिलीवरी कर रहे हैं, या फिर सिक्योरिटी शिफ्ट पर हैं, या फिर मेरी तरह क्रिएटिव वर्क के लिए रात को काम करना पसंद करते हैं, आई विल से स्टे सेफ, स्टे वार्म, और कंपनी के लिए हम यही हैं. काम कभी कभी एग्जॉस्टिंग हो सकता है, स्पेशली जब दुनिया रिलैक्स कर रही हो संडे नाइट को और आप स्टिल एक्टिव हो. तो टुनाइट लेट द म्यूजिक बी योर स्मॉल ब्रीदिंग स्पेस बिटवीन रिस्पॉन्सिबिलिटीज. कभी कभी पॉज ले लिया करो. मैं आपको एक गाना सुनाता हूँ जो मेरे लिए इट्स इक्विवेलेंट टू वर्क बीइंग डन. मैं अपने यूनिवर्सिटी डेज में ये लगा कर रिवाइज करा करता था, और ये गाना मुझे यकीन है कि आपको भी पसंद आएगा.

0: Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: जैसे जैसे ये रात बढ़ती जा रही है, होपफुली स्ट्रेस थोड़ा कम होता जा रहा है, ब्रीदिंग स्लो हो रही है आपकी, ऐसे ही गाने हम आपके लिए लेकर आए हैं जो आपका मूड बेटर करके ही रहेंगे. दैट्स व्हाट म्यूजिक शुड डू एंड दैट्स

होमवर्क। जी हाँ, आप भी अपने रिक्वेस्ट, अपने पसंदीदा गाने का की फरमाइश कर सकते हैं ऑन 5499-1294। आपके पैगामों का हमें रहेगा इंतजार, बस यूं ही।

0: Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: कभी कभी एक गाने का फर्स्ट नोट सुनते ही पूरा फ्लैशबैक आ जाता है भाई. सेम स्मेल, सेम प्लेस, सेम पीपल, सेम इमोशंस. जहन में वो यादें ताजा हो जाती हैं, दिल में वही इमोशंस थोड़ा सा जाग कर फिर सो जाते हैं. म्यूजिक और मेमोरी का कनेक्शन ऑनेस्टली बहुत बहुत बहुत ताकत रखता है. और ये अगला गाना जो मैं आपको पेश करने वाला हूँ, इट माई बी अ सॉन्ग जो आप भूल गए होंगे, फ्रॉम द मूवी रॉकी हैंडसम इन द वॉइस ऑफ श्रेया घोषाल एंड इंद्र बावरा. रहनुमा गाने का नाम शायद आपको पता नहीं, लेकिन गाना 100% आपको याद है.

म्यूजिक का काम सिर्फ एंटरटेनमेंट करना नहीं होता, बस दिल को बहलाना नहीं होता। कभी कभी दिल के जख्म वो हील भी कर जाता है, वो दिल के पुराने पुराने जख्म को भर भी देता है क्वाइटली, बिना किसी के पता चले।

0: Bollywood Sizzler.
1: RM2, your number one Bollywood radio station.
2: जी हाँ, हमारा वक्त कीमती है, बहुत कीमती, बेशकीमती, और इस वक्त को हम यूज़ करते हैं आपके मैसेजेस, आपके आपका प्यार पढ़ने के लिए. गुड इवनिंग, वी आर वर्किंग नाउ, ये मैसेज हमने पढ़ लिया था. ये आया था हमारे पास टोनी जी की तरफ से, और फिर जिन्होंने वो खूबसूरत सी शायराना अंदाज में हमारी तारीफ़ की थी, वो थी अनुराधा जी. थैंक यू वेरी मच. उनको बहुत पसंद आया, गुलों में रंग भरे मोरा पिया मुझसे बोलत नहीं. क्या बात. जी हाँ, रेडियो मस्ती, सीता गीता बोलो, आई एम फ्रॉम सीता फ्रॉम शातु बिनागस, डेडिकेट द नेक्स्ट सॉन्ग टू देयर मदर. स्पेशली ये दोनों बहनें हमको सुनती रहती हैं, थैंक यू वेरी मच जुड़े रहने के लिए. हाय, गुड इवनिंग निखिल, आई एम लतिका, प्लीज रीड दिस फॉर माय फ्रेंड रीना पलवान. जी हाँ, आपकी फ्रेंड इतनी लकी है, क्या बताएं. आपने कहा है, आई एम सो लकी टू हैव अ बेस्ट फ्रेंड इन माई लाइफ एंड आई से बिग थैंक्स फॉर यू. रीना जी आप बहुत लकी हैं, और लतिका जी भी, आप दोनों बहुत लकी हैं दैट यू हैव फाउंड ईच अदर. जी हाँ, हम ये आशा करेंगे कि आपकी ये दोस्ती हमेशा बरकरार रहे. द नेक्स्ट मैसेज इज अ बर्थडे विश एक्चुअली. क्या बात, इतनी देर में. आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट अ सॉन्ग फ्रॉम स्ट्रीट टू फॉर माई वाइफ बुबू रानी Shweta Hukum, who is celebrating her birthday today, from Habi Roshan from Bonakar. Thank you very much, Roshan ji. हमारे साथ ये special occasion share करने के लिए. लेकिन मैं ये कहूँगा कि आपके पास आपकी स्त्री पहले से है, तो स्त्री टू नो, ये नहीं चलने वाला. जी हाँ, we are at the end of our show, unfortunately ये चला नहीं पाएंगे, लेकिन अगली बार जब आएंगे तब आप मैसेज कर देना, हम चला लेंगे आपके लिए. जी हाँ, गुड आफ्टरनून. ये आफ्टरनून में मिला था, नहीं ये राइट रात को मिला था, ठीक है चलता है. नेक्स्ट सॉन्ग फॉर अब्दुल एंड सायरा बानू, हैव अ नाइस टाइम विद अ रेडियो मस्ती. जी हाँ, रेडियो मस्ती के साथ इट्स ऑलवेज अ नाइस टाइम, क्यों नहीं. और ये आखिरी मैसेज हम पढ़ लेते हैं, ये मेरे लिए कुछ पर्सनल सा है. हेलो आज निखिल, प्लीज डेडिकेट अ रोमांटिक सॉन्ग फॉर माय फियांसे निखिल, उनका नाम भी निखिल है. वांट टू टेल हिम हाउ मच आई मिस हिम राइट नाउ फ्रॉम भावना. जी हाँ, इन जाते हुए लम्हों को रोक पाना ये बहुत कठिन होता है. इस अगले गाने के साथ हम आपसे लेंगे अलविदा, क्योंकि और इसी के साथ बॉलीवुड सिज़ल का वक्त ख़त्म होता है. थैंक यू वेरी मच फॉर योर कंपनी, योर लवली मैसेजेस, और इस संडे नाइट को और स्पेशल बनाने के लिए मैं हूँ निखिल, विशिंग यू अ पीसफुल नाइट, सेफ ड्राइव इफ यू आर ऑन द रोड, और एक लवली वीक अहेड. कीप स्माइलिंग, कीप लिसनिंग. आप बस प्यार फैलाते रहो, प्यार दोगे तभी आपको प्यार मिलेगा, और म्यूजिक के करीब ही रहा करो हमारे रेडियो मस्ती के साथ. गुड नाइट मॉरिशस, फ्रॉम निखिल साइनिंग ऑफ.

सभी का लेट नाइट ग्रूव्स आरएम 2 पर और अपना जो सफर है गानों के साथ वो शुरू हो गया और आप भी उस साइड पर हमारा साथ दे रहे हैं तो वेलकम इंटरनेट के जरिए तो आपका भी स्वागत। धीरे धीरे मौसम जहां चेंज हो रहा है लेकिन आपको बताएं कि हम कभी चेंज नहीं होते। म्यूजिक आपके लिए हमेशा 24/7 तो बस साथ देने का एक वादा है, आपने भी वादा कर लिया तो चलते हैं।

0: RM2.
1: Radio Musty feels a musty.

RM2. Radio Musty. In the mix. Radio

0: जब से मेरे उफ।
1: रात जितनी खामोश होती है दिल उतना ही जोर से बात करता है। आपने रियलाइज किया कुछ रिश्ते चांद की तरह होते हैं, दूर रहकर भी रोशनी देते हैं और वही लोग जिंदगी में सबसे खास बन जाते हैं। इसी तरह हमें पता है कि चाहे स्टूडियो में हम अकेले हों लेकिन उस ओर आप हमारा साथ जरूर दे रहे हैं।

Radio Musty in the mix. Radio Musty feels a musty in the mix.

0: बादशाह।
1: हो सकता है इस वक्त कुछ दोस्त साथ में निकल पड़े हों और फिर सोचते कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। अरे बिल्कुल ठीक भी तो है, क्योंकि दोस्ती वो रिश्ता है जिसमें हिसाब नहीं होता, बस एक आवाज पर साथ मिल जाता है, चाहे दुनिया खिलाफ ही क्यों ना हो। सच्चे दोस्त रात की तन्हाई भी आसान बना देते हैं।

0: Welcome to RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
2: Hit music only.
1: Feels a musti.
3: आजकल कितना आसान हो गया ना अपना मैसेज किसी तक पहुंचाना। बस प्यार मोहब्बत की बात करें तो आई लव यू कह देना, ये इसका नाम नहीं है। किसी की खामोशी समझने का नाम भी प्यार है। जो बिना कहे दर्द पढ़ ले वो भी प्यार है। वही दिल के सबसे करीब होता है, बाकी तो सब दिल से महसूस हो ही जाता है।

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musti. Radio Musti.

कहते हैं कि रिश्तों की खूबसूरती शब्दों में बयां नहीं हो सकती, बल्कि एहसासों में छुपी होती है, इमोशंस में। कभी एक छोटा सा कैसे हो पूरे दिन की थकान मिटा देता है, और यही अपनापन है जो जिंदगी को खूबसूरत बना देता है। तो कैसे हैं आप? म्यूजिक के साथ जुड़े हैं ना, और बेहतर महसूस कर रहे हैं।

0: RM2.
1: Radio Musty feels a Musty.

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musti. Radio Musti.

0: RM2. Radio Musty. In the mix. Radio Musty. In the mix.
1: आप सुन रहे हैं लेट नाइट ग्रूव्स RM2 पर. स्वागत है आप सभी का. हर रात हमें सिखाती है कि अंधेरा हमेशा रहता नहीं, सुबह फिर से लौट कर आती है नई उम्मीदों के साथ. बस खुद पर भरोसा कभी मत खोना. जिंदगी कभी कभार मुश्किल जरूर लगती है, लेकिन सोल्यूशन, वो जो रे ऑफ होप है ना, वो भी ज़्यादा दूर नहीं. बस आंखें खोल कर, दिल को टटोल कर यही कहना कि हारने नहीं आया मैं.

0: Radio Musty
1: in the mix.
0: Radio Musty feels a musty
1: in the mix.

0: मस्ती फील्स अ मस्ती।
1: कितने सारे हमारे लिसनर्स हैं जो रेडियो के साथ जुड़े हैं, इंटरनेट के जरिए जुड़े हैं और अलग अलग वॉक ऑफ लाइफ से, अलग अलग फील से। वैसे कुछ लोग किताबों की तरह होते हैं, जितना पढ़ो उतना नया सीखने को मिलता है, और कुछ लोग आईने के जैसे होते हैं जो हमें हमारी असली पहचान दिखा देते हैं। ऐसे लोग किस्मत से मिलते हैं।

0: are into Radio Musti. Feel the Musti.
1: कहते हैं कि घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता, उसमें रहने वाले लोगों से बनता है। बस माँ बाप का आशीर्वाद, जहाँ पर अपनों का प्यार मिल जाए, यही हर एक इंसान की असली दौलत है। तो कभी डिजिटल स्पेस के अंदर, अरे साहब यही कि इंटरनेट पर लगे हुए हैं, अलग अलग सोशल अकाउंट से जुड़े हुए हैं, तो जो रिश्ते आपके हैं, अपने हैं, वो कभी टूटने ना पाए। उनको हमेशा गले से लगाएं और ये बताएं कि उनसे कितना प्यार है।

0: Radio Masti.
1: Hit music only.
0: Feels a Masti. Radio Masti.

0: You're listening to RM2, a Radio Masti.
1: जिंदगी में बड़ा बनने के लिए दिल बड़ा बनाना सीखिए, क्योंकि ऊंची इमारतें तो हर कोई बना लेता है, लेकिन ऊंचे रिश्ते हर किसी के बस की बात नहीं है। और वही इंसान जो ऐसा कर पाए सबसे अमीर होता है। तो जो प्यार की दौलत है, इसे कभी खो ना देना।

लेट नाइट ग्रूव्स आरएम 2 पर, लेडीज एंड जेंटलमैन, रात के सफर में अगर कोई आपका हाल पूछ ले तो समझ लीजिए आप अकेले नहीं हैं। जैसे कि हम शुरुआत में ही पूछते हैं, कैसे हैं आप? हमने तो अपना साथ आपको दे ही दिया। कुछ रिश्ते दूर होकर भी पास रहते हैं और वही रिश्ते दिल को सुकून देते हैं। म्यूजिक आपके लिए, हमेशा के लिए, 24/7 दिल को सुकून देने के लिए।

0: RM2.
1: Radio Musty feels a Musty.

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musti. Radio Musti.

अच्छा कहते हैं कि प्यार में जीत और हार नहीं होती, बस एहसास होते हैं जो दिल से निभाए जाएं तो उम्र भर साथ चलते हैं, वरना बातें अधूरी रह जाती हैं।

Radio Musty in the mix. Radio Musty feels a musty in the mix.

0: Welcome to Radio Musty. Check this out. The latest news and the greatest mix of music.
1: Radio Musty feels a musty.
2: किसी को नीचा दिखाना या फिर किसी की मजबूरी पर हंसना, ये ठीक काम नहीं है, क्योंकि वक्त सबका बदलता है। आज जो इंसान खामोश है, हो सकता है वो सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहा हो। थोड़ी सी मोहब्बत हर दर्द को कम कर देती है।

So, जितने भी हमारे लिसनर्स हैं, जितने भी हमारे श्रोता हैं जुड़े हमारे साथ, थैंक यू सो मच। हमें भी एक हौसला मिलता है कि आपके साथ हम ऐसे आगे बढ़े, क्योंकि ये जो रिश्ता है ना, दिल का रिश्ता है, दिल से निभाते हैं। और आप जब इन गानों के साथ गुनगुनाते हैं तो लगता है कि मुश्किल वक्त में भी किसी ने हाथ थाम लिया है, और वही तो अपने कहलाते हैं ना।

0: You're listening to RM2, Radio Masti.
1: तो वक्त अभी इतनी इजाजत दे रहा है कि बस आपका हमारा सफर यहीं तक चले, लेकिन एक बार फिर से मुलाकात करेंगे, ये वादा है हमारा। और RM2 पर तो म्यूजिक 24/7, तो बस 5 बजे से एक बार फिर से प्रोग्राम शुरू, राइज एंड शाइन, और उसके बाद आपके लिए मॉर्निंग बीट, एंड उसके बाद मस्त मॉर्निंग शो, जहां पर एक बार फिर से आप और हम मिलेंगे। तो ध्यान रखिए और म्यूजिक के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a Musti.

RM2. Radio Musty. In the mix. Radio Musty. In the mix.

Radio Mesti in the mix. Radio Mesti feels a Mesti in the mix.

0: RM2.
1: Radio Musty feels a Musty.

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musti. Radio Musti.

0: Radio Musty
1: in the mix.
0: Radio Musty feels a musty
1: in the mix.

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musty. Radio Musti.

RM2 Radio Musty in the mix. Radio Musty in the mix.

0: RM2.
1: Radio Musty feels a Musty.

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musty. Radio Musti.

Radio Musty in the mix. Radio Musty feels a musty in the mix.

0: Radio Musty
1: in the mix.
0: Radio Musty feels a musty
1: in the mix.